0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस. अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: कर दर्शन.

रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 FM पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नव दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जिस रिश्ते में मैं हूँ, वो मैं खुद कर सकता हूँ। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जानी शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह कि अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता, साथ का रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहाँ हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहाँ ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करें तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज़ करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से लेट अस क्रिएट दैट पिक्चर इन आवर कॉन्शियस।
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने, जब तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग, बट इट मस्ट बी, मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: यू नो, कि मैं ठीक
1: हूं। दैट कुड बी द ओनली लॉजिक, अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर, और दूसरा इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू, लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: So that's going to be a problem.
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। So that we will have to understand कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि somewhere it depends on which color specs I'm wearing. आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज़्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: नेगेटिव। अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कंप्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत ईजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठ कर वर्क करके अपनी परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive नेगेटिव एनर्जी एंड देन आई विल स्टे इन पेन
0: एंड
1: ये पूरा प्रोसेस मैंने क्रिएट किया. अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा. रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हर स्टेप पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ. स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं फिर भी एक विशेषता तो होगी. अच्छा इफ यू आर फाइंडिंग समवन होगा नहीं लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माई कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: इनफैक्ट यस मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: यस एंड दैट्स व्हाई सेम दुनिया एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज अ बिग मेस.
0: एक्चुअली यस यू नो अगर हम डीप में जाएं जिसको बुराई देखने की आदत है जो बुराई करता है वो सबकी ही बुराई कर रहा होता है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता उन्हें.
1: तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग बुरे नहीं हैं लेकिन मुझे ही देखने का नजरिया. और इसीलिए परमात्मा ने आकर हमें कहा कि स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना. हम अपने एटीट्यूड को अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग वो वैसे के वैसे होते हैं. दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस इट्स हियर. So it is very easy to look outside, little challenging to look inside, lekin solution yahi
0: par inside, yes.
1: To agar koi apne upar sachmuch mein kaam karke result paana chahta hai, to usko fir kaam to wahin karna padega jahan kaam ho sakta hai. Aap opposite direction mein kaam kare, you work on the relationship there, and fir aapko result nahi mile, fir aap aur frustrate hote jaye, aur fir aap aur ek dusre se katte jaye. We are getting nowhere.
0: Actually, very true. You know, हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूँगी और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ. मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते अब देखो हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं
0: ऊपर से मैं कुछ
1: उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या कम्युनिकेशन. रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ. रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ. रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूँगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूँगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो डिफिकल्ट.
0: नो नो नो यस एक्चुअली
1: सी
0: हाँ
1: जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस. एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफ कोर्स अगर वेरी ट्रू अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है कोई देख के मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू
1: सो आई फील गुड. या आई फील गुड. नाउ इट इज पॉसिबल कि आई डोंट थिंक वेरी गुड अबाउट यू. इट इज पॉसिबल कि आई डोंट थिंक वेरी गुड अबाउट यू या मेरा व्यवहार भी शायद आपके साथ उतना अच्छा नहीं है. फिर भी आपको कैसा फील करना है वो फिर भी आपके हाथ में है. सो लेट्स स्टार्ट जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ. टेक द कंट्रोल back. I am going to keep the control in my hand. But अपने पर focus नहीं होगा तो ध्यान ज़्यादा क्या होगा. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या बोलता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है. And then I consume that energy. वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे वो मेरे बारे में ऐसा सोच और ये सब consume करके वो अच्छे नहीं है. स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे नहीं है. एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है
0: मुझे क्योंकि नहीं और वो नहीं लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो मैं उनके बारे में बुरा सोचूंगी.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन,
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं.
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स व्हाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ, फोकस अभी भी मैं ही था.
1: मैं ही था, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू. बट नाउ आई रियलाइज माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग अप्रिशिएट करेंगे, दो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे फ्लक्चुएट होने वाली है, then मेरे हाथ में क्या है. लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि क्रिएट हम करने वाले हैं, आई कैन चूज वॉट टू क्रिएट एंड बी वेरी केयरफुल. सारा दिन आई एम क्रिएटिंग, जस्ट दैट मच अवेयरनेस इज नीडेड सारा दिन कि आई एम क्रिएटिंग. तो जर्नी कैसी हो जाएगी, वेरी सिंपल. द फर्स्ट पॉइंट था कि वेयर डज द रिलेशनशिप गेट क्रिएटेड, अपनी कॉन्शियसनेस में. दूसरा पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो हमने कई बार रिपीट किया है लेकिन वो फंडामेंटल है, एंड दैट इज हु हर्ट्स हु.
0: I hurt myself. ये तो एक पूरा एक स्टेटमेंट ऐसी है
1: ये, लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है, उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं,
0: आपने हर्ट किया,
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट हु, आई हर्ट माई सेल्फ. दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे, तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूँ, भी कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी.
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊँ कि नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दिस,
1: दैट्स ओके, दैट इज फाइन. लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है. फिजिकली कोई मुझे मार सकता है, लेकिन यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता. यहाँ ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. तो बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहाँ मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू. लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? आपको पता है, यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफ़ी लिस्ट होती है,
0: काफ़ी बड़ी होती है.
1: और, किस और उस लिस्ट को हमने काफ़ी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टुडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, वॉट इज आई से, बट हु इज क्रिएटिंग द पेन? उन्होंने जो करना था सो किया. Right or wrong is not important right now. Important is दर्द फिर भी कौन क्रिएट कर रहा है? मैं. कब तक? See, बाहर आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, but then you're not in my control. You know, you're not. अगर आज आप मेरे साथ property पर लड़ रहे हो, it's not in my control. आज आप मेरे business partner बन के मेरा लाखों रुपए लेके चले गए, not in my control. आज आप एक husband and wife के रिश्ते में आप रिश्ता तोड़कर बाहर कहीं चले गए, not in my control. लेकिन माय पेन,
0: इट इज इन माय कंट्रोल,
1: दैट्स आई एम क्रिएटिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. क्योंकि जहां सेल्फ पर मैनेज किया, तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा. अभी हम कहते हैं सिचुएशन इतनी बड़ी थी, दे कॉज्ड मी हर्ट. नो, देयर इज ओनली वन वर्ड देयर हु कॉजेस पेन टू मी, दैट्स माय सेल्फ. दे कैन डू थिंग्स जो उनको करना है, वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन दर्द फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मैनी पीपल विल से, लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया. किया, फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया?
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका ये हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया?
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. यस, वेरी ट्रू. यू नो,
1: इट्स ओके इफ आई एम इन पेन, लेट मी वर्क एंड मैं उसको हील करूंगी, लेकिन मैं उसको हील तभी कर पाऊंगी जब आई रियलाइज कि ये दर्द मैं क्रिएट कर रही हूँ. हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते हैं
0: कि मैंने, उसी ने किया,
1: उसने हाँ. किया तो वो आकर उसको ठीक करेगा.
0: जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, कहते हैं ना हर बार. यस,
1: तो अब किसने दर्द दिया? हमें ही दवा देनी है ना. दैट इज द पॉइंट. वी आर नॉट सेइंग कि हाँ दर्द होता है, कुछ बात ऐसी होती
0: है. We keep on waiting that that person will come and apologize or things like that, and then things will, but things will never become same.
1: Yeah.
0: Even if that person comes, और वो माफी मांग के मुझे heal करने की कोशिश करता है, मैं क्या heal होंगी? मैंने वो जो वो पूरा time गुजारा है, मैं उसको वो कह के मैं ना उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी.
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है, अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते में? दर्द ही है. तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए. हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माय लाइफ, एंड देन डिलीट
0: वाइप ऑफ कंप्लीटली एक्चुअली,
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ. वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे, मे बी नॉट इमीडिएटली,
0: बट आई थिंक दैट पर्सन विल गो अवे.
1: पर्सन विल गो अवे, दैट इज फंडामेंटल. फर्स्ट लेट द पर्सन गो अवे, फिर तो पेन धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाएगा. क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे फिनिश करना ईजी है, लेकिन आप क्रिएटर हैं
0: तो फिर वो तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक, जब तक उसके साथ वैसा नहीं होगा तब तक नहीं. यू नो, लाइक सो मेनी थिंग्स वी हैव.
1: एक एक को लेते जाओ. सिचुएशन को रिवाइंड करना चाहते हो एक दिन के लिए कर लो, रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहाँ था. डिवोर्स बाहर था, दर्द यहाँ था. बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहाँ था. हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है. आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ.
0: Because
1: we can cry right here.
0: Yes, yeah, I can, of course.
1: So where is the person? वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, but we can cry right here.
0: Because yes, you know, somewhere deep within, I kept on feeling that he's the only one who can heal. She's the only one who can come, change the situation or do something.
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: भी नहीं, और वो कभी भी नहीं आने वाला.
1: Yeah. And फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा.
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन,
1: जस्ट लेट गो, बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर रखा है?
0: सालों पुराने होंगे, मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल रिमेम्बर
1: ऑल द पीपल देयर,
0: लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच.
1: यस,
0: लेकिन वो उनकी इमेज है,
1: वो फिर भी आपके घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ
0: घर पे रहते हैं. और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे, तब तक वो रहेंगे.
1: यस. नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट, आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को ख़त्म करना शुरू कर देंगे. अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ़ आई गेट हील्ड, तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
0: हाँ, बिल्कुल परफेक्ट.
1: एंड द रिलेशनशिप
0: आपके साथ, मुझे वो खत्म हो जाएगा ना. आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन,
1: और आपके ऊपर जो ब्लेम था.
0: हाँ.
1: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा. तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. आई हैव टू ओनली फॉरगिव माईसेल्फ. एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन, मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ. सो सिमिलरली इफ आई सी यू इन पेन
0: बिकॉज ऑफ मी,
1: या एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, तो मुझे स्टेबल रहना मेरे लिए आसान है. और उसके बाद अगर मैं स्टेबल रहूं, तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा?
0: नॉर्मल, स्टेबल,
1: नॉर्मल. सो एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू फॉल इनटू प्लेस. नॉट दैट इट विल गेट डन टुडे, बट इट बिकम्स ईजियर, ये करना संभव हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है, दूसरा जैसा है वैसा ही है। लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं, करने दो, लेकिन वो तो मुझे अब्यूज़ करते हैं, ये करते हैं, करने दो। व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगी दूसरी तरफ। लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता फिर दूसरी साइड भी जाता तो दर्द की फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ती जाती।
0: सो गुड, मैं बात करते करते ही आई कैन सी सो मेनी रिलेशनशिप्स बिकमिंग मच बेटर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बाप बेटे का रिलेशनशिप, यू नो, कहीं एक जो एक कहा जाता था एक चुप कर ले और दूसरा It can
1: Absolutely.
0: happen. It happens.
1: And no one can hurt me. I met a brother and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी बिकॉज कुछ हुआ था, पास्ट इंसिडेंट। एंड फिर वो प्रोग्राम के एंड पर आए और उन्होंने कहा कि माई मदर इज़ इन लॉट ऑफ पेन एंड आई एम इन लॉट ऑफ पेन एंड अब मेरे फादर नहीं रहे एंड माई मदर इज़ अलोन एंड यू नो वट एवर। आई सेड आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते एंड यू नो एवरी थिंग विल बिकम ओके। एंड ही सेज नहीं, बट आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। ऐसे लेकिन उन्होंने जो किया सो किया, हम अब क्या कर रहे हैं? आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले आपको मिल रहा है, फिर आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द, वो दर्द औरों में भी जाता है। टू फिनिश दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम, गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड। ही डिड इट After the program, he went there. Next day, he came for another program. See, it was very easy. Because it happens, it's very easy, right? But we take time. That's okay. That is my journey. I can take my time.
0: Actually, jis din ye realize ho gaya ki wo karan hai hi nahi meri pain.
1: Main hu aur wo mere haath mein hai. Ab mujhe kitni jaldi usko finish karna.
0: To theek hai. Fir main apni marzi se le raha hu. Mere ko 10 din chahiye. Mujhe 1 din chahiye. Mujhe 100 din chahiye. Mujhe 1 second chahiye.
1: Whatever. That's my choice. But at least the power
0: is in my hand now.
1: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूं तब ठीक कर सकती हूं। पहले आई वॉज अ विक्टिम, तो मैं वेट कर रही थी और फिर मुझे सारे रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे। सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है।
0: मुझे
1: तो,
0: कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते
1: So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं, तो एक बार मैंने label लगा दिया कनुप्रिया ऐसी है, लगा दिया अब आपके ऊपर label। अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस label के अंदर
0: एक एक incident
1: baggage भरते जाती हूँ, भरते जाती। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला,
0: देखा ये जस्टिफाई हुआ, ये पुख्ता हो गई मेरी बात, ये लेबल ठीक हो गया। हाँ,
1: तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ। एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
0: भारी
1: होता जाएगा। एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेयर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज।
0: तो मुझे ले डूबेगा ना वो, भारी इतना होगा कि मैं डूब जाऊँ।
1: यस, एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का, तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें। लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था। Is it possible कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूँ, उसको हल्का करूँ? क्योंकि वो निकालने से who is going to feel better?
0: I will
1: feel better. So this is more about you know holding things about other people. तो if I keep holding those things, यहाँ बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा। तो बहुत ईजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे यहाँ, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, स्टॉप, नो आई डोंट नीड दिस, दिस इज अननेसेसरी वेट, आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट। तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा?
0: लाइट।
1: आई विल फील वेरी वेरी लाइट। तो बैगेज जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो, इसको हल्का करो। एंड बैगेज इज ऑलवेज अबाउट
0: अदर्स,
1: अदर्स। जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहाँ तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है.
0: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है.
1: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया. वो तो वही है, तो वाई है अब सफर किसको करना पड़ेगा? मी. वाई? जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
0: सो मच ऑफ बैगेज. यस.
1: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है? हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट. नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है.
0: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
1: सही है.
0: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
1: जजमेंटल.
0: हाँ वही, जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग यू नो, कि जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज़ ही अच्छी नहीं है. यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस.
1: माय डिसलाइक एंड जजमेंट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं.
0: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड.
1: इट्स बैड, या इट मे बी गुड फॉर देम.
0: इन फैक्ट इट्स अमेजिंग यू नो, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाएं, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी. अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने की कला हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं इस श्रृंखला में। आज बात करते हैं खाने की। आजकल एक बहुत जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट पर बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं कि यू आर वॉट यू ईट, आप वो हैं जो आप खा रहे होते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप उस पर ध्यान दें जो आप खा रहे हैं, या ये देखें कि आपको क्या खा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं, आज इस पर बात करेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात खाने की करते हैं कि सारे आस्पेक्ट्स लिए, लेकिन आजकल जो बहुत फोकस भी किया जाता है कि खा क्या रहे हैं और खाने को कैसे, और इस कारण काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या जो हम खा रहे हैं पूरे दिन में खाते हैं, उसका हमारी डाइट का, हमारे खाने का हमारे थॉट्स पर, हमारी बॉडी पर तो पड़ता है असर, हमारे मन पर भी पड़ता है?
1: नहीं, डेफिनेटली मन पर उसकी इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि जो खाते हो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस भी है। दो प्रकार के वाइब्रेशन, एक तो खाने में जो उस चीज में वाइब्रेशंस है वह भी है, और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो भोजन बनाया है उसके भी वाइब्रेशन उसमें है। तो दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस आप ले रहे हो, अगर वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, जैसे खाने में लो एनर्जी है, तो आपको भी वह जो रियल एनर्जी है वह नहीं मिलेगी, बल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। और दूसरा जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसने अगर निराशा में खाना बनाया है ना, ईर्ष्या में खाना बनाया है, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस आपको भी मिलेगी और आप पर भी उसकी इफेक्ट होगी।
0: हम बनाने वाले को नहीं रोक पाते हैं कई बार। अब इस पर वाइब्रेशंस की जहाँ बात आती है, सिस्टर शिवानी, रियली नीड टू नो कि खाने पीने की चीज़ें जो मेरी बॉडी के साथ थी, यू नो, बॉडी को ताकत दे रही थी, या वो सारे विटामिन्स जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ तक सीमित थे, अब वो मेरे माइंड को कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है?
2: हम सब के जीवन में ये अनुभव है और हम सब ने इस डिफरेंस को देखा है कि आप एक पर्टिकुलर मील को लें, वही दाल रोटी सब्जी आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाएं, वही पर्टिकुलर मील आप घर में लेकिन एक माँ के हाथ से बना हुआ खाएं, और वही पर्टिकुलर मील आप किसी बहन के हाथ से खाएं जिसको आपने हायर किया हुआ, जो आपके घर में आती है, खाना बनाती है, लेकिन काम के लिए, पैसे के लिए वो खाना बनाती है, और वही खाना आप मंदिर या गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में खाएं। चारों में जो आपको भावना है, जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो डिफरेंट महसूस होगी, क्योंकि चारों को बनाते समय जो भावना है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है, इट्स फॉर प्रॉफिट। आप जितना खाएंगे, जितनी बार लेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। दे आर सर्विंग यू विद दैट इंटेंशन। मदर जो खाना बना रही है, इट्स फुल ऑफ लव, अटैचमेंट। जो मेड जो आपके घर काम करती है, वो खाना बना रही है, आप उसको बोल दो एक चपाती और खानी है, तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलनी है, अभी एक और खानी है इन्होंने, क्योंकि उसको पैसे तो उतने ही मिलने हैं। सी, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है अगर आप और लोगे, लेकिन उसकी काम करना उसको ज़्यादा पड़ रहा है। शी डजंट लाइक दैट एनर्जी, हर एनर्जी इज़ डिफरेंट। और इसी को आप गुरुद्वारे मंदिर में खाएं तो भावना ही अलग है कि भगवान के कार्य के लिए ये भोग बन रहा है, भगवान के बच्चे आकर ये खाना खाएंगे। चारों में फीलिंग एकदम डिफरेंट आती है, ओनली बिकॉज कॉन्शियसनेस ऑफ द वन हु वाज कुकिंग इज डिफरेंट इन ऑल फोर केसेस।
0: व्हाट वी फेल्ट, मतलब अभी तक जो ये था कि शायद हमारी भी तो भावना,
2: वो तो है,
0: हम अगर मंदिर जाते
2: हैं, भावना, लेकिन बनाने वाले की भी भावना। देखो, दो काम हो रहे हैं ना, बनाने वाले की भावना खाने के साथ, और फिर स्वीकार करने की भावना खाना खाते टाइम, बोथ आर वर्किंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, द वन हु इज कुकिंग एंड देन आफ्टर दैट द वन हु इज ईटिंग। ये भी नहीं कि सिर्फ जो खाना बना रहा है उसने ध्यान दिया, जब हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना। दोनों में बहुत अंतर, मतलब दोनों में वी विल फाइंड दैट द राइट कॉन्शियसनेस विल गिव द राइट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी।
1: कई बार आप देखेंगे कि खाने वाले को पता ही नहीं कि कहाँ बनाया गया है, क्योंकि ये प्रसाद है या घर से आया है या होटल से आया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सही स्टेट ऑफ माइंड में होगा तो कैच कर लेगा। मैंने स्वयं देखा है कि जब हम बहुत जगह पर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, कईयों के घर में भी रहते हैं, कई बार सेंटर्स पर रहते हैं, तो बल बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां जाते ही लगता है कि यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है।
2: क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद कई बार खाना खाते खाते पता चल जाता है कि हैवीनेस है, नॉट द फूड इज हैवी बट द एनर्जी द फील के जिसने ये खाना बनाया है सम हैवीनेस अबाउट द फूड। और किसी के हाथ का भोजन खाते हुए आपको लगेगा ये बहुत प्यार से बनाया हुआ भोजन है, बहुत इमिजिएटली पता चलता है भोजन स्वीकार। टेस्टी की बात नहीं है, कौन सा खाना ज्यादा
0: ऑयल कितना
2: टेस्टी ना,
0: है
2: वो बातें नहीं है,
1: नहीं
2: इट्स द
1: है,
2: फील दैट यू विल गेट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फूड।
1: और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ये सभी नहीं कैच कर पाएंगे। आमतौर पर जो लगा ज्यादा टेंशन में
0: आई
1: जी
0: थिंक
1: रहे हैं,
0: हमने
1: एक्सट्रोवर्ट है,
0: हम खा भी किस थॉट में रहे हैं। सी हमारे पास मतलब कभी ड्राइव करते हुए खा रहे हैं, कभी गुस्से में खा रहे हैं, कभी पढ़ते हुए खा रहे हैं, कुछ लिखते हुए, मुझे याद टेलीविजन देखते हुए मुझे याद ही नहीं पड़ता कि नॉर्मल खाने के ऊपर फोकस करके खाया गया हो। लेकिन ये कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है डॉक्टर साहब जो बताती है कि जिस भाव से खाना बनाया गया है या खाया जा रहा है उसका आपके थॉट्स पर या आपकी बॉडी पर जो खाने का अपना प्रभाव है उससे फर्क पड़ता है?
1: एक तो जो रिसर्च हुई, इस प्रकार की रिसर्च हुई है कि थॉट्स का प्रभाव खाने पर क्या होता है, प्लांट्स पर इसकी रिसर्च की गई कि एक प्रकार के सब प्लांट्स लिए गए, जो जमीन थी वह भी एक प्रकार की थी, पानी भी एक जैसा ही उनको दिया गया। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ जो पानी देने वाला है वो प्लांट्स पर, वह व्यक्ति डिफरेंट थे, कि कुछ तो क्रिमिनल्स को वह पानी वाटर करने के लिए दिया गया, दूसरा नॉर्मल लोगों को दिया गया, और तीसरा जो लोग बहुत भावुक थे ऐसे लोगों को वह प्लांट्स को वाटर करने के लिए पानी दिया गया। और फिर जब 4 मास के बाद उन्होंने देखा तो क्रिमिनल्स ने जिन प्लांट्स को पानी दिया था उनकी ग्रोथ सबसे कम थी, जो लोग भावुक थे, इमोशनल थे, उन्होंने जो वाटरिंग किया था उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, जो नॉर्मल थे वो बीच में थी। और उसका कंक्लूजन ये निकाला, क्योंकि जो भावुक थे उन्होंने भावना से यहाँ तक पूछा भी कि भी ये क्या हमें करना है, ये क्यों कर आप प्रयोग कर रहे हैं, और बड़ी भावना से प्यार से पानी दिया, इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि भी सचमुच जो हम अगर प्लांट्स पर हमारे थॉट्स की इफेक्ट हो रही है तो खाने की इफेक्ट होगी ही होगी।
0: तो मतलब अननोइंगली हम जब खाना बना रहे, इवन आज मदर्स को भी अगर आप देखते हैं तो कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं वो मदर्स।
2: दैट्स व्हाट कॉन्शियसनेस व्हाइल कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो ध्यान रखते कि अगर राइट कॉन्शियसनेस नहीं है तो अभी भोजन नहीं बनाओ, बिकॉज मोर देन गुड यू विल डू डैमेज। हम सिर्फ फिजिकल पर आज दिन तक ध्यान दे रहे थे ना कि
0: रोते
2: खाना
0: हुए
2: तो
0: बना रहे होते हैं लोग।
2: परेशान, कभी गुस्सा, कभी
0: हाँ
2: थके हुए, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू कुक बट यू आर कुकिंग, तो इट्स अ वेरी यू नो अच्छी फीलिंग नहीं। और कई बार ये थॉट आती कब खत्म हो, जल्दी करूँ मैं जाऊँ उधर, दैट्स नॉट द राइट एनर्जी वे गिविंग टू द फूड। तो जो भोजन वो खाएगा उसको भी वांटेड नहीं फील होगा, बिकॉज जो दे रहा है उसने कैसी फीलिंग से दिया, जल्दी करो खत्म करो बस खाओ मेरा हो जाए काम, नॉट द राइट कॉन्शियसनेस फॉर द फूड। इवन जैसे भाई साहब ने कहा गार्डन, कोई गार्डन में है जो उधर का मालिक है वो खुद उस गार्डन को पानी देता है, आप देखो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है अपने पौधों के साथ। एंड कोई है जिसने माली है जो गार्डनर है, बस वो आ रहा है 15 मिनट पानी दे के चला जा रहा है, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द गार्डन। आप
0: अच्छा
2: माउंट आबू आए जहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ बहुत मेडिटेशन होती है, ओवरऑल एनर्जी ही डिफरेंट है, और आप वहाँ के आकर गार्डन देखें। जो जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, न्यू पीपल कमिंग फॉर द फर्स्ट
1: फर्स्ट
2: टाइम,
1: टाइम
2: वो भी कहते हैं यहाँ के गार्डन में कुछ अलग बात है। बिल्कुल, वो लॉजिकली नहीं मालूम है कि वो अलग बात क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन नेचर। तो ये तो बहुत सारा, अगर आप सिर्फ अवेयर होकर चलोगे ना आपको ये सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आप एक प्लांट को, लोग घर में कई लोग ये करते हैं कि अपने प्लांट्स को बहुत प्यार से वाटर करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कई बार, यू नो यू विल सी द ग्रोथ। एंड कोई है जो निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, यू विल सी हाउ द ग्रोथ इज। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंट हो रही है ना दोनों की, अब इसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रो करते टाइम चाहे वो
1: हाँ
2: कुक
1: को
2: करते
1: करते
2: टाइम,
1: बात तो वही,
2: बात तो एक ही हो गई ना सारे।
1: और ग्रोथ पर इफेक्ट हो रही है तो कुकिंग की भी इफेक्ट होगी।
0: हाँ, और वो खाना बना और वो हमने खाया।
1: और ये जो बात शिवानी बहन ने बताई वो मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व की थी। आज तो माउंट आबू में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन पहले पांडव भवन बहुत छोटा सा होता था, वो ओम शांति भवन भी नहीं था, तो वहाँ पर हम बम्बई से कुछ भाई बहनों को ले जाते थे, वहाँ तब भी योग शिविर चलती थी छोटे छोटे रूप में 50-100 लोगों के लिए, और तब बम्बई से बस लेकर के जाते थे। और जो वहाँ जो जा रहे हैं लोग, साधक को तो पता था कि हम कोई आश्रम में जा रहे, लेकिन वो ड्राइवर को पता नहीं होता था, वो तो हमने बस हायर की है। लेकिन जैसे वो पांडव भवन में पहुंचते थे, ड्राइवर भी कहते अरे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो यही सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं, वह भी उसे कैच कर पाता है कि यहाँ के वाइब्रेशन कितने अच्छे हैं।
0: तो ये बात तो रही कि अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका हमारे मन पर, मन से फिर थॉट्स पर।
2: सी ऑलवेज वी बीन टॉकिंग के थॉट्स एनर्जी है, वाइब्रेशन है, मैं जो थॉट क्रिएट करूँगी वो आपके लिए जाएगा। अब ऐसे ही मैं वो थॉट क्रिएट किया, आपको गया। अब मैं वो थॉट क्रिएट का जब मैं खाना बना रही हूँ, एनर्जी तो है, फूड इज ऑल्सो एनर्जी, तो वो थॉट्स, वो एनर्जी खाने के साथ है। अब मैं आपको डायरेक्टली थॉट्स नहीं दे रही, लेकिन खाने, आई एम सर्विंग इट टू यू ऑन अ प्लैटर एक्चुअली। मैं अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को आपको प्लेट में बहुत सुंदर तरह से सजा कर दे रही हूँ। मैं अपनी ग्रीड को, इफ आई एम डूइंग इट फॉर अ कमर्शियल प्रोसेस, इसीलिए एक्चुअली कहा जाता है प्रॉफिट के लिए जहाँ खाना बन रहा हो तो कभी खाना नहीं खाना चाहिए, नेवर, बिकॉज उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो नेवर, इट शुड बी वेर इट्स बींग कुक्ड विद लव, एंड यू नो आपको खिलाना चाहते हैं, ना कि आपसे कुछ कमाना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट।
0: एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक जाएं, कि खाना जो है दैट इज मैटर,
2: नो, फूड इज एनर्जी ना, लिविंग लिविंग थिंग है ना, प्लांट इज अ लिविंग थिंग। मैटर पे भी तो माइंड का असर होता है।
1: इवन एनर्जी लेवल को मेजर भी किया गया है, और उसमें देखा गया कि भी फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, सेकेंड इज स्प्राउट्स, थर्ड इज वेजिटेबल्स, एंड फोर्थ इज रोटी चपाती दाल, उसमें काफी लो है,
2: कुक्ड जो, क्योंकि डेड हो गया। हाँ, कुक्ड में भी, अब इसमें वेजिटेबल्स में भी आप फर्स्ट डे देखो जब वो फ्रेश है, फिर आप उनको देखो 2 दिन बाद, फिर आप उनको देखो 4 दिन बाद, उसमें भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है।
0: ओके, तो एनर्जी इन व्हाट सेंस, जो डिफरेंट विटामिन प्रोटीन्स ये सब एनर्जी,
1: ये है, इट्स अ सूक्ष्म एनर्जी जो वास्तव में ऑरा के रूप में है, वो फ्रूट्स में, स्प्राउट्स में मैक्सिमम है।
0: तो ये जो एस्पेक्ट पर हमने एक्चुअली, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हमने खाना कैसे खाना चाहिए, कैसा खाना हो, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हो, कितना प्रोटीन्स हो, उस पर तो पूरा फोकस किया है। अगर हम इस पर फोकस कर पाते हैं, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट।
2: नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट अवेयरनेस चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने माइंड पर अटेंशन रखना चाहती हूँ तो मुझे हर तरफ से अटेंशन रखना पड़ेगा ना। आई कांट डू दिस कि मैं अपना ध्यान रखूँ, मेरे को शांत रहना है, पीसफुल रहना है, फिर मैं जाकर गुस्से को कंज्यूम कर लूँ। एक कुछ डिश खाई और गुस्से की वाइब्रेशन कंज्यूम कर ली, तो मैंने जितनी मेहनत की थी उस पर फिर ये डैमेज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अटेंशन रखूँ, वर्क करूँ, फिर कोई और एनर्जी कंज्यूम कर लूँ, फिर कहूँ पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अभी लंच में क्या खाया था, लंच में किसी का स्ट्रेस भी कंज्यूम किया था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही आज, लेकिन कंज्यूम क्या किया था, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम के चिंतन को मैंने अपने लंच के साथ कंज्यूम कर लिया था, इसीलिए नाउ दैट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई थिंकिंग ऑल्सो। I wouldn't know the exact thought कि आपकी thought क्या चल रही है, वो मेरी thought हो जाएगी वो नहीं, लेकिन the quality of the energy will be that। आजकल जैसे Kirlian photography करके एक technique है, जिसमें आप जब photo खींचते हैं तो आपको body की पूरी energy level दिखाई देती है, तो उसमें सिर्फ shape वो ही होती है, बाकी colors होते हैं depending on the energy। वो ही Kirlian photography आप food और fruit और cooked food के samples की भी कर सकते हैं, और उसमें clear नज़र क्या आता है, आप non-veg फूड है उसकी फोटोग्राफ लें, आप फ्रेश फ्रूट है उसकी फोटोग्राफ लें, आप उसी फ्रूट को 4 दिन बाद लें उसकी फोटोग्राफ लें, क्लियर के जो नॉन वेज फूड है उसकी जो एनर्जी फील्ड आएगी इट विल बी वेरी डार्क इन कलर, डार्क ब्लू ग्रे दैट साइड, फ्रेश फ्रूट है लाइटर, मतलब प्योरिटी है, वही फ्रूट स्टेल हो गया डार्कर साइड, तो इससे क्लियर दिखाई देता है दिस इज एनर्जी जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, थोड़े साल पहले जब इट वाज अ डीप कोर बिलीफ सिस्टम कि जैसा अन्न वैसा मन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय सब कहते थे ये कि जैसा अन्न वैसा मन। आज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी से बात करो, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट के बाहर से खरीद कर खाना खाया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर, दिस इज ऑल इन द लास्ट 50-60 ईयर्स, क्योंकि उस पर बहुत ध्यान रखा जाता था कि खाना कौन बना रहा है और किस स्थिति में बना रहा है। सो दैट एनर्जी फील्ड अब वो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, जो हमारी संस्कृति में पहले बताया जा रहा था, टुडे वी आर साइंटिफिकली गेटिंग द प्रूफ ऑफ दैट।
1: इनफैक्ट पानी के लिए भी जैसे बताते हैं ना, भी पहले के जमाने मेरे दादा ये कहानी सुनाते थे कि भी एक व्यक्ति जा रहा था तो उसने कहीं से पानी पिया, तो नॉर्मल विचार है, आगे गए दूसरे कुएं से पिया तो चोरी करने के विचार है, उसको लगा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसे विचार क्यों आ रहे। तो किसको पूछा कि भी कुआ किसने बनाया, तो उसने सचमुच कहा कि भी एक चोर था, उसमें फिर चेंजेस भले आए लेकिन उसने ये कुआ बनाया है। तो कहते हैं उससे, हाँ मैंने इससे पानी पिया तो शायद मेरे मन में इस प्रकार के विचार आने लगे। और आज तो देखो ना, वो रिसर्च भी जो जापान के साइंटिस्ट की रिसर्च, कईयों को इसके बारे में पता है कि वाटर के क्रिस्टल्स बना दिए गए और बस उस पर फर्क इतना ही था कि सिर्फ नाम अलग लिखा था कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बॉटल पर लिखा कि मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ, एक बॉटल पर मदर टेरेसा लिखा, एक पर हिटलर लिखा, और फिर उसके क्रिस्टल बना करके जैसे MRI करते, जैसे स्पेशल उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी MRI की गई, तो देखा कि भाई जिस पर लिखा था आई हेट यू, वहाँ वाइब्रेशंस दूर दूर जा रहे हैं, वो नजीक क्रिस्टल्स नजदीक में
2: क्रिस्टल बना ही नहीं ना, क्रिस्टल बनता ही नहीं है, एंड जो पीसफुल वाइब्रेशंस के एकदम क्लियर डिफाइंड शार्प क्रिस्टल्स बने हैं।
1: योने भी बहुत अच्छा उसका एक इंटरप्रेट, भी हिटलर लिखा था उसमें वह अणु नजदीक आ नहीं, कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने यह कहा कि भल हिटलर बहुत खराब व्यक्ति था लेकिन कहते कोर जो उनका है ना अच्छा है, जो ब्रह्मा कुमारीज में मानते हैं कि भी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी वो अच्छी है, भले एक्वायर्ड कुछ भी हो, तो भी ओरिजिनली वो अच्छा व्यक्ति था, पर उसने बहुत बुरे काम किए। तो इस प्रकार से वाइब्रेशंस की क्रिस्टल्स पर कितने इफेक्ट होते हैं।
0: तो मतलब सिर्फ ये कहने से, सिर्फ ये लिख देने से ही, या जो भी आपने वाइब्रेशंस दिए, पानी अगर ऐसा क्रिएट कर रहा है, तो हम जो खा रहे हैं, इनफैक्ट मैं बात नॉन वेजिटेरियन फूड की हुई, ये भी आजकल एक बहुत ज़्यादा इस पर बात करते हैं लोग। सी इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वेजिटेरियन बने, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का सबको पता चलता जा रहा है कि कितना भी अपने आप को हम समझाते हैं कि प्रोटीन लेवल चाहिए, बच्चों को देना चाहिए क्योंकि उससे जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो ठीक मिलती है ग्रोइंग एज में, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वॉट इज़ द डिफरेंस, यू नो, वाई वेजिटेरियन फूड इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियन फूड?
1: कई दृष्टि से अगर आप देखो, जैसे भी आपने बताया ना प्रोटीन की बात भी, इनफैक्ट दालों में जो प्रोटीन है वो एक से बहुत अच्छा है। सोयाबीन प्रोटीन इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। वास्तव में मिथ है कि भी नॉन वेज में ज़्यादा प्रोटीन है, तो एक तो ये बात बल प्रोटीन की, साथ साथ में अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स को देखें कि आज जो सबसे जो नंबर वन किलर इज व्हाट, क्या है नंबर, हार्ट डिजीज। और हार्ट डिजीज क्यों हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो आज नॉन वेज में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और वो भी सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है कि जो सीधा जाके हार्ट की धमनियों में चिपकता है। तो इसके कारण ये एक सिंगल रीजन से भी हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। और एक सूक्ष्म बात की जो आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं कि जब प्राणी को मारा जाता है ना, आपके पीछे कोई गन लेके भागे तो क्या होगा, एक्सट्रीम फियर निर्माण होगा और उससे फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स निर्माण होते।
0: अच्छा,
1: एड्रेनालिन,
0: क्योंकि वो सारा वो होगा ना, अब वो कौन सा सिंपैथेटिक,
1: सिंपैथेटिक
0: नर्वस सिस्टम जो है जी, तो वो जानवरों में भी वैसे ही होता है।
2: एंड लास्ट ना उस टाइम आपने मार दिया,
1: मार दिया,
2: सिर्फ गन लेके भी नहीं, हम तो खींच के वो स्लॉटर हाउस में लेकर जा रहे हैं,
1: उनको पता भी मारने वाले, केमिकल्स चल रहे,
2: टॉक्सिक थॉट्स जो गिरीश भाई ने बताया वो सारे केमिकल्स बॉडी में सिक्रेट होते हैं,
1: कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन हाई लेवल में रिलीज होता है और वो जब आप मांस को पकाते हो तब भी वो खत्म नहीं होता।
0: अच्छा, तो वो रिटेन रह जाते हैं।
1: इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ये जो केमिकल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो आप उसको खा रहे हो, नहीं सोचो
0: कितना एक्सट्रीम, ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि ये खाते हैं तो उनका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है।
1: प्रोडक्शन उसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि ऐसे तो खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल इफेक्ट आपके बॉडी पर भी होगी.
0: लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स विल
1: इंक्रीज एंड नो देन दैट हार्मफुल इफेक्ट विल इंक्रीज
2: एंड एनर्जी भी कौन सी कंज्यूम की, फियर और एंग्जायटी की. तो अब आप डिसाइड करो, आप बोल रहे हो ना छोड़ने में मुश्किल लगता, तो प्रोटीन्स है, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज प्रोटीन्स प्लस फियर एंड एंग्जायटी.
0: And now, then so many harmful.
2: Now do I want to eat? This is that non-veg dish. It is proteins plus fear and anxiety. And yeah, hamara dal, paneer, sprouts. This is proteins minus fear and anxiety. Now choose. It's open. You know, everyone has the right to choose. Lekin ek bar aapne choice ki hai ki main fear aur anxiety ko aur ye sab hormones ko consume karne wala hu. फिर नहीं अपने आप को कहें कि मैं क्यों परेशान रहता हूँ, मुझे क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है. मैंने कंज्यूम किया है उसको और मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एवरी डे, तो क्यों नहीं आएगा. बचना चाहता हूँ कोई बात नहीं, फिर छोड़ू. ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट तो करके देखें ना. हर रोज वही कंज्यूम कर रहे हैं, फिजिकली भी डैमेज, यू नो. फियर कंज्यूम करना, हम किसी के फियर को कंज्यूम कर रहे हैं. व्हाट मस्ट बी द लेवल ऑफ फियर व्हेन समवन इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड. We just have to think कि मेरे अंदर किस तरह की thoughts चलेंगे if I was going to be slaughtered just now. That is what I'm consuming.
0: तो वो जो actually अगर हम देखें भी कि कोई डरा हुआ या गुस्से में होता है व्यक्ति या घबराहट में होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम उसकी घबराहट का हिस्सा बनते
1: हैं.
2: आपको फील नहीं होता क्या?
0: You know, एकदम से डर. भाई अगर आप फियर के माहौल में हैं, आपको खुद फियर हो, यू स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड, यू नो.
1: एग्जाम में होता है ना, एग्जाम सबने, एक बच्चा डरा हुआ है सारे डर जाते हैं. और देखो दो इम्पोर्टेंट रीजन है. एक तो कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, क्या उसमें डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे. कोई कहे भी
2: सस्ता मिल जाएगा,
1: खराब भी हो जाएगी. तो ऐसे ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी गाड़ी है वो किसके लिए बनी है, नॉनवेज के लिए बनी है या वेजिटेरियन डाइट के लिए बनी है. और अगर आप एनिमल किंगडम में देखो, ह्यूमन बींग तो सबसे वो एडॉप्ट हो गए. एनिमल किंगडम में वेजिटेरियन एनिमल भी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है. अगर आप देखेंगे कि जो वेजिटेरियन एनिमल है उनकी पूरी सिस्टम और हमारी सिस्टम, हाँ, हर्बीवोरस एनिमल, वो एग्जैक्टली सेम है.
0: अच्छा,
1: देखिए वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उनके कनाइंस जो है वो बहुत बड़े नहीं है, चीरफाड़ करने के बड़े दांत नहीं है. हमारे भी कनाइंस बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं. ऐसे जो मुंह में सलाइवा होता है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल का हाईली एसिडिक है. हमारा सलाइवा है वो अल्कलाइन है. हमारे स्टमक में भी जो एसिड है वो बहुत कम है. नॉन वेजिटेरियन एनिमल के स्टमक में बहुत मात्रा में एसिड होता है. ऐसी एक मेन डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो कितने बड़े हैं पता है ना? अवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर 22 feet लॉन्ग. वो कॉइल के रूप में पेट में पड़े हैं. जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सिर्फ 6 feet लंबे. क्योंकि पहले से कुदरत को पता था कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल इसमें फाइबर नहीं होना है तो वह धीरे धीरे पास होगा, तो इसके लिए वो 6 feet के ही बनाए. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बनाए 22 feet के? क्योंकि पता था कि बहुत सारा फाइबर कंज्यूम करेगा, वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करेगा, तो वह फिर स्लोली जाएगा और उसको 24 घंटे लगेंगे बाहर आने में. और भी कुछ अगर हम चीजें देखें कि बाइल का प्रोडक्शन, लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है, हमारे में बाइल की मात्रा कम है क्योंकि हम फैट कम कंज्यूम करने वाले. नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज्यादा फैट है, तो इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है उनका बाइल का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मात्रा में बाइल को चाहिए. तो ये सारी सिस्टम को ही देखो, हमारी सिस्टम वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह है. और दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है ना वो जीभ से पानी पीते हैं.
0: अच्छा.
1: हम जीभ से, हम तो मुंह से पीते हैं, वेजिटेरियन एनिमल ही मुंह से पानी पीते हैं. और भी एक डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, अब एक कुत्ते को देखना से करेगा जब उसको टेम्परेचर को डाउन लाना है, लेकिन हमारे में वो सिस्टम ही है कि ऑटोमेटिक हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है. टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है. दैट इज देयर ओनली इन वेजिटेरियन एनिमल्स. तो आवर होल सिस्टम इज सच, उसको भी कोई समझ ले तो चेंज हो जाए.
0: इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह की आज हमने वही बार बार हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस, कि पता चला है, क्योंकि अभी तक शायद सब बोलते थे कि वेजिटेरियन होना चाहिए या खाना जो है वो सही, और जैसा कि अन्न का मन पर असर है, सुनते आए थे, समझ नहीं पा रहे थे और ये सोचते थे कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, सी हम खाना बना नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी इंक्लिनेशन नहीं है, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे को इतना फर्क डाल रहा है। अच्छा खाना खाने को, जो हेल्दी सपोजिटली खाना है, उसके ऊपर हमने फोकस शुरू किया अगेन, बिकॉज हमें लगा कि वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जब हम थॉट बार बार हम कह रहे हैं सोच समझ के सोचना है, अगर उस पर ये सारी चीज़ें इतना असर डाल रही हैं, थैंक यू सो मच। सल्यूशन हमारे सामने है, आज अवेयरनेस है, आज ज्ञान है, आज समझ में आ रहा है कि अभी तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हम खा क्या रहे हैं। हमने बहुत बार सोचा कि राइट डाइट, उतना विटामिन्स खाने हैं, उतना

कि कैसे आगे खेलेंगे, कोई बात मन में है, कोई विचार है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओम शांति।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, वेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं महेश। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ महेश जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने एक्सेल किया है और काम भी कर रहे हैं, तो आज हम लोग अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए सिविल इंजीनियरिंग में कैसे करियर बन सकता है और क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम लोग एक्सेल करके आज के समय में सोसाइटी को, समाज को भी हेल्प कर सकते हैं और अपना करियर भी अच्छा बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से महेश जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू रमेश जी।
1: जी जी जी, नमस्कार। महेश जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत बढ़िया।
1: मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुआ?
2: एक्चुअली रमेश जी, इसमें शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्यों सिलेक्ट किया।
1: हाँ।
2: तो मेरे पिताजी एक्चुअली अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उन्होंने पहले बिजनेस किया है और वो बहुत बिजनेस माइंडेड आदमी है।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने हमेशा से मुझे ऐसी पालना दी है कि तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम्हें जॉब करना ही नहीं है।
1: अच्छा।
2: तुम बिजनेस ही करोगे। तो मैंने आज तक जॉब नहीं की है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
1: ओके।
2: बीच में थोड़े सेटबैक्स आए थे तो ऐसे ही कभी होती थी इच्छा कि जॉब करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे करियर की शुरुआत ही कोरोना में हुई।
1: ओह।
2: तो बहुत दिक्कत हुआ था।
1: हाँ।
2: तो वो बिजनेस माइंडेड सोच की वजह से फिर मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें सिविल साइड आगे बढ़ने में शौक था मेरे पिताजी को। तो बस यही है कि इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग प्रीफर किया।
1: तो आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से?
2: मैंने पढ़ाई की मेहसाणा, गुजरात से।
1: अच्छा,
2: वहाँ गणपति यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ मैंने पढ़ाई पूरी की। और हमारा बीटेक का प्रोग्राम होता है, वो 4 साल का प्रोग्राम होता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, फिर जैसे ही 12th ख़त्म हुआ तो मैंने किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जैसे इंजीनियरिंग में काफ़ी फील्ड्स होती है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, कंप्यूटर, किसी में मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। सारी कॉलेजेस डाली, सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया और उसमें फिर हमें एडमिशन मिला महसाणा गणपति यूनिवर्सिटी में।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा कि कुछ स्कूल की आपकी बचपन की यादें हमें ताज़ा कराइए, टीचर्स वगैरह का, कभी कुछ आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला हो किसी चीज़ को लेकर और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको डांट पड़ी हो।
2: एक्चुअली मेरा एक फेज रहा है कि मैं बचपन में बहुत शैतान था।
1: हाँ।
2: फिर बड़े होते होते सुधरता गया।
1: अच्छा।
2: अभी एकदम ही सुधरा हुआ आदमी हूँ।
1: तो स्कूल में कुछ ऐसे इंस्टेंट याद हो?
2: स्कूल में बचपन में तो बहुत शैतानी की थी, तो ऐसे मार भी बहुत पड़ी है।
1: अरे बाप रे।
2: तो उसमें तो बहुत ऐसे रहा है, लेकिन ऐसे एक इंस्टेंट ऐसे मैं अचानक अभी नहीं बोल पा रहा हूँ।
1: जी, जी जी।
2: लेकिन ऐसे काफ़ी अच्छे दोस्त बने, बहुत ऐसा घूमने फिरने का शौक रहा है, तो अच्छा माहौल था और हम एक सीधे साधे लोग थे, लेकिन मस्ती करना ये सब हम प्रेफर करते थे, हमको अच्छा लगता था दोस्तों।
1: अच्छा, कोई अपने स्कूल टाइम में पिकनिक गया हो तो उसकी यादें अगर हो तो?
2: पिकनिक अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिकनिक जाना स्कूल में बहुत साल में एक बार जाते थे, बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए।
1: जी, जी, जी।
2: तो हमें बहुत खुशी होती थी पिकनिक जाते थे। तो एक जैसे दूर लेके जाना पिकनिक ये हमारी स्कूल में प्रेफर नहीं होता था।
1: अच्छा, अच्छा।
2: लेकिन एक हमारी बैच थी जो हम 11th में आए, तो हमको जैसे मैं हमारा रेसिडेंस है सूरत से नज़दीक है
1: जी,
2: तो हमें वो मुंबई लेके गए थे एसएल वर्ल्ड।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
2: तो वो हमारा सबसे यादगार पिकनिक था, बाकी हमको आजू बाजू लेके जाते थे, लेकिन ऐसी पूरी स्कूल में एक ही बैच था जिसे एसएल वर्ल्ड लेके गए, तो वो बहुत हमें खुशी हुई थी उस टाइम में।
1: फर्स्ट टाइम
2: एक्सपीरियंस था, काफ़ी खुशी हुई।
1: बहुत बढ़िया। तो अभी वापस स्कूल में जब पिकनिक के साथ में आप गए, उसके बाद फिर से वापस कभी गए हैं आप एक्सेल वर्ल्ड में?
2: नहीं, एक्सेल वर्ल्ड हम खाली बाहर से देख के आ गए थे, काफी भीड़ देख के।
1: अच्छा,
2: ये बहुत भीड़ है तो चलो रहने दो। वो माता पिता के साथ गए थे।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो
1: फिर से वापस
2: फिर नहीं खाली बाहर से फिर निकल गए, बहुत भीड़ है देख के।
1: बिल्कुल। अच्छा, उधर क्या क्या चीजें हैं कुछ बताइए।
2: वहाँ पे कैसा है कि काफी ऐसे वर्ल्ड क्लास राइड्स है जो बहुत एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। एक वाटर पार्क है, वाटर पार्क फिलहाल मैं नहीं गया हूँ, लेकिन वो राइड्स में मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक राइड्स है वो, जैसे यहाँ नॉर्मल कभी कभी गांव में साल में एक बार जैसे मेले लगते हैं वैसी राइड्स नहीं है, बहुत फ्यूचरिस्टिक राइड्स है। तो जो भी ये सुन रहा है वो एसएल वर्ल्ड हो गया, इमेजिका हो गया, उनको जाना चाहिए।
3: सही बात है,
2: साल में एक बार जाइए, लाइफ में एक बार तो जाइए।
3: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हटके चीजें होती हैं। अच्छा, जब गांव के साइड में अगर आपको लेके जाते पिकनिक में नज़दीक में, तो वहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें कभी आपको देखने को मिला हो, कुछ खास लेक्चर वगैरह हुआ हो या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए लेके गया हो, वो कुछ याद है तो?
2: यूनिक चीज़ें एक्चुअली वहाँ ज़्यादातर गांव में कैसे मेले लगते हैं कि वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं, फिर एक वो जैसे छोटी छोटी वो खेल होते हैं, जैसे गन से बलून्स को फोड़ना, फिर वो रिंग्स वो जाल के वो गिफ्ट लेना।
3: जी, जी,
2: तो वो सब होता था, तो वो सब ऐसे कभी कभी ऐसे मजा आता है अभी। जी, जी, जैसे अभी भी होता है तो हम खेलते हैं, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं।
3: एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री हम लोग के बीच में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें कोई एक बंदा जो है, एक जन की स्टोरी हमें पसंद आ जाती है। बहुत सारे लीडर्स हैं, सबकी स्टोरी तो सर को बताना है लेसन के अनुसार, लेकिन फिर भी किसी एक बंदे का जो है, लीडर का, वो हमारे मन में ऐसे छाप छोड़ जाता है। तो ऐसे कौन है और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
2: वैसे हमें शिवाजी
3: जी जी जी
2: और पृथ्वीराज चौहान, इनसे बहुत इन्फ्रेशन मिला है।
3: अरे वाह।
2: तो वो हमें शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान सर के पास, मतलब उनके उनके बारे में मैं ज़्यादा सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन शिवाजी हमारे यहाँ के एक, जैसे मैं हमारा जो घर है वो महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ लगता है, वैसे हम गुजरात से ही हैं लेकिन महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पे शिवाजी का बहुत क्रेज है। वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अभी भी आज की डेट में कोई भी मराठी गिनेंगे, 90% ऑफ मराठीज हैव देयर फ्लैग्स, वो शिवाजी का गाड़ी पे पोस्टर लगाएंगे। मतलब उन्होंने इतना इंस्पायर किया लोगों को कि आज की डेट में भी उनकी पूजा होती है।
3: बिल्कुल।
2: तो वैसे लीडर्स काफी कम हुए हैं इंडिया में, तो उनको बहुत बहुत सैल्यूट।
3: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और शिवाजी महाराज को आपने याद किया, और एक ऐसा बंदा है जिन्होंने स्वराज्य स्थापन करने के लिए काफ़ी मेहनत भी किया, और पूरे भारत में वो जो है घूमकर जो है लोगों को जागरूक करना और स्वराज्य के लिए, स्वराज्य स्थापन करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, इसीलिए महाराष्ट्र में उनको आराध्य देवता के रूप में आज भी याद करते हैं और उनकी गौरव गाथा जो है बच्चों को भी सुनाते हैं। तो आइए, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, स्कूल में एग्ज़ाम फियर वगैरह रहा क्या आपको भी?
2: एक्चुअली एग्ज़ाम फियर तो कभी नहीं रहा, और सच बोलूँ तो मैं तो एक, मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने बहुत पहले से पढ़ाई की हो, आखिरी कुछ दिनों में ही मैंने पढ़ाई की है। अच्छा। तो उस टाइम पे एक स्ट्रेस तो डेवलप होता ही है, लेकिन एग्ज़ाम से डरते नहीं थे, कि एग्ज़ाम से कभी डर नहीं लगा, पास तो हम हो ही जाते थे, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे मार्क्स से पास होते थे, लेकिन आखिरी टाइम पे पढ़ना एक हमारी बुरी आदत रही है। तो जो भी ये सुन रहा है वो आखिरी टाइम पे मत पढ़िए, थोड़ा पहले से पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा बीच बीच में, मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करिए, भले आधा घंटा दीजिए, एक घंटा दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़िए, तो एक वो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और पढ़ाई के प्रति आपको वो घृणा नहीं आएगी, मतलब एक
3: बिल्कुल
2: अच्छा लगेगा आपको कि चलो हम अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं।
3: जी जी जी, ये महेश जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई एग्ज़ाम के पहले हम लोग पढ़ लेंगे, और मोस्टली ऐसा 80-90% बच्चों का ये ख्याल रहता है, तो ये ख्याल ना रहे, इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो है रेगुलर पढ़ाई करनी है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम के पहले हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने या रात भर जाग के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और आराम से लाइटली अपने एग्ज़ाम को दे और अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर महेश जी से बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ महेश जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। और महेश जी ने अपना बचपन की स्कूली जीवन की यादें बहुत अच्छी तरह से ताज़ा कराई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से महेश जी के साथ जोड़ना चाहूँगा। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया रमेश जी।
0: तो चलिए मैं चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर आपने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो ऐसा नहीं हुआ कि डिग्री आया तो नौकरी भी करके एक बार एक्सपीरियंस ले लेते फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या क्या हुआ उसके बाद वो बताइए।
1: एक्चुअली जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग शुरू किया था
0: जी,
1: तब मैं साथ ही साथ उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक साइट विजिट करता था और अनुभव लेता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, पूरा इंटरेस्ट था। तो मैंने पहले 2 साल तो ठीक है, मतलब कम गया, लेकिन आखिरी के 2 साल मैं बहुत गया उनके साथ।
0: अच्छा,
1: तो मुझे एक अनुभव होता गया और मुझे अच्छा अनुभव हुआ उनके साथ। जैसे ही फिर पढ़ाई ख़त्म की तो अभी उसके बाद तो मैं थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ, क्योंकि कोरोना टाइम पर सब था, प्रॉब्लम्स आ गए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिर उसी बीच फिर मैंने एक एक्सपोर्ट बिजनेस का भी सोचा।
0: अच्छा,
1: तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ। तो वो अभी ये रेडियो के माध्यम से इतना ज़्यादा मैं एक टाइम में नहीं बता पाऊंगा,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: काफ़ी
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से हम, अगर समझो गांव के साइड का बच्चा है और वो सिविल इंजीनियरिंग कर लेता है, तो वो चलिए एक बार साइट विजिट जैसे आपने कहा ये तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना साइट पे गए तो सीख नहीं पाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि पढ़ाई में तो हम लोग किताबी नॉलेज हमारे पास आ जाता है और कैसे चीज़ें मिक्स करना है या कौन कौन सी चीज़ें कितनी काम की है वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब चीज़ों को देखते हैं हमारे सामने हो वो हमारे हाथों से वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसका एक बेनिफिट तो हमें मिलता ही है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें नौकरी करने से फ़ायदा है या फिर बिजनेस करने से फ़ायदा है, ये थोड़ा सा आप अगर अपने मन की बातें शेयर करेंगे तो अच्छा है।
1: एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है कि गांव के बच्चे भी उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: आपको उसमें एक अनुभव तो लेना ही है, ये एक पक्की बात है कि आपको या तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अनुभव लीजिए, या पढ़ाई के बाद कम से कम 1 साल का किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करिए। तो आपको कैसे लेबर हैंडल करना है, कैसे, जैसे उसमें एक बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में लाइन लेवल, प्रॉपर एक बिल्डिंग लाइन लेवल में बनती जाए, प्रॉपर एक नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज सब क्लियर होना चाहिए। तो आप इसमें, ये ऐसी फील्ड है कि लेबर इंटेंसिव फील्ड है, तो इसमें काफ़ी लोग आपको उल्लू बनाएंगे कि ये काम हो गया है लेकिन वो अच्छे से हुआ है नहीं है। आपको एज अ सिविल इंजीनियर उनके स्पेसिफिकेशन सब पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपको एक मिनिमम 1 साल का अनुभव तो लेना ही चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का मतलब एक लेना चाहिए, लेकिन मिनिमम आप 1 साल लीजिए।
0: तो
1: फिर आप
0: चाहिए।
1: अगर आप गांव के हैं तो आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें।
0: बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हमें सुन रहे हैं, तो आप चाहे गांव से हो शहर से हो इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और क्या हम लोग इसके साथ में बिजनेस या फिर नौकरी करना अच्छा है, ये थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ, एक्चुअली इसमें जैसे नौकरी करना तो अच्छा ही है अगर हमें एक कोई ऐसा पैकेज मिले तो, लेकिन बिजनेस गांव की साइड ज़्यादा, क्योंकि अभी जैसे जो गवर्नमेंट अभी आई है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि स्टार्टअप्स को, और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रही है। और आज के टाइम पे लोगों को अपना घर चाहिए, लोग ऐसे भाड़े पे नहीं रहना चाहते।
0: जी,
1: तो वो एक थिंकिंग अभी इंडिया में डेवलप हो गई है, जैसे ये अभी जो कोरोना हो गया उसके बाद काफ़ी लोगों में ऐसा विचार आ गया है। तो आजकल होम लोन्स भी मिलना बहुत इजी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो आप इसमें बिजनेस करेंगे तो जैसे आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी लोग आपको सीधा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको उसमें उतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपको लोगों का पैसा लेना है, उसी पैसे से बिल्डिंग बनाना है, खाली आपको एक अनुभव चाहिए, पक्का अनुभव जो आपको बाकियों से थोड़ा हटके रखे। और हर गांव-गांव में आजकल सिविल इंजीनियर की एक डिमांड है। तो आजकल लोग अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर को ना प्रीफर करके पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्टर को प्रीफर करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप इसमें कोई भी जो आदमी इंटरेस्ट लेके काम करेगा वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है।
0: सही बात है महेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। और हमारे विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं, दोनों तरफ से आपको जो है बेनिफिट है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। बस इतना है कि नौकरी करते वक्त अच्छी पैकेज आपको मिल रही है और आप उसमें, एक तो दो चीज़ें हैं, पहले शुरुआत में मुझे लगता है कि नौकरी कर लेना चाहिए ताकि आपको जो है एक अनुभव भी आ जाता है। और प्लस क्या है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिस कंपनी में आप रहेंगे उसमें मार्केटिंग का भी एक पहलू रहता है। आप भले मार्केटिंग में ना हो लेकिन आप जो भी काम करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपकी जो है संपर्क भी हो सकता है और किस तरह से मार्केटिंग होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको बाद में बिजनेस करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि एक बार आप बिजनेस शुरू कर देते हो तो क्या हो जाता है कि आपका सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल नहीं कर पाते हैं तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो 2 साल 3 साल आराम से आप जो है कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में कम पैसे में भी आप नौकरी करना, ज़्यादा एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है ना। तो एक्सपीरियंस आपको वहाँ से मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपको एक्सेल करेगा, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि गांव में भी लोग जो है बिल्डिंग में रहना पसंद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट है, जितना आप करेंगे उतना आप कर सकते हैं। बस इतना ही कि कोई चीज़ ओवरलोडेड भी नहीं हो, आप अपने जीवन को देखते हुए प्रॉपरली आप एक स्ट्रेटजी बना के आप शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस करने में कोई ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी।
1: फाइनेंस जैसे इसमें कैसा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
0: हाँ
1: कि अगर आपको खुद का डेवलपमेंट करना है, जैसे खुद का प्रॉपर्टी डेवलप करना है, एज अ बिल्डर बनना है, तो ये बहुत फाइनेंस की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जैसे आपका जो आप उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो आप पे है। अगर आपको पूरा अपना जो जैसे मटेरियल होता है इसमें, शटरिंग वर्क होता है, प्रॉपर्स होते हैं और जो भी इसमें सामान चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो वो सब भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो रेंटल पर भी ले सकते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन एज ए आपका एक काम शुरू होगा। और जैसे जैसे आपका काम शुरू होगा, आपने अर्निंग्स कर ली, तो वो आप अपना खुद का भी ले सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर से चालू करना बहुत अच्छा है। और अगर आप एक ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एज ए बिल्डर भी काम कर सकते हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया महेश जी, और आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि एकदम से अगर हम लोग कोई नई जगह पे जाते हैं या कोई नई कंपनी में लगते हैं तो वहाँ पर हमें जो है किस किस टाइप के जो है चीज़ों का ध्यान रखना है।
1: पहले तो मैं और एक चीज़ भूल गया था,
0: जी
1: तो मैं
0: जी।
1: एक आपको उसके बारे में बता देता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: एज अ सिविल इंजीनियर आपको अगर आप में नॉलेज है, स्किल्स है, तो आपको आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बनना चाहते, बिल्डर भी नहीं बनना चाहते एज अ सिविल इंजीनियर, तो उसमें आप खाली एक सुपरविजन करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर आपको स्किल्स
0: हैं
1: और आप लोगों के साथ आपका एक कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप सिर्फ एक सुपरविजन करके आपका पूरा काम कर सकते हैं। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। खाली एक जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑटो कैड आता है, और थोड़ा जो आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको सीखना है, और आप वो बना के जैसे प्लान होते हैं, एलिवेशन होते हैं, डिज़ाइनिंग करके आप उसमें एक अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक ऑफिस चाहिए और स्किल्स चाहिए।
0: तो
1: ये भी है,
0: तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, मना बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा जो है साइट ऑफिस खोल के आप इनकम शुरू कर सकते हैं पब्लिक सर्विस देते हुए।
1: पब्लिक सर्विस एज अ सर्विस।
0: जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। और इस तरह से जो है आप थोड़ा सा स्मार्ट बन के जो है काम कर सकते हैं इन चीज़ों को, और आप खुद इंक्लूड ना होते हुए दूसरी कंपनीज़ को भी आप उनके साथ जो है टाइप करके के काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज़ हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा अपना एक्सेलेंसी यूज़ करते हुए कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ओर अगर आप ध्यान देते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट हमको सभी को मिलता है। यानी कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर मोटो ऐसा बोला जाता है, तो ये बिजनेसमैन का स्लोगन है। अगर आप इस चीज़ को खड़ा माना अच्छी तरह से इस पर उतरते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में, है ना। तो यहाँ आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें बनी रहती है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक और प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज के खास मेहमान जिन्हें आप सुन रहे हैं, महेश जी हैं जो सिविल इंजीनियर हैं और अभी आप जो है बिजनेस करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपके पास है बिजनेस का। और मैं चाहूँगा कि आज हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस जब हम लोग शेयर करते हैं तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है, विद्यार्थियों को एक फोकस क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम खुद का बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क कहाँ पर होता है?
2: इसमें सबसे बड़ा रिस्क है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपने
1: प्रैक्टिकल नॉलेज की, मेरे
2: ख्याल से लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज,
1: जी जी जी,
2: थियोरेटिकल तो इसमें काम ही नहीं करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और जैसे उसमें जैसे हम बोलते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है आपको तो जैसे कॉलम, बीम, स्लैब ये सब आता है, तो उसके प्रॉपर रीडिंग्स आपको आने चाहिए। जैसे अगर आप उन उसकी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर ले आना चाहिए, क्योंकि एक पूरा एक बिल्डिंग का लोड है जो लोड हम ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सामने वाली बिल्डिंग, जैसे आपने बिल्डिंग टच है,
1: बिल्कुल,
2: तो
1: बिल्कुल,
2: वो बिल्डिंग पे पूरा लोड जा सकता है अगर आपने प्रॉपर नॉलेज लगा के काम नहीं किया तो। ऐसे जैसे अर्थक्वेक, आजकल अर्थक्वेक की भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है जैसे, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती है, तो वो प्रॉपर आपको एक जो ड्राइंग्स होती है उनकी डिज़ाइंस होती है वो प्रॉपर स्टडी करना आना चाहिए। नहीं तो फिर कुछ भी, मतलब एक हादसा हो सकता है। तो इसमें काफ़ी ये जिम्मेदारी वाला काम है, ये उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, जिम्मेदारी वाला काम है। तो इसमें नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमें अच्छे से पहले तो प्रैक्टिकल अनुभव लेके एक नॉलेजफुल आदमी से अनुभव लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताया महेश जी। और मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जांपल अच्छे बिल्डर्स का अगर आप दे पाए तो।
2: मेरे सबसे फेवरेट जो बिल्डर्स मैं बोल सकता हूँ वो हीरानंदानी मुंबई। जैसे आप मुंबई में अगर पोवई जानते हैं तो पूरा उन्होंने डेवलप किया है।
1: जी जी जी।
2: लोधा हो गया, हीरानंदानी हो गया।
1: हाँ
2: हाँ, तो वैसे बिल्डर्स काफी इंस्पायरिंग है।
1: जी जी जी। तो इनमें क्या देखा आपने, दूसरे से ज़्यादा इनको क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या है इसमें?
2: डिज़ाइन एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसे आप अगर हीरानंदानी गार्डन्स गए मुंबई में तो आपको जो भी एक सिविल इंजीनियर है उसे एक बार वहाँ जाना चाहिए। जो एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन है वो उसको दर्शाते हैं, और उनकी जो बिल्डिंग के डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं यहीं पर रहूँ। तो एक वो फील आना चाहिए कस्टमर को।
1: बिल्कुल,
2: तो
1: बिल्कुल,
2: उनका वो अनुभव अच्छा है उसमें।
1: महेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो बातें हैं वो हम सभी को मोटिवेट तो करता ही है, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज जब व्यक्ति सुनाता है तो इनसाइड भी हमारा शुरू हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को ख़ास सिविल इंजीनियरिंग करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान में बातें लानी है, किन किन चीज़ों को वो ध्यान रखे?
2: पढ़ाई करते करते एक्चुअली आपको पहले तो अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपको
1: बिल्कुल,
2: किस साइड जाना है।
1: हाँ,
2: इसमें
1: हाँ,
2: काफ़ी
1: हाँ,
2: सारी फील्ड्स है।
1: बिल्कुल।
2: जैसे एक डैम जैसे बनते हैं तो उसका एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। जैसे स्ट्रक्चर है तो उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है। जैसे एनवायरमेंट साइड आपको जाना है तो एनवायरमेंटल साइंस होता है उसमें।
1: जी जी।
2: तो इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आपको पहले तो अपना इंटरेस्ट पता करना है विद इन अ ईयर। तो जैसे पहले ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको विद इन अ ईयर वो सब्जेक्ट पहले तो आपको पता करना है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए उस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना है।
1: बिल्कुल।
2: बाकी सबका नॉलेज आपको होना चाहिए, एक भले उसमें थियोरेटिकल नॉलेज ही हो उसका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उसका प्रैक्टिकल अनुभव साथ साथ में लेते चलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जहाँ पर हमने सिविल इंजीनियरिंग की बातें की और निश्चित तौर पे हर चीज़ जो है, जो भी हमने शुरुआत से लेकर अब तक बातें की, हर चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ध्यान से सुना हो आज का ये एपिसोड, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है सक्सेस का की मंत्रा मिल गया है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग। तो मैं चाहूंगा कि इसको 2-3 बार आप विद्यार्थी मित्रों को सुनना चाहिए प्रोग्राम को, और पॉइंट्स निकाल के रखिए ताकि आपको कोई आगे करियर बनाने में या सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और एक अच्छा जो है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें, तो सचमुच आपको जो है ना, ये सारी चीज़ें नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल देखने की भी ज़रूरत है। नॉलेज एक बार की बात है कि आपको पता चल गया कि क्या फार्मूलाज है, किस तरह से चीज़ें अच्छी बनती हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या फार्मूलाज हैं, कैसे मिक्सचर बनता है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से भी मिल जाएंगी, है ना। लेकिन आपको मेन आता है कि कैसे वो चीज़ों को देखूँ मैं और वो चीज़ें प्रैक्टिकल कहाँ कैसे हो रहा है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइट विजिट, साइट में आप, मुझे लगता है कि कभी कभी आप वर्कर बन के भी ये सारी चीज़ें करके देखिए, है ना।
2: यस, बिल्कुल।
1: एक मिस्त्री कैसे काम करता है, एक जो लेबर है वो उनके साथ कैसे सपोर्टिव काम करता है। मैं चाहूँगा कि एक बार जो है ना, आप अपने आप को भूल जाइए और सारे काम को खुद करके देखिए, ताकि ये क्या है, क्योंकि एक लेबर अगर मेहनत कर रहा है तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक मिस्त्री काम कर रहा है तो वो, उसकी भी नॉलेज आपके पास हो, और फिर आप तो एज ए सुपरवाइज़र ही रहेंगे वहाँ पर, फिर सुपरवाइज़र के बाद जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो कैसे करते हैं और कैसा फाइनेंस वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है एक बार गो थ्रू करना है। आप एक जगह पे काम करते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि आखिरी में जो है आपको एक टीम वर्क है, ये सिंगल मैन का काम बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब आप बिजनेस करना चाहेंगे या काम करना चाहेंगे साइट पे, तो वहाँ पर भी आपको जो है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ही आपको करना पड़ेगा। तो लोगों के साथ आपको जो है बहुत ही प्यार से पेश आना है, और वर्कर्स अगर नहीं आएंगे तो आपका टाइम पर वो स्ट्रक्चर खड़ा भी नहीं होगा, तो इसीलिए उनके साथ भी आपको प्यार से डील करना पड़ेगा, माना सभी से। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो चीज़ें आप एक बार करके देखिए, और अनुभव जो है सबसे बड़ा शिक्षक है। तो वो चीज़ें हमेशा आपको याद रखना है, नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आप टाइम दें। जैसे डिग्री प्राप्त करने के लिए आपने 3-4 साल लगाया है, वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आप 2-3 साल आराम से दीजिए, फिर आपको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप एक अच्छे जो है इंजीनियर बन के काम करना शुरू कर देंगे, और सोसाइटी के लिए भी बेहतर करेंगे और अपने लिए भी बेहतर अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई, जो बंदा दूसरे का सोचता है तो उसका खुद का अपने आप भला हो जाता है ना, जो दूसरे का नहीं सोचेगा तो उसका भी भला मुश्किल से होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कर भला तो हो भला। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ महेश जी, एक छोटा सा मैसेज के साथ हम लोग पूरा करेंगे, तो आप हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
2: विद्यार्थियों के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट। उन्हें कोई भी चीज़ करनी है तो उन्हें इंटरेस्ट लेके करना है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें कुछ और सोचना है। अगर इंटरेस्ट होगा तो ही वो एक्सेल कर पाएंगे। तो आपको, आप सोचिए समझिए आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के पीछे भागिए बस। जितना ज़्यादा आप में नॉलेज होता जाएगा उतने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपका एक क्लैरिटी आएगी। पढ़ाई हो गई, कोई भी फील्ड हो गया, उसमें क्लैरिटी आएगी, और वो क्लैरिटी होगी तो कोई भी आपको सराहेगा, जो भी बात जिसके साथ आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो इंटरेस्ट और क्लैरिटी होगा ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी महेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं इतना अच्छा जो है एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए करियर इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। और फिर से मिलते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह रेडियो के साथ जुड़े रहें नई नई बातों के लिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर कुछ विचार साझा करना चाहता हूं जो हम सबके जीवन से गहराई से जुड़ा है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? दोस्तों, जीवन एक तराजू की तरह है। एक पलड़ा भौतिकता का है और दूसरा आध्यात्मिकता का। अगर कोई एक पलड़ा ज्यादा झुक जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में न शांति रहती है न सुकून। हम सब भौतिक जीवन में जीते हैं, परिवार, कैरियर, धन, नाम और सफलता की तलाश में। यह भी आवश्यक है क्योंकि जीवन की जिम्मेदारियां इन्हीं से पूरी होती हैं। लेकिन जब हम केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उलझ जाते हैं तो भीतर की शांति कहीं खो जाती है। यहीं से आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं बल्कि अपने भीतर लौटना है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है बल्कि हमारे मन की शांति में छुपा है। जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति सहज लगने लगती है। अब प्रश्न यह है कि यह संतुलन कैसे बने। पहला कदम है समय का प्रबंधन। सुबह या शाम के कुछ पल केवल अपने लिए रखें, मोबाइल, मीटिंग और भागदौड़ से दूर। कुछ क्षण मौन में बिताएं, ध्यान करें, प्रार्थना करें या बस फिर अपनी सांसों को महसूस करें। दूसरा कदम है स्वार्थ और परोपकार का संतुलन। धन कमाना बुरा नहीं है, पर उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों के कल्याण में लगाना जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। तीसरा कदम है सकारात्मक सोच। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर कठिनाई एक शिक्षक बनकर आती है। चौथा कदम है संतोष और मितव्ययिता। अधिक पाने की चाह हमें बेचैन करती है, पर जो मिला है उसके प्रति आभार प्रकट करना हमें भीतर से समृद्ध बनाता है। और पांचवा कदम, शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। योग, व्यायाम और सादा आहार हमारे संतुलन की नींव है। प्रिय मित्रों, भौतिकता हमें बाहर से सफल बनाती है, पर आध्यात्मिकता हमें भीतर से सुंदर बनाती है। जब दोनों साथ चलते हैं तो जीवन न केवल सफल होता है बल्कि सार्थक भी बन जाता है। इसलिए धन कमाएं पर मन की शांति न खोएं, सफलता पाएं पर विनम्रता बनाए रखें, काम करें पर आत्मा को भूले नहीं। यही संतुलन हमें जीवन का सच्चा आनंद देता है। धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच।
0: नमस्कार, मैं मोनाली स्वागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: बीइंग डिवाइन में एक बहुत सुंदर आपने बात कही थी अबाउट दिया, और मैं बचपन से सुनता रहा था कि दिया बुझ गया अब शगुन, दिया बुझ गया अब शगुन, जल्दी जल्दी उसमें ये करो, पता नहीं क्या बुरा होगा. आज जो आप दिए की बात किए, जो रोशनी है, जो ज्ञान है, जो अपनी अपना सोल है, उसके अंदर की शक्ति और उसका पावर जो बुझता है भले कुछ क्षणों के लिए, तो कितना अपशगुन होता है. दैट वाज वंडरफुल.
2: राइट. अब जैसे हमने पिछली बार देखा कि आत्मा के कितने सारे तरह के संस्कार हैं, जब हमें ये समझ में आता है तो हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के बिहेवियर को समझना और लोगों के साथ चलना बहुत ईजी हो जाता है. लुक एट एवरी सोल विद दीज फोर फोल्डर्स. पास्ट बर्थ संस्कार, फैमिली से मिला संस्कार, एनवायरमेंट से मिला संस्कार और विल पावर से क्रिएट संस्कार. फोर फोल्डर्स हर आत्मा के ऊपर है. अब ये आत्मा चाहे हमारा बच्चा है, पड़ोसी है, काम करने वाला कोलीग है, ये कोई भी हो सकता है. दैट सोल इज अ बंडल ऑफ ऑल दीज संस्कार.
1: तो कोई अगर जो कुछ किसी का हमको बुरा लगे तो क्या बोले कि भाई इसके पुराने संस्कार है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी दुआ दें, अपने आप को क्या समझाएं ताकि हम रिएक्ट ना करें और उसका बुरा ना लगे? क्योंकि कई लोगों के संस्कार है, टॉलरेट करना उनको थोड़ा मुश्किल होता है.
2: कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे अपने कॉम्प्रोमाइज कर जाना पड़ता है अगर हम उनके साथ चल रहे हैं. वो हमें नहीं करना है. संस्कारों के साथ एडजस्ट करना, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग कि उनका संस्कार मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव नहीं डालेगा. सपोज यहाँ ये सूरज है, इसकी लाइट है, धूप भी है, आवाज भी है, हवा भी है, ये चीजें हैं. आई मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे आर नॉट द बेस्ट व्हाट आई वांटेड.
1: मैं चाहूं तो सब बंद कर दूं. ये सब
2: अब ये सबको बंद
1: कर अगर मेरे पास पावर हो.
2: यस,
1: लेकिन मुझे इनमें जीना है, इसी में शूटिंग करनी है, इसी माहौल में रहना है.
2: परफेक्ट. व्हाई? बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, लेकिन मुझे जीना इसी के अंदर है. अब लेकिन जीने का तरीका एक है, इसके बारे में कंप्लेंट करते रहे, एक है इसको देख देख कर उदास, परेशान, इरिटेट, एंग्री होते रहे, एक है हम कहते रहे इसको तो मैं सहन ही नहीं कर सकती, इतनी धूप तो मेरे से सहन ही नहीं होने वाली. लेकिन काम उधर ही करना है, काम उधर ही करना है. लेकिन थॉट कौन सी क्रिएट हुई, मैं नहीं सहन कर सकती,
1: आई एम अनहैप्पी टाइप की.
2: आई एम अनहैप्पी बट आई हैव टू बी देयर, बट आई हैव टू बी देयर. टॉलरेट करना मतलब क्या? टॉलरेट करना मतलब ये चीजें हैं, मतलब ये आसपास के लोगों के संस्कार हैं, दे आर नॉट द बेस्ट दैट आई वांटेड, बट दे डू नॉट इन्फ्लुएंस माय स्टेट ऑफ माइंड एनी मोर बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट दे आर देयर एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो एज ऑफ नाउ. तो मतलब मुझ आत्मा ने उसको टॉलरेट कर लिया. टॉलरेट कर लिया मतलब उस संस्कार के सामने अब यहां पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है सामने वाली, वो जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर व्हाई वी गेट हर्ट. उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा किया, उसने अपने लूप से कार्य किया.
1: ये साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम भी है ना, मुझे जब आता है मेरे साथ, पहले मैं अपने आप को कुछ समझ बैठा हूँ, वो भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि मैं इतना बड़ा, उम्र में बड़ा, पैसों में बड़ा, घर का बड़ा, और ये छोटा.
2: तो ईगो ना, तो पहले शिफ्ट किस पे करना पड़ेगा? व्हाई हु एम आई इज इम्पोर्टेंट. अब सपोज आप घर के बड़े और घर में कोई यंगर जो एज में भी छोटा, रिश्ते की मर्यादा से भी हम कहेंगे छोटे,
1: कमाने में भी छोटा
2: हो सकता है, कमाने में भी कम, ओके, ये भी एक फैक्टर बन जाता है। तो अहंकार के बहुत सारे फैक्टर्स है ना, ईगो, अटैचमेंट टू ऑल दीज इमेजेस ऑफ माई सेल्फ। अब वो कुछ कहते हैं हमें बुरा लगता है, वो कुछ करते हैं हमें बुरा लगता है, अब हमें उस बात को रिजोल्व करना है। तो पहली बात तो हमें ईगो से उठकर सोल कॉन्शियस पर जाना है, विच मीन्स पहले जस्ट सिट बैक, सी दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड फर्स्ट ओनली क्रिएट वन थॉट, मैं आत्मा, ये आत्मा। ये तो बार बार ही बोलना पड़ेगा अपने आप को, मैं आत्मा, ये आत्मा। जैसे मैं आत्मा, ये आत्मा, अभी हर्ट नहीं गया है, हर्ट है, दर्द है, मैं आत्मा, ये आत्मा, तो पहले क्या खत्म होने लगेगा?
1: पहले बॉडी कॉन्शियस,
2: मतलब क्या क्या जाएगा?
1: सबसे पहली चीज तो ईगो है उसकी।
2: हाँ, तो कौन सी बातें पहले यहाँ से जाएंगी उस वजह से?
1: कि छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, रिश्तेदार है, नहीं है, बाहर वाला है, घर वाला है,
2: ये सब बातें बाहर, ये सब बातें बाहर, बिकॉज वी आर वर्किंग टू अ सोल्यूशन, वी आर वर्किंग टू क्रिएट द राइट एनर्जी। तो पहली ट्रूथ जो सत्य है उसको जगाएं, मैं आत्मा, ये आत्मा।
1: ये 24 घंटे याद रह सकती है बात?
2: अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 24 घंटे इमीडिएटली याद नहीं रहेगी, लेकिन हम किसी बात से हर्ट हैं।
1: किसी दुनिया में किसी लोगों को याद रहती है क्या?
2: आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को देखेंगे कि धीरे धीरे ये जितनी देर याद रहती है ये बढ़ती जाएगी।
1: कभी कभी लगता है कि हमने बहुत बड़ा एक गोल चुन लिया है कि इतना ऊंचा, समटाइम्स लगता है कि इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क मैंने चुन लिया कि टू रीच दैट गोल, कि हर एक को मैं आत्मा समझूं, और कब होगा, किस दिन होगा, ऐसी सारी थॉट्स आती हैं।
2: कई बार जीवन में चलते चलते अपना ध्यान न रखने के कारण हमारे शरीर का वेट बढ़ जाता है, राइट? बिकॉज हम अनअवेयर जी रहे थे,
1: कुछ भी खा रहे हैं,
2: कुछ भी खा रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, जो जो हमें करना चाहिए था अपने हेल्थ के लिए हम नहीं कर रहे थे। तो कुछ समय ध्यान न रखने के कारण, अनअवेयर जीवन जीने के कारण शरीर का वजन बढ़ जाता है। अब शरीर के वजन बढ़ने का इम्प्लीकेशन ये होता है कि शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो वजन के लेवल पर हमने नहीं भी चेक किया, बीमारी पर तो चेक करना पड़ता है।
1: सही।
2: अब डॉक्टर ने कहा यू हैव टू लूज वेट। सपोज डॉक्टर ने कहा आपका वेट अभी 90 है, आपको आपका वेट 70 तक लेके आना है। जिस दिन ये बात हम पहली बार सुनेंगे कि 90 से 70 लेकर आना है, इट्स गोइंग टू कम, इट्स टू बिग अ टास्क। जो आपने कहा गोल मैंने बहुत बड़ा चुन लिया है, तो आपने गोल चुन लिया कि मुझे 15-20 किलो वजन घटाना है। इजी नहीं है, बड़ा गोल है, लेकिन अगर ये गोल को नहीं उठाते, ये गोल नहीं लेते अपने जीवन में, तो जीवन तो बहुत ही मुश्किल है, राइट? सपोज वी आर 90 केजीज एंड वी डोंट टेक अप दिस गोल टू लूज वेट, तो आगे तो वजन बढ़ता ही जाएगा।
1: वजन बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, दवाइयां बढ़ेंगी, तो डॉक्टर के पास आना जाना ज्यादा बढ़ेगा,
2: जीवन जीना भारी लगेगा, एवरीथिंग विल बी भारी ओनली। तो ये दो रास्ते हैं, आज हम इस यहाँ खड़े हैं, दो रास्ते हैं। एक, अगर हम ये गोल नहीं लेते कि मुझे 20 किलो वजन घटाना है, तो लाइफ की क्वालिटी क्या होने वाली है, तो वो ये होने वाली है। दूसरा, हमने गोल उठाया कि मुझे उतना वेट घटाना है, जैसे ही वो गोल सामने आता है, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि 20 किलो, उसके लिए ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वॉक भी करना पड़ेगा,
1: मीठा छोड़ना पड़ेगा,
2: मीठा भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी, नॉट ईजी एट ऑल। लेकिन जब गोल सामने रखा, तो साथ में क्या रखा कि ये करने से मेरे जीवन की क्वालिटी कैसी होगी। इनिशियली थोड़ा सा मन कहेगा वेरी डिफिकल्ट, साथ में मन को क्या कहना है, आई हैव टू डू इट फॉर माई लाइफ क्वालिटी विल चेंज, बीमारियां ठीक, फीलिंग लाइट, फीलिंग हेल्दी, फीलिंग गुड। तो हम गोल की तरफ चलेंगे। शुरू में लगेगा 20 केजी लूज करना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जैसे ही वो सारे तरीके जो हमें किसी ने बताए कि ये नहीं करना, ये करना, अगर हमने उसको एक्यूरेटली फॉलो किया, डिसिप्लिन से किया, तो वेट कम होगा या नहीं होगा?
1: तो एक प्रॉब्लम और भी आती है इस रास्ते में कि बड़ी बिगिनिंग में बहुत शौक से दो चार कम कर लिया, लेकिन फिर जल्दी से हार मान ली, फिर चार का आठ बढ़ा लिया, फिर वापस।
2: एज लॉन्ग एज हमने रास्ता सही चूज किया है कि मुझे वजन घटाना है, करेंगे फिर कुछ गलती हो जाएगी, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर हम घटाएंगे, नेवर माइंड। लेकिन अगर इस रास्ते चले गए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है उसके लिए, जैसा है ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ता है, बढ़ गया वेट, आजकल तो बहुत लोग ओबीज हैं, कुछ भी लॉजिक देखे, तो वो रास्ता तो एक अलग ही रास्ता है। तो ये रास्ते पे चले, थोड़ा हर्डल लगेगा, लेकिन जब हमारा वेट कम होना शुरू होगा तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होगा कि हाँ ये मैंने किया, इसका मुझे रिजल्ट मिला, ये मुझे रिजल्ट मिलता है। ये करते करते धीरे धीरे वो जो एक्सेस वेट, एक्सेस बैगेज हम हटाना चाहते हैं, वो हटना शुरू होगा। क्या एक दिन ऐसा आएगा नहीं जहां जो गोल पर हम पहुंचना चाहते थे वो पहुंच जाएंगे?
1: जरूर
2: आएगा। सेम इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। गोल से डरना नहीं, गोल देखकर खुश होना, दैट आई हैव चोजन द राइट गोल फॉर माय लाइफ। नहीं तो जीवन कौन से रास्ते जा रही थी?
1: जब एक्टर बनने का गोल मैंने सिलेक्ट किया,
2: yes? तो वो कोई इजी था?
1: सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन एनी बिजनेस।
2: जब आपने वो गोल लिया, क्या आपको मालूम था ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, हमने सिर्फ गोल उठाया विद डिटर्मिनेशन। हमें ये भी नहीं पता था चैलेंजेस कितने आएंगे, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आएंगे, हमें सिर्फ ये पता
1: मोटिवेशन 100%
2: तो मोटिवेशन ना, तो गोल उठाया और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता कि आने दो, जो जो बातें आती है,
1: चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा,
2: तो चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा। ये एक लाइन ने सक्सेस दिला दी। अब ये एक लाइन को यहाँ भी यूज कर लेते हैं।
1: सही बात है,
2: चाहे कुछ भी
1: not,
2: हो जाए।
1: नॉट बीइंग अ सेंट सन, नॉट बीइंग अ मतलब फ्रॉम फैमिली, फिर भी मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा,
2: राइट?
1: हालांकि
2: तो ये मैं करूंगा।
1: बिजनेस फैमिली से आने के बाद दूसरे फैमिली में इजियर हो जाता है।
2: हाँ।
1: जिनके यहाँ यही
2: इट्स नॉट नेसेसरी।
1: क्यों?
2: इट्स एब्सोल्युटली नॉट।
1: जो बचपन से ही गुरुकुल में पढ़े, जो बचपन से ये करे, उसको शास्त्र पढ़ना, ये सब ज्ञान जल्दी आ जाता है ना।
2: शास्त्र पढ़ना और सोल कॉन्शियस स्थिति को अचीव करना, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स।
1: आई एग्री, ये बात तो है। हाँ। क्योंकि तो मैंने देखा
2: आत्मा है। की अपनी जर्नी होगी, बहुत सारे करेंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे, इट डजंट डिपेंड ऑन हम कहाँ थे। हाँ, संग का रंग हमें मिलेगा, वो हमारा बेनिफिट है कि हम उस एनवायरमेंट में थे, हमें संग का रंग मिला, लेकिन आत्मा की अपनी इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, विल पावर से बहुत कुछ होने वाला है। तो अपने आप को कहीं भी थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना बाय सेइंग मेरे पास तो वो वाला फैक्टर नहीं है।
1: हाँ, जैसे मैंने एक्टर बनने के लिए मैंने तो नहीं बोला था आई डोंट नो एनीबॉडी इन द फिल्म इंडस्ट्री,
2: फिर भी हमने कर लिया
1: अनजान नगरी।
2: yes. तो यहाँ भी हम कर लेंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस का जो गोल है, वो हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम जीरो सोल कॉन्शियस है, कल हम 100 हो जाएंगे। नो,
1: स्टेप बाय स्टेप,
2: इट्स वेरी स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप। आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। फोन की बैटरी फर्स्ट से एंड पर थोड़ी पहुंचती है कभी, इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। बीच में अगर पावर चली गई सप्लाई से, वहीं रुक जाएगी। अगर बीच में यूज कर लिया उसको गलत तरीके से, वो कम हो जाएगी, फिर वो ऑन हो जाएगा, फिर वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चार्ज होगा। तो अब जैसे आपने कहा, किसी ने कुछ कहा, मुझे हर्ट हुआ, फर्स्ट कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा, ये आत्मा। फिर मन कहेगा लेकिन मैं बड़ा, कहे नहीं, कौन बड़ा? शरीर बड़ा, आत्मा और आत्मा। फिर मन कहेगा मैंने इतना कमाया, कोई बात नहीं, इस समय रिश्ता किसकी बात हो रही है, आत्मा और आत्मा। ईगो को क्या करना पड़ता है? ईगो बहुत बोलेगा बीच में, लेकिन वही तो सोल कॉन्शियस स्टेट की तरफ जाने का पुरुषार्थ है, ईगो को चुप कराना और सही आंसर देना। अब एक बार आपने कहा मैं आत्मा, ये आत्मा, फिर दूसरी पॉइंट ऑफ नॉलेज, ये आत्मा अनेक जन्मों के संस्कार
1: लेकर आई है
2: और इस जन्म के पेरेंटल इन्फ्लुएंस के संस्कार,
1: ये सेकंड फोल्डर,
2: सेकंड फोल्डर, इस जन्म के संग के रंग के संस्कार लेकर आई है अब ये आत्मा. आई हैव टू लुक एट दैट सोल. ये आत्मा जो मेरे साथ बिहेव कर रही है, वो मैं कौन हूं कैसा हूं उस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि वो क्या है और कैसे है. पीपल डू नॉट प्ले दोज सॉन्ग्स ऑन द सीडी बिकॉज ऑफ आर सॉन्ग्स, दे प्ले दोज सॉन्ग्स ऑन दैट सीडी बिकॉज दे आर देयर सॉन्ग्स. उनके पास वो ही गाना है. ये इतना इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट, क्योंकि ये हमारे दर्द को क्या करता है. हमारा दर्द इस वजह से नहीं होता कि वो ऐसे क्यों हैं, हमारा दर्द इस वजह से होता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया.
1: अगर मुझे मालूम है कि मैं ऐसा नहीं हूं तो फिर क्यों बुरा लगता है
2: मैं कैसा नहीं हूं.
1: समझो किसी ने मुझे चोर बोला और मैं चोर नहीं हूं, झूठा बोला झूठा
2: हाँ,
1: नहीं हूं,
2: हाँ.
1: तो फिर बुरा क्यों लगता है.
2: क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग है कि पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, लोग जो कहेंगे वो हम हैं, लोग हमें कहें अच्छा तो हम अच्छा.
1: मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता, आई नो व्हाट आई एम.
2: आज से सोच सकते हैं.
1: तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही, यू गॉट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू.
2: राइट, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. दूसरे ने कुछ कहा, हमने जल्दी से चेक किया कि ये है मेरे अंदर या नहीं है. अगर है वो बात जो वो कह रहे हैं, ले लो उस फीडबैक को, और अगर नहीं है तो अगले क्षण छोड़ दो. इस समय में सब लोग अलग अलग संस्कार, अलग अलग रंग के लेंस के थ्रू बोलने वाले हैं. इट इज नॉट नेसेसरली द ट्रूथ,
1: बिकॉज उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से बात की है ना, अपने संस्कारों के हिसाब से. कोई भी बात करता है और कोई मुझसे लड़ने भी आता है, झगड़ता है, जो बुरा भला बोलता है, वो तो खुद ऐसा है इसलिए तो बोल रहा है ना.
2: बस सिंपल.
1: और वो बोलेगा ही
2: सिंपल,
1: मुझे नहीं तो किसी को, सबको ही बोलेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा
2: सिंपल. अब मुझे क्या करना है, वो उस रिकॉर्डिंग से गाना बजाएगा. मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा गाना बजाना है.
1: लेकिन सिस्टर ऐसा ही एक आदमी बजाया, दो तीन चार सौ, जिंदगी भर, आज से पता नहीं कितने साल जीना है, ऐसे कितनी आत्माएं मिलेंगी जो अपना अपना रिकॉर्ड बजाएंगे. मैं किस किस को ठीक करने जाऊं और किस किस से उलझूं, किस से किस को झगड़ा करूं, किस किस को बोलूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, तुमने गलत बोला सही बोला. ध्यान छूटनी चाहिए ना.
2: तो क्या करना चाहिए उसके
1: लिए? वही नहीं आ रहा है मुझे.
2: हम किस, आपने तो अभी सारा आंसर दिया. मैं किस किस को चेंज करूं, फर्स्ट नहीं कर सकते. मैं किस किस को बोलूं,
1: ये बात करने में होता है.
2: हाँ?
1: लेकिन आगे भी होना चाहिए.
2: आगे भी होगा ही. और सपोज उस क्षण नहीं भी हुआ, थोड़ा बुरा भी लगा, उसके बाद बैठकर हो जाएगा, क्योंकि आंसर सब पता है ना हमें. नाउ वी आर लुकिंग एट टू सोल्स, वाई टू, हियर यू आर आसपास दस, ठीक है, दस सोल्स की अलग अलग रिकॉर्डिंग. आत्मा का ज्ञान इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है. पहले तो हम उनको आत्मा ही नहीं देखते थे, हम कहते भाई होकर ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलेंगे, भाई होकर, मेरा भाई होकर, बचपन से उसके लिए इतना किया, मेरा भाई होकर ऐसा बोल दिया. मेरा भाई रोल है, आत्मा चार फोल्डर हैं, उनके थ्रू ही गाना सुनाएगी, इजियर टू एक्सेप्ट. लेकिन उन्होंने जो गाना सुनाया, उस गाने का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना कि हमारे यहां एक गलत गाना बज जाए. दिस इज दैट प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लेम.
1: आप कमजोर हो गए, आपने अपना रिमोट पकड़ा दिया, भाई जो करना कर ले मेरे साथ.
2: रिमोट तो उनके पास है ही नहीं. हम गलत, वी थिंक इट इज हैपनिंग, बट व्हेन वी रिएक्ट ऑल्सो, हम अपने सीडी पे से कोई गलत गाना प्ले कर रहे हैं, वो सामने वाला नहीं प्ले कर रहा. सपोज आज आपका भाई है, बहन है, वी हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम कि मेरा भाई है, ये ऐसा करेगा, ये ऐसे करेगा. वो वट एवर कारणवश, पास्ट संस्कार, प्रेजेंट एनवायरमेंट, प्रेजेंट संघ का रंग, वट एवर, कुछ अलग बिहेव किया, ठीक से बात नहीं की, जोर से चिल्ला दिया, कोई एलिगेशन लगा दी, कुछ भी कर दिया, इमीडिएटली अगर इमीडिएटली नहीं भी होता, दो मिनट हर्ट भी होता है कि मेरा भाई होकर ऐसा कह दिया, अब जल्दी से आंसर की तरफ जाना है, मतलब लॉ क्या होने लगी है, वो दिए की
1: हिलने लगी है।
2: तो इमीडिएटली बचाना है ना, तो बचाने के लिए क्या आंसर देना है? आत्मा, संस्कार, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा, वो अपनी सीडी पे का गाना प्ले कर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉज, मैं भी आत्मा, मेरे लिए कौन सा गाना इस समय सही है? हम क्या सोचते हैं, उनको कौन सा गाना सुनाऊं मैं, उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा कैसे उसके साथ बात करूं, उनको नहीं गाना सुनाना है। जो हम गाना यहाँ प्ले करते हैं वो हम सुनते हैं सबसे पहले, हम पर असर होगा ना, आर एवरी थॉट अफेक्ट्स
1: एवरी सेल।
2: तो मैं कौन सा गाना प्ले करूं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट।
1: सब सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी
2: अब करेंगे,
1: कितनी बार सुनाएगी, रोज तो चाहे डेड बॉडी पे डालो या दुल्हन को सजाओ, वो तो अपना ही खुशबू देती है, ये है वो है, सुनते हैं।
2: जब हम दूसरी चीज सुन रहे हैं कि हाँ गुलाब का फूल तो अपनी खुशबू देती है, दैट्स ओके, उसको अपने जीवन के साथ कैसे रिलेट करना है? उन्होंने एलिगेशन लगाया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बोल दिया किसी ने, ठीक है, मेरा संस्कार क्या है जो मेरे लिए सही है? एक जैसे आपने कहा, मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे मालूम है कि ये जो कह रहा है ये सत्य नहीं है, किसी कारणवश ऐसा कह रहा है, मेरे लिए इस टाइम क्या जरूरी है? साइलेंस, नॉट टू गेट प्रोवोक्ड, एंड देन आई प्ले माई रोल, आई एम द एक्टर, नो आई प्ले माई रोल टू माई बेस्ट कैपेसिटी, सामने वाले एक्टर से प्रभावित नहीं हो रहे, टू माई बेस्ट कैपेसिटी मतलब ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, लव, दिस इज माई रोल, दिस इज हाउ आई विल परफॉर्म माई रोल। इतना पॉज, अब ये हो जाएगा अगर हम रोज सुबह मेडिटेशन करके बैटरी को चार्ज करेंगे एंड रोज सुबह ज्ञान भी भरेंगे। जब रोज रोज ये ज्ञान डलता है ना, मैं आत्मा, ये ज्ञान वो ग्रित है, मैं आत्मा मेरे संस्कार, वो आत्मा उसके संस्कार, मैं आत्मा मैं आत्मा, ये रोज रोज करने से यहाँ ग्रूव बन जाएगा, ये बनना ही है ग्रूव। फिर एक बार करेंगे रिजल्ट मिलेगी, दो बार करेंगे रिजल्ट मिलेगी, करना इजियर हो जाएगा क्योंकि वो वाला तरीका करने का ग्रूव बन जाएगा। डू नॉट क्रिएट द थॉट दैट ये होता नहीं है,
1: ओके,
2: डू नॉट एवर क्रिएट दिस थॉट के ये प्रैक्टिकल में होता नहीं है।
1: जो जो चाहते हैं और जहाँ डिटर्मिनेशन है, 100% मोटिवेशन है, वहां तो कर ही लेते हैं।
2: सिर्फ ये होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएटली सारा रिजल्ट मिल जाए। अभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने डिसाइड किया कि एक्टर बन जाऊं और अगले दिन बन गए।
1: अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉम्बे आके भी लोग कितने डिस्करेज करते थे, आप एक्टर बन रहे हो, शक्ल तो देखो आप अपनी।
2: तो हमने क्या किया, होल्ड ऑन टू आवर गोल।
1: अगर मैं उनकी बात मान लेता, मुझे लोगों ने सीरियसली बोला था, बोला कि भाई साहब आप उसके लायक नहीं, आप वापस जाइए अपने माँ बाप के यहाँ, अपने हैदराबाद।
2: तो डेस्टिनी बदल जाती ना, डेस्टिनी बदल जाती है, इसलिए अपने
1: अगर
2: गोल
1: आज
2: को।
1: मुझे कोई बोले आके कि यू कैन नॉट, यू आर नॉट अ सेंट, तुम तो फिल्म वाला आदमी, बिजनेसमैन का आदमी, तुम तो ये नहीं है वो नहीं है, तुम कहाँ गोल लेके बैठे हो कि मुझे सबको आत्मा देखने वाले दिन सपने में मत देखो, तो फिर मैं तो छोड़ूंगा नहीं अपना पाथ।
2: नहीं छोड़ना है, चाहे आसपास कोई कुछ भी कहे। तो अब ये सिंपल है एक्सरसाइज कि कुछ हुआ बात, कोई हर्ट क्रिएट भी हो गया, कई बार हमने गलत व्यवहार भी कर दिया, तो भी पॉज एंड इमीडिएटली चेंज।
1: पॉज एंड चेंज व्हाट, अगर गलत व्यवहार कर दिया
2: तो भी बाद में रिफ्लेक्शन में तो चेंज करके रिकॉर्ड कर देना।
1: अच्छा,
2: नहीं तो अगली बार
1: फिर
2: गलत होगा, नहीं तो। एंड अगर इमोशनल कोई हर्ट हुआ है उसको चेंज। आत्मा, अपने सब फैमिली फ्रेंड्स को आत्मा, ये एक वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है। अभी अगर कॉन्शियसनेस भी नहीं हो रही है, सिर्फ वर्ड भी यूज कर लो तो भी वर्क करता है। अभी हमारी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति नहीं है ना, लेकिन सोल है, ये नॉलेज तो है ना। जैसे ही कहा मेरा ये, पूरी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट आती है सामने। जैसे ही कहा, आत्मा इजियर हो जाता है, बिकम्स वेरी इजी टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग। इसलिए ये वर्ड को सारा दिन मंत्र की तरह, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये इसके पास्ट संस्कार, ये इसके इस समय जिनके साथ ये रह रहा है उनकी बातों में आकर प्रभावित होकर कुछ संस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम इस समय में चल रहे हैं कलयुग में, जहां मेजोरिटी आत्मा बैटरी थोड़ी सी डिप्लीटेड है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हमें ही दर्द होगा। तो इमीजिएटली फोकस इस पर होता है कि मुझे कौन सा गाना प्ले करना है, ये फोकस नहीं होना चाहिए मुझे उनको क्या सुनाना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारा दिन ये देखते हैं मुझे उनको क्या बताना है, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि उन्होंने गलत किया, मैं उनको क्या जवाब दूं ताकि वो अगली बार गलत ना करें। उसने तो जो गाना प्ले करना है वो गाना प्ले करना है, मुझे कौन सा गाना प्ले करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जैसे होगा ना, सामने वाले पड़ोसी ने जोर से गाना बजाया तो हम कहेंगे मैं इससे जोर से बजाऊं, अब मैं इससे जोर से बजाऊंगा तो वो उससे जोर से बजाएगा, उलझ गए एनर्जीज में उनके साथ। अपना गाना सुने अपने घर में बैठकर, क्योंकि हमारा गाना सबसे पहले हम ही सुनेंगे सिर्फ, फिर हम जो वो गाना प्ले करेंगे अगर वो गाना उनको पसंद आ गया, क्योंकि अगर वाइब्रेशन प्योर है तो प्रभाव डालेगी, अगर उनको वो गाना पसंद आ गया देन देर आर चांसेस कि वो भी अपना गाना बदल लें, कोई और गाना प्ले कर लें, क्योंकि उनके पास भी वो प्यारे वाले गाने रिकॉर्डेड तो है ही। सो हम अगर अपने गाने को ध्यान रखेंगे देर आर चांसेस के सामने वाले अपने गाने बदल लें, लेकिन अगर हम उनके गाने के प्रभाव में, उनके संस्कार के प्रभाव में आ गए तो वो तो उस संस्कार में थे ही थे, हम भी एक अलग जर्नी पर चले जाते हैं। कितना अटेंशन रखना है।
1: थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
3: ईच सोल कैरीज वन सेट ऑफ संस्कार्स फ्रॉम पास्ट बर्थ्स, वन फ्रॉम फैमिली एंड वन क्रिएटेड due to environment. The fourth type is the sanskars that we create with our own will power. We have the power to override any sanskar of the first three types. Accepting other people's sanskars means their sanskar does not influence our state of mind. Acceptance, tolerance, adjustment does not mean we are living with them but are disturbed inside. Acceptance means our mind is stable while we live with their sanskar. First step to acceptance is to remember I am a soul interacting with that soul. Ego of relationship, position, age and achievement has to be kept aside. Second step, to be aware that this soul is carrying so many sanskars. Their behavior is not because of who we are, but because of what sanskars they are carrying. When we interact with people through the filter of our relationships, we have a list of expectations from our parents, siblings, spouse, children and friends. When we remember that the relationship is a role played by the soul carrying so many sanskars, acceptance becomes easier.
2: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी। 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: क्यों रे शैतान, तूने क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
4: जरा तारीफ करी थी, वरना तुम गाती क्या हो? रोती हो। पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
3: क्यों रे, मैं ऐसा गाती हूँ?
4: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
3: और तुम?
4: मैं

0: किससे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आज हम देखते हैं कि आज के समय में लोगों को बोलने से पहले सोचने और समझने की क्षमता कम ही हो गई है। शब्द ही जबकि व्यक्ति की दौलत है। तो आज हम चर्चा करते हैं शब्दों की पूंजी पर। एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक की उम्र 12 साल तो दूसरे की 8 साल थी। एक दिन खेलते खेलते बड़ा लड़का गेंद उठाने कुएं के पास गया तो उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। छोटे लड़के ने देखा कि मदद के लिए उनके आसपास कोई नहीं है। तब उसने कुएं के पास बड़ी बाल्टी रस्सी कुएं में डाल दी और बड़े लड़के से उसे पकड़ने को कहा। फिर छोटा लड़का उसे खींचने लगा। काफी देर की मेहनत के बाद अपनी भरपूर ताकत झोंक कर छोटे ने बड़े लड़के को किसी तरह बाहर निकाल दिया। दोनों ने सोचा कि गांव में जाकर यह बात सबको बताएंगे तो सब नाराज होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सभी ने उनकी बात को मजाक समझ लिया और 8 साल का छोटा सा लड़का 12 साल के बड़े लड़के को कुएं से खींचकर कैसे बाहर निकाल सकता है, यह तो असंभव लगता है। गांव के ही एक समझदार बुजुर्ग को बच्चे की बात पर यकीन था। सभी ने बुजुर्ग से पूछा, आपको क्यों लगता है कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं और छोटा लड़का ऐसा कर सकता है? बुजुर्ग बोले, छोटा लड़का ऐसा कर पाया क्योंकि उस समय उसके आसपास कोई यह कहने के लिए नहीं था कि बच्चे तुम यह नहीं कर सकते। यहां तक कि खुद उस लड़के ने भी अपने आप से ऐसा नहीं कहा कि इस परिस्थिति में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं, अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। तो हम जैसे ऊपर देखे, अभी हम देखते हैं कि घटना का जो तात्पर्य है, यहाँ की शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द इतना प्रेरित कर सकते हैं कि व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दे। ये शब्द ही है जो प्रेम का बीज बो देते हैं। तो वैमनस्य में हम देखते हैं कि भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है, वहाँ कोई एक नकारात्मक शब्द पूरी बात को ही बिगाड़ देता है। अच्छे शब्द छोटे होते हैं और बोलने में आसान भी, लेकिन इनकी जो प्रतिध्वनि लंबी होती है और कभी कभी तो अंतहीन होती है। अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। मनुष्य को जीवन में केवल दो शब्द ही जो है नष्ट करते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है। शब्दों द्वारा ही सम्मान व अपमान होता है, इसलिए सदा शब्दों को तौल कर बोलें। अक्सर सुनने में आता है, किसी ने कहा मेरी जुबान जो है वो फिसल गई, इसलिए मैं अपने बोले हुए शब्दों को वापस लेता हूँ या अपने कहे हुए शब्दों पर माफी मांगता हूँ। जिस व्यक्ति के शब्द जितने गरिमामय होंगे, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही सम्माननीय और गरिमापूर्ण बनकर उभरेगा। महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है, क्योंकि एक छोटा सा भी नकारात्मक या अनुपयुक्त जो शब्द होते हैं वो लोगों में घमासान करा सकता है और उसकी जो छवि है उसको दागदार कर सकता है। सकारात्मक शब्द लोगों के अंदर लोगों में जो है उत्साह भर देते हैं, उन्हें चोटी पर पहुंचा सकते हैं। यही है शब्दों की ताकत। हर शब्द का मोल होता है। शब्द सदा कसौटी पर होते हैं। विनम्रता भरे शब्दों में वह ताकत होती है जो बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। हर बोल हर शब्द कीमती है। सही शब्द का उचित उपयोग अच्छी समझ और संवेदनशीलता को ही नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी जाहिर करता है। हर शब्द के मायने होते हैं, वैसे ही हर शब्द का मोल होता है। तभी तो कहावत है तोल मूल की बोल। स्टिक व अच्छे शब्दों का सही उपयोग वक्ता को प्रेरक और प्रभावी बनाता है। हाँ, तर्क किया जा सकता है कि हम हर समय मंच पर तो नहीं होते हैं जो सही ही बोले, परंतु हर वक्त चाहे कहीं भी हो अपनी छवि की कसौटी पर जरूर होते हैं, जिसका हमारे शब्द भाषा की जो गरिमा है भाषा से सीधा संबंध है। शब्दों के बारे में कहा गया है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द बने औषधि, एक शब्द बने घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाए मान। शब्द मुख से छूट गया, शब्द न वापस आए। शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। शब्द में है रंग भाव का, शब्द है मान महान। शब्द जीवन रूपी में रूप है और शब्द ही दुनिया जहान। शब्द ही कटुता रूप दे, शब्द ही बैर हटाए। शब्द जोड़ दे टूटे मन और शब्द ही प्यार बढ़ाए। तो आपने देखा, शब्दों की अगर हम भाषा के साथ अपने शब्दों पर भी ध्यान दें तो शब्दों की महत्ता अधिक होती है। हमारे शब्द हमारी मान हमारी मर्यादा और हमारे हर व्यक्तित्व को वो प्रस्तुत करता है।
तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मैं ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, शब्द जो है, शब्द भी एक तरह का भोजन है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है ये आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं है। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका जीवन सुंदर बन जाता है। अच्छे शब्द मन को आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। जब हम भगवान की याद में बोलते हैं तो हमारे बोल में ईश्वरीय शक्ति भर जाती है, जिससे सुनने वाले को सुकून मिलता है और वह बदलने लगता है। शब्दों के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। शब्द हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। शब्दों की शक्ति अतुल्य है। अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देता है। जितनी ज्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा आप अच्छे शब्द मन में आपके आएंगे। सही बात सही समझ के साथ केवल अच्छे शब्दों के माध्यम से ही की जा सकती है। तो हमारे पास भले ही अधिक संपत्ति ना हो, लेकिन शब्दों की पूंजी जरूर होनी चाहिए। शब्द है जो वही है शब्दों की पूंजी। और यदि किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति की मौन की धारणा अगर है, उसने मौन रखा है, तो हम देखते हैं कि तो भी उसे शब्दों का ज्ञान तो है ही, अर्थात शब्दों को जन्म देने की क्षमता तो उसमें है ही। शब्द यदि सत्य से जुड़े हैं तो व्यक्ति हल्कापन महसूस करेगा, और यदि शब्द झूठ से जुड़े हैं तो अपनी याददाश्त, जो उसकी याददाश्त शक्ति है, वो तेज रखनी होगी। अतः शब्द ही व्यक्ति की दौलत है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। इसलिए अपने शब्दों को दूसरों के कल्याण अर्थ उपयोग करें। इसका प्रभाव हमारे पास खुशी के रूप में लौट कर आएगा। तो यही है शब्दों की पहचान और शब्दों की पूंजी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरसल, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हाँ, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एन्जॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूँ।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफ़ी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उनकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, तो खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं, बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बाल मन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूँ और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है। तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया। लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में। तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूँ। तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूँ, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूँ तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप। तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी, तो वो हार की फीलिंग करेगा। तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो। जी,
0: तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझे तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है, मासूमियत की ज़रूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा। और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे, हो सकता है कि बच्चा कर भी ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी, वो शायद मर ना जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देख कर या उनकी भावनाओं को सोच कर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएँ क्या हैं, ये कैसे संभव है और उन चीज़ों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जक्की आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज़ में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारीपूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में हैं तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे सर में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएं छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं कि नहीं प्रश्नों के माध्यम से। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो जब ये बात मैं उनके सामने रखता हूँ तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेकर जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज़ से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें ये समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट में भी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेल कूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट रह जाता है, और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या हैं और विकल्प क्या क्या हैं। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेके हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुँचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिलके और बड़े आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए, और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा, और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में, या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
0: अजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज़ में हम लोग सुनेंगे जहाँ पर बच्चों का पूरा संसार, पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है, मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। बाल संसार, बाल
2: संसार। स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना, दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: परिव्राजक विवेकानंद का मन एक जगह ज्यादा दिन नहीं लगता था। फिर उन्हें अपना असली काम राष्ट्र निर्माण की चिंता भी रहती थी। इस काम को कहां से शुरू किया जाए, उसके लिए पैसा और सहायता तथा लोक बल कहां से जुटाएंगे आदि चिंता उन्हें सदा सताती रहती थी। ऊपर से गुरु भाइयों का माया बंधन, वे सब कुछ त्याग कर एकांत में चिंतन करना चाहते थे। अंत में सभी के मतों के विरुद्ध वे अकेले मेरठ से दिल्ली आ गए।
1: परंतु 10 दिन बाद ही गुरु भाइयों ने दिल्ली आकर उन्हें ढूंढ निकाला। उन्हें देख स्वामी जी खुश तो हुए, पर अपनी एकांतवास की इच्छा पूरी न होते देख नाराज हो गए और कहा,
2: देखो भाई, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों से कह रखा है कि मेरा पीछा मत करो। वही बात फिर कहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे। मैं अभी दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मेरे पीछे चलने की चेष्टा ना करे, कोई मुझे ढूंढ निकालने के लिए प्रयास ना करे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों का पालन करो। मैं सारे पुराने संबंधों को तोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से भ्रमण करूंगा, पहाड़, जंगल, मरुभूमि अथवा नगर में। चाहे जो हो, जो मुसीबत आए, मैं चला। मेरी इच्छा है कि हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार साधना करने में लग जाए।
3: अरे, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ ठहरे हो। हम लोग तो केवल दिल्ली नगर देखने आए थे। जब यहाँ आकर स्वामी विदिशानंद नामक एक अंग्रेजी भाषी साधु के विषय में खबर मिली, तब हम उन्हें देखने आ गए। अतएव तुमसे मुलाकात हो गई। ये एक आकस्मिक घटना मात्र है।
0: जैसे भी हो, स्वामी जी उस समय शांत हो गए और तुरंत दिल्ली त्याग कर नहीं आए। गुरु भाइयों ने निश्चय ही दूसरी जगह आश्रय लिया, किंतु सबका भोजन स्वामी जी के साथ सेठ जी के घर पर ही होने लगा। धीरे धीरे गुरु भ्रातागण एक एक कर विभिन्न स्थानों को जाने लगे। रह गए अखंडानंद जी और अद्वैतानंद जी। कुछ ही दिनों में स्वामी जी दिल्ली छोड़कर चले गए। बाकी दोनों सन्यासी वृंदावन गए। दिल्ली के बाद स्वामी जी का राजस्थान भ्रमण शुरू हुआ। सन 1891 के फरवरी में वे ट्रेन से अलवर स्टेशन पर उतरे।

0: स्वामी जी अलवर के सुशोभित पथ पर अकेले चले जा रहे थे। अंत में वे एक दातव्य चिकित्सालय के सामने रुक गए। एक सज्जन चिकित्सालय के फाटक से निकले, स्वामी जी को न जाने क्या सूझा, उन्होंने उस व्यक्ति को रोककर बंगाली भाषा में पूछा।
1: एक खाने की साधु देर थाकार मोतोन कोनो जाएगा अच्छे?
0: यहाँ क्या साधुओं के ठहरने लायक कोई जगह है? उक्त सज्जन का नाम श्री गुरुचरण लश्कर और वे ही उस औषधालय के चिकित्सक थे। डॉक्टर साहब लंबे अरसे से बंगाल से बाहर थे, अतः कमनीय वदन वरुण सन्यासी के मुख से अपनी मातृभाषा सुनकर विशेष आनंदित हुए और ससम्मान अभिवादन करते हुए उन्होंने साग्रह कहा,
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ।
0: वे उन्हें पास ही स्थित एक दो मंजिला मकान

0: व्यवस्था हो जाने पर गुरुचरण बाबू ने अपने एक मुसलमान मित्र के पास आकर कहा,
1: मौलवी साहब, एक बंगाली दरवेश आए हैं, चलिए उनसे मिलिए। मैंने ऐसा महात्मा पहले कभी नहीं देखा। आप उनसे बातचीत कीजिए, मैं अस्पताल का काम निपटाकर जल्दी आ जाऊंगा।
0: मौलवी साहब स्थानीय अंग्रेजी विद्यालय के उर्दू और फारसी के शिक्षक थे। वे अपने मित्र की बातें सुनकर तुरंत उनके साथ स्वामी जी के पास आए और नंगे पैरों घर में प्रवेश कर सलाम किया। स्वामी जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करते हुए कहा,
2: कुरान के संबंध में ये एक विशेष आश्चर्य की बात है कि 1100 वर्ष पहले उसका जो स्वरूप था आज भी वैसा ही है। उसकी प्राचीनतम शुद्धता सुरक्षित है और किसी को भी उस पर कलम चलाने की हिम्मत नहीं हुई।
3: इधर गुरुचरण बाबू औषधालय लौटकर वहां आए लोगों को स्वामी जी के आगमन के विषय में बताने लगे और उनकी प्रबल प्रशंसा भी करने लगे। डॉक्टर साहब की उत्साह जगाने वाली वाणी ने श्रोताओं के मन में भी गहन जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और वे सब स्वामी जी का दर्शन करने चल पड़े। स्वामी जी के मधुर संभाषण से मुग्ध हो मौलवी साहब ने भी अपने मुसलमान मित्रों को ये शुभ सूचना दी। इसके फलस्वरूप स्वामी जी के कमरे में धीरे धीरे इतने लोगों का समागम होने लगा कि कमरा भर जाता और लोगों को बरामदे पर भी जगह नहीं मिल पाती। स्वामी जी उन लोगों से धर्म चर्चाएं करते और बीच बीच में उर्दू और हिंदी गीत, यहाँ तक कि बंगला कीर्तन भी गाते। विद्यापति, चंडीदास, रामप्रसाद, सूरदास इत्यादि अनेक भक्त कवियों के पद और भजन उनके श्रीमुख से सुनकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो बैठे रहते। कभी कभी वे वेद, उपनिषद, बाइबल और पुराणों की उक्तियों को उद्धृत कर अपने कथनों को प्रमाणित करते अथवा बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, तुलसीदास और श्री रामकृष्ण इत्यादि के जीवन के घटनाओं का वर्णन कर श्रोताओं के मन में धर्म प्रेरणा उत्पन्न किया करते थे। इसी तरह अलवर के उनके दिन व्यतीत होने लगे।
0: कुछ ही दिनों में स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या अत्यंत बढ़ जाने के कारण अलवर वासी कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने तय किया कि उन्हें इसके उपरांत अलवर राज्य के अवकाश प्राप्त इंजीनियर पंडित शंभुनाथ जी के घर में रखना होगा। वहां स्वामी जी ने नियमित जीवन यापन और साधना के लिए अधिक सुयोग पाया। यहां आने के बाद वे प्रातः 9 बजे तक ध्यान धारणा में काल व्यतीत कर बैठक खाने में समागत व्यक्तियों से वार्तालाप करने के लिए निकलते। उसी समय जाति वर्ण निरपेक्ष 20-30 भक्तजन वहां आ जाते। उनमें कोई कोई संभवतः शिया या सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान और अन्य शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों के हिंदू होते। धनी और दरिद्र वहां मिलकर एक हो जाते। स्वामी जी दोपहर तक उन लोगों के बीच बैठकर सबके साथ समान भाव से वार्तालाप करते और धर्म संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान कर देते। कभी निसंकोच भाव से बातें करते। इसके फलस्वरूप स्वामी जी की इच्छा नहीं रहने पर भी अवांतर विषय बीच बीच में आ जाते। फिर भी क्षुब्ध हुए बिना स्वामी जी समुचित उत्तर देकर प्रश्नकर्ताओं की उत्सुकता मिटा दिया करते। कभी कभी ऐसा होता कि कोई आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है, इसी बीच कोई अविवेकी व्यक्ति अप्रासंगिक प्रश्न कर बैठता।
4: महाराज, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं?
2: क्योंकि ये भिखारियों की पोशाक है। उजला कपड़ा पहने रहने पर गरीब लोग मुझसे भिक्षा चाहेंगे, किंतु मैं स्वयं ही भिखारी हूँ। अक्सर एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं रहता, अतः चाहने पर भी यदि नहीं दे पाता हूँ तो मुझे अत्यंत कष्ट होता है। गेरुआ वस्त्र देखने पर वे समझते हैं कि मैं उन लोगों की तरह ही गरीब हूँ, इसलिए भिखारी से भीख मांगने की बात ही उनके मन में नहीं उठती।
3: शाम को स्वामी जी के घूमने के लिए निकलने पर कई लोग उनके संग संग चला करते। दिन बीतने पर कर्म समाप्ति के बाद और भी भगवत प्रसंग सुनने के लिए उनके निवास स्थान पर लोग एकत्र होते। तब फिर वही प्रार्थना, ध्यान और भाव भक्ति का स्रोत बहने लगता। फिर सभी भगवत रस का आस्वादन करते अथवा कभी स्वामी जी मधुर कंठ से भगवत गुणगान करते और कोई कोई उनके साथ स्वर मिलाकर कीर्तन में उन्मत्त हो जाता।

कितने ही दिन इस भाव से ढेर सारा समय व्यतीत हो जाता। किसी को इसका होश नहीं रहता। किसी दिन गहरी रात गए तक इसी प्रकार चलता, लगभग रात के 4 बज जाते। बीच बीच में नृत्य भी होता, स्वामी जी के साथ सुर मिलाकर सारे बंगला गीत भी गाते। भूल जाने के डर से कोई गीतों को लिख कर भी रखते। राजस्थान वैष्णव प्रधान स्थान है, अतः स्वामी जी प्राय श्री कृष्ण विषयक संगीत गाया करते। एक दिन उन्होंने ये गीत गाया।

0: इस प्रकार भगवत प्रसंग और संगीत आदि में कितने ही दिन बीत गए। बहुत देर रात तक स्वामी जी को छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं होता। रात में अपने घर लौटकर भी स्वामी जी की ही चर्चा होती। सभी सोचते कि फिर कब लौटेंगे। कोई कोई कहते, बाबा जी का हृदय आनंद से भरा है, मुख पर हंसी फूटती ही रहती है। दूसरे लोग कहते, महाशय इतना सुंदर श्लोक पाठ हमने कभी नहीं सुना, उनके कंठ से मानो चांदी के तार की झनकार गूंजती है। फिर कोई कहता, हाँ उनके कंठ में नाद है। तभी कोई दूसरा व्यक्ति संशोधन कर देता, केवल यही नहीं, उनके कंठ में एक ऐसी विद्युत शक्ति है कि सुनते ही मुग्ध हो जाना पड़ता है। इसी तरह कोई दूसरा व्यक्ति इसमें योग देते हुए कहता, और देखते हैं स्वभाव कितना मधुर है, इतने लोग इतनी तरह से तंग करते हैं, मूर्ख की भांति जो सो प्रश्न करते हैं तब भी क्रोध नहीं करते, सारी बातों के उत्तर देते हैं। अन्य व्यक्ति अपनी सम्मति देते हुए कहता, कोई गुस्सा उस्सा नहीं, सिद्ध महापुरुष है, देखिए ना मन में केवल यही होता रहता है कि कब उनके पास जाऊंगा, इच्छा होती है कि दिन रात उनके निकट बैठा रहूं।
1: स्वामी जी के अनुरक्त भक्तों में पूर्वोक्त मौलवी साहब के मन में प्रबल अभिलाषा थी कि स्वामी जी को अपने घर ले जाकर भिक्षा ग्रहण करावे। वे सोचते, स्वामी जी तो दरवेश हैं, सन्यासी हैं, वे जाति भेद से मुक्त हैं, किंतु जिस पंडित जी के घर में वे रह रहे हैं उन्हें तो आपत्ति हो सकती है। फिर भी एक दिन उन्होंने विश्वास के साथ सबके सम्मुख हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, कृपा कर ये अनुमति दीजिए कि बाबा जी कल मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। आप लोगों के संतोष के लिए हम ब्राह्मण बाजार से ही बर्तन ले आएंगे और उसी में पकाएंगे, और ये यवन यदि केवल दूर से देखने का सौभाग्य पाए कि स्वामी जी उसकी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इतने से ही वो कृतार्थ होगा।
0: मौलवी साहब ने ऐसी विनय और सरलता पूर्वक ये बातें कही कि सभी उपस्थित लोग इससे मुग्ध हो गए, और पंडित जी ने मित्र भाव से उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा,
2: भाई स्वामी जी तो दरवेश हैं, उनके समक्ष जाति भेद का क्या मोल है, इतना कष्ट नहीं करना होगा, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसी व्यवस्था करेंगे हम लोग उससे ही संतुष्ट होंगे, और जैसी व्यवस्था की बात आप कह रहे हैं वैसी होने पर तो आपके घर में खाने में हम लोगों का धर्म बोध भी बाधक नहीं होगा। स्वामी जी की तो बात ही क्या है, वे तो मुक्त पुरुष हैं।
1: स्वभावतः मौलवी साहब ने स्वामी जी को अपने घर पर भोजन करवा कर विशेष तृप्ति पाई। मौलवी साहब का अनुकरण कर और भी कई सज्जनों ने स्वामी जी को आग्रह पूर्वक अपने घर आमंत्रित कर भोजन कराया था।
0: धीरे धीरे अलवर के महाराजा के दीवान मेजर राजचंद्र जी के कानों में ये समाचार पहुंचा कि शहर में एक विशेष महात्मा का आगमन हुआ है। सुनते ही उन्होंने स्वामी जी को आदर पूर्वक अपने घर ले जाकर उनसे बातचीत की, और वे तुरंत समझ गए कि इन सुविद्वान मेधावी और अनुभूति संपन्न महायोगी की कृपा दृष्टि पड़ने पर अलवर के अंग्रेजी भावापत्र महाराज की मति गति में परिवर्तन हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह को संवाद भेजा, एक साधु आए हैं, वे अंग्रेजी के महापंडित हैं। महाराजा उन दिनों 2-3 मील दूर एक निर्जन महल में रह रहे थे। दीवान जी का पत्र पाकर वे दूसरे दिन ही अलवर लौट आए तथा सीधे दीवान जी के घर जाकर स्वामी जी का श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दर्शन किया और प्रणाम करने उपरांत उनके सम्मुख आसन ग्रहण किया। उनके साथ समागत सभासद वृंद ने भी वहां उपयुक्त स्थान पर आसन ग्रहण किया। महाराज ने पहले ही प्रश्न किया,
3: अच्छा स्वामी जी महाराज, सुनता हूँ कि आप अद्वितीय पंडित हैं, तब तो आप सहज ही काफी धन उपार्जन कर सकते हैं, ऐसा ना करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं?
4: महाराज क्या आप बता सकते हैं अपने राज कार्य की अवहेलना कर आप दिन रात साहबों के साथ क्यों दावत खाते हैं, शिकार करने निकलते हैं?
1: सभासदगण स्वामी जी के कथन की भंगिमा से विचलित हो उठे। ये कैसा दुस्साहस है, पता नहीं आज इनके भाग्य में क्या बदा है, किंतु स्वामी जी की बात को महाराजा ने धीरता पूर्वक सुना, सुनकर थोड़ा विचार किया और बाद में कहा,
3: मैं वैसा क्यों करता हूं कह नहीं सकता, फिर भी वहां वो मुझे अच्छा लगता है।
4: तो ठीक है, मुझे भी उसी प्रकार भिखारी की तरह घूमना अच्छा लगता है।
3: अच्छा बाबा जी महाराज, ये जो सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं, तब मेरी क्या दशा होगी इस अविश्वास के कारण?
1: ये बात कुछ व्यंगपूर्ण लहजे में कही गई और कहने के बाद महाराज ने थोड़ा मृदु हास्य भी किया, तथापि स्वामी जी पहले ही इस बात को इतने हल्के ढंग से नहीं ले सके। भारतीय होकर क्या कोई इस प्रकार की बात कह सकता है? इसी से उन्होंने अविश्वास भरे लहजे में कहा,
3: नहीं नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल, देखिए वस्तुतः मैं अन्य लोगों की भांति लकड़ी मिट्टी पत्थर और धातु इन सब की पूजा नहीं कर पाता हूं, तो क्या इससे मेरे दूसरे जन्म में मेरी अधोगति होगी?
4: जिसका जैसा विश्वास।
1: कहते कहते स्वामी जी की नजर दीवार पर टंगी महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने उसे उतरवाकर पूछा, ये किसकी तस्वीर है? लोगों ने कहा, वो तस्वीर महाराजा मंगल सिंह की है। स्वामी जी ने तस्वीर हाथ में ली और दीवान जी से कहा,
4: दीवान जी इस तस्वीर पर थूक दीजिए।
1: दीवान जी और उपस्थित सभी लोग भय से त्रस्त हो गए। दीवान जी ने महाराजा की ओर देखा और कहने लगे,
5: जी जी क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी, ये हमारे महाराज हैं।
4: ठीक है आप थूक नहीं सकते, पर आप चुप क्यों हैं? आप लोग, आप में से कोई भी इस तस्वीर पर थूक सकता है? कागज के अलावा ये और क्या है? फिर इस कागज पर थूकने से लोगों को आपत्ति क्यों? दीवान जी आप डर गए हैं, बार बार महाराज की ओर क्यों देख रहे हैं? आइए आप में से कोई तो आगे आइए, फेंकिए इस पर थूक फेंकिए।
5: ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, ये हमारे महाराजा की प्रतिमूर्ति जो है, ऐसा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं भला?
4: ऐसा भले ही हो, किंतु महाराजा तो इस तस्वीर के अंदर बैठे नहीं है, इसमें उनका हाड़ मांस या रक्त भी मौजूद नहीं है। महाराजा की भांति यह तस्वीर न हिलती डुलती है न बातें करती है, फिर भी आप लोगों में से कोई इस पर थूकने को राजी नहीं, क्योंकि आप लोग इसमें महाराजा की काया की छाया देखते हैं। इस पर थूकने से आप लोगों को लगता है कि आप अपने स्वामी का स्वयं महाराज का अपमान कर रहे हैं।
1: फिर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह की ओर मुड़कर कहा,
4: देखिए महाराज एक दृष्टि से यद्यपि आप ये चित्र नहीं है, तथापि दूसरी दृष्टि से ये आप ही हैं। इसी से मैंने जब इन लोगों से थूक फेंकने कहा था तब आपके एकांत अनुरागी कर्मचारी गण हतप्रभ हो गए थे, इसमें आपका प्रतिबिंब है, ये उनके मन में आपको ला बिठाता है, इसकी ओर देखते ही वे लोग स्वयं आपको देखने लगते हैं, इसी से आपको व्यक्तिगत रूप से वे लोग जितना सम्मान करते हैं इस चित्र का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जो भक्तगण पत्थर या धातु से बनी प्रतिमा के देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन लोगों के संबंध में ठीक यही बात घटित होती है। भक्तगण इसलिए भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं कि ये प्रतिमा उन लोगों को उनके अपने इष्ट के ऐश्वर्य की महिमा का स्मरण करा देती है तथा उन लोगों की ध्यान धारणा में सहायक होती है। वे लोग इस धातु या पत्थर की पूजा ही नहीं करते हैं, मैं कई जगहों पर गया हूं परंतु कहीं भी तो किसी को ये कहकर प्रतिमा की पूजा करते नहीं देखा कि हे पत्थर मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, हे धातु तुम मुझ पर कृपा करो, सभी केवल उसी अद्वितीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ही पूजा करते हैं। और भगवान जो जिस रूप में समझता है या उनका जिस रूप में चिंतन मनन करता है उसी रूप में वे भी उसे दर्शन देते हैं। महाराज मैं अपना निजी भाव व्यक्त कर रहा हूं, आपका क्या भाव है मैं नहीं जानता।
1: महाराजा मंगल सिंह अभी तक बड़े ध्यान से सब देख सुन रहे थे, अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
3: स्वामी जी अभी जिस भाव से आपने मूर्ति पूजा की व्याख्या की है उस अर्थ में मैंने अब तक किसी को पत्थर, काष्ठ या धातु की पूजा करते नहीं देखा। मैं ये तत्व नहीं जानता था। आपने मेरी आंखें खोल दी, किंतु मेरा क्या होगा? आप मुझ पर कृपा करें महाराज।
4: महाराज, कृपा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं, और वे तो सदा ही कृपामय हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, वे निश्चय ही आप पर कृपा करेंगे।
0: स्वामी जी के चले जाने के बाद भी महाराजा काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर दीवान जी से कहा,
3: ऐसा महात्मा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। दीवान जी, आप उन्हें कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक रखिए ना।
0: दीवान जी ने सहमति दी और कहा,
5: मैं यथासाध्य कोशिश करूंगा महाराज, फिर भी उन्हें रोक पाऊंगा कि नहीं कह नहीं सकता। ये बड़े तेजस्वी और स्वाधीन चेता व्यक्ति हैं महाराज।
1: बहुत अनुनय विनय के उपरांत स्वामी जी दीवान जी के घर इस शर्त पर रहने को सहमत हुए कि जो भी गरीब और साधारण लोग उनका दर्शन करने आएंगे, उन लोगों के लिए भी धनी मानी व्यक्तियों की भांति ही इस घर का द्वार सदा खुला रहेगा। दीवान जी सहज ही राजी हो गए और तब से स्वामी जी उनके घर पर ही रहने लगे।
0: अलवर की एक और घटना शायद सबको नहीं पता। स्वामी जी ने अलवर वासियों का हृदय जीत लिया था। एक ब्राह्मण बालक उनके पास आया करता था और एक शिष्य जिस प्रकार अपने गुरु को प्रेम करता है उसी प्रकार उन्हें प्रेम करता था। उसके उपनयन का समय हो जाने पर भी अर्थाभाव से उसका उपनयन नहीं हो पा रहा था। यह जानने पर स्वामी जी अर्थाभाव दूर करने के लिए विकल हो उठे। उन्होंने अपने धनवान भक्तों से कहा,
4: तुम लोगों से एक भिक्षा चाहता हूँ। इस ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त धन नहीं है। गृहस्थ के रूप में इसकी सहायता करना तुम लोगों का कर्तव्य है, अतः इसके लिए चंदा इकट्ठा करो। इस उम्र का ब्राह्मण बालक अपनी जाति के अनुरूप नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म नहीं जाने, ये तो बड़ा अशोभन है। इसके अतिरिक्त यदि तुम लोग इसके लिए लिखने पढ़ने की व्यवस्था कर सको तो बड़ा उत्तम होगा।
1: भक्तजन तुरंत इस कार्य के लिए आगे बढ़े और स्वामी जी इस विषय में निश्चित हुए। अलवर से चले जाने के बाद भी उस बालक की बात स्वामी जी नहीं भूले। संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता को भी वे नहीं भूले। इसी से उन्होंने अपने भक्त गोविंद सहायक को आबू पर्वत से 30 अप्रैल को एक पत्र में लिखा था, उस ब्राह्मण का उपनयन संस्कार क्या तुम करा चुके? क्या संस्कृत पढ़ रहे हो? कितनी प्रगति हुई है?

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: GOAT, गोट गोट माने बकरी, LION लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ,
1: ए मेरे

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो, आपण आपल्या आजच्या शो मधल्या पुढच्या रचनांकडे वळणार आहोत। मी माझ्या एका चारोळीमध्ये लिहिलंय की शब्दांपेक्षा भाव असतात बोलके, शब्दांपेक्षा भाव असतात बोलके। पण ते समजले तरच मन होते हलके। शब्दांपेक्षा भाव असतात बोलके, पण ते समजले तरच मन होते हलके। आणि माझ्या दुसऱ्या चारोळीमध्ये मी लिहिलंय की इथे प्रत्येकाने आपला स्वतंत्र परीघ आखलेला, इथे प्रत्येकाने आपला स्वतंत्र परीघ आखलेला। नि मनाच्या कोपऱ्यात हळवा कप्पा जपलेला, इथे प्रत्येकाने आपला स्वतंत्र परीघ आखलेला। नि मनाच्या कोपऱ्यात हळवा कप्पा जपलेला, असंच असतं नाही का? प्रत्येकाच्या मनामध्ये

0: आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, जब भी हम जीवन की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं, तो रचयिता या रचनाकार की बात करते हैं, और सबसे पहला नाम जो हमारे सामने उभर के आता है वो है माँ का। माँ बगैर क्रिएशन या रचना संभव नहीं है, या यूं कहे नारी के बगैर जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। नारी जीवन चक्र का वो सेंटर पॉइंट है, वो धुरी है जो जीवन के अलग अलग चीजों को बांध के रखती है और आगे बढ़ाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी माँ का, उसकी बहन का, उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का हाथ होता है। बट उन नारियों का क्या जिनको हम कई बार हमारे समाज के बाहर समझते हैं, जिनको हम समाज के दायरे के बाहर समझते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में साथियों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में एक खास मेहमान है। ये वो खास मेहमान है जिन्हें भारत सरकार ने 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। एक नारी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया नारी उत्थान के लिए, स्पेशली उन महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए जिनके जीवन के बारे में शायद कोई सोचना भी नहीं चाहता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन महिलाओं की, उन नारियों की जो कि यौन उत्पीड़न का शिकार है और जीवन की परिस्थितियों में धक्का खाते हुए वो वैश्यावृत्ति की ओर जा चुकी हैं। उर्मी बासु जी का जीवन उन्होंने इन महिलाओं के जीवन उत्थान के लिए, इनके परिवार के जीवन उत्थान के लिए, इनके बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से उर्मी जी ने हमारे लिए समय निकाला है। रेडियो मधुबन की तरफ से उर्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपने आज हमें ज्वाइन किया।
3: नमस्कार शांतनु भाई और ब्रह्म कुमारीज इंटरनेशनल सेंटर के मेरे सारे भाई और बहनों, दीदियों, सबको बड़ा नमस्कार। और जो लोग ये आपका ये अनुष्ठान सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार और मेरी शुभेच्छा।
2: दोस्तों, जिन लोगों को ये पता नहीं है, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि उर्मी बासु जी कुछ समय पहले हमारे शांतिवन परिसर में आई थी, जहाँ पर उन्होंने काफी समय रेडियो मधुबन में गुजारा भी। तो वो वहां से हम शुरू करना चाहेंगे उर्मी जी, आज की बातचीत। आपका वो अनुभव क्या था जब आप माउंट आबू आए, आबू में आप वहां के लोकल लोगों से भी मिले, तो हमारे जो श्रोता हैं वो आबू निवासी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज योर फीलिंग जब आप यहां पहुंचे?
3: मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ा सा लेकिन बहुत करीब की परिवार में आई और सबने मुझे इतना प्यार दिए, इतना सम्मान दिए, मैं विवलित हो गई। और मुझे लगा कि जगह का नाम है शांतिवन, और मैं बहुत मन में और पूरे मेरे दिमाग में बहुत शांति लेके मैं वहां से वापस आई। उस अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, नहीं कर सकता। सिर्फ सभी को मैं मन के बहुत गहरा उपलब्धियों के जरिए बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश थी और बहुत परिपूर्ण, खुद को बहुत परिपूर्ण समझी।
2: परिवार की भावना तब आती है जब अंदर में परिपूर्णता की अनुभूति होती है, और जब आप अंदर से फुलफिलमेंट और परिपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब आप परिवार के बीच में हैं, अनजान लोगों के बीच में नहीं। उर्मी जी ने जब ये कहा तो मुझे ये भी याद आया कि उर्मी जी, एक बहुत बड़ा परिवार हमारे साथ है जो कि रेडियो मधुबन का परिवार है। हमारे कितने श्रोता ऐसे हैं जो वर्षों से रेडियो मधुबन का साथ देते आए हैं, रेडियो मधुबन को केवल सुनते नहीं है, रेडियो मधुबन को रेडियो मधुबन बनाने वाले ये हमारे श्रोता है। और आपने एक काफी अच्छा समय, मुझे याद है हम चाय लेकर के हम बैठे थे और हमने स्टूडियो में काफी टाइम बिताया था। इट डिडंट फील एट ऑल दैट आप पहली बार रेडियो मधुबन आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हैं और रेडियो मधुबन में आए हैं। बट तब कारण कुछ और था, आज कारण कुछ और है। आज कारण यह है कि हम जानना चाहेंगे आपसे आपके जीवन की यात्रा, कैसे आपने शुरुआत किया, समाज सेवा में आप शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, बचपन से ही आपका परिवार, आपके माता पिता समाज सेवी प्रवृत्ति के रहे हैं, सेवा भाव आपके रग रग में बसा हुआ है, तो सेवा का आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। आप समझिए बुजुर्गों की सेवा चुन सकते थे, अनाथ बच्चों की सेवा चुन सकते थे, आप प्रकृति के प्रति भी अपनी सेवा भावना, मतलब सेवा के तो कई साधन होते हैं, कई रूप होते हैं। आपने इतना चैलेंजिंग, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है, लोग इस प्रकार की सेवा में जाने में थोड़ा डरते हैं कि भाई वैश्यावृत्ति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जब मैं उनकी सेवा में जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी कई बातें होती हैं। तो आपने कैसे इस सेवा की फील्ड को चुन लिया, थोड़ा वहां से शुरू करते हैं।
3: मैं 20 साल की थी जब टाटा इंस्टीट्यूट में गई अपने सोशल वर्क समाज का कार्य का पढ़ाई करने के लिए, और तब मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं ये जो जौन कर्मी है उन लोगों के साथ काम करूंगी या वो हमसे अलग है, ऐसा कभी मुझे मेरे दिल में आया नहीं। मुझे लगा कि ये लोग बहुत पीड़ित है और बहुत पीछे।

0: हो सकती, इतनी कम उम्र में ये काम करते हुए मैंने देखा लड़कियों को कि मैं हैरान हो गई। और एक बार के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ स्पेशल कुछ काम कर रही हूँ। ये डर मेरे मन में नहीं था, क्योंकि मैं जिस परिवार से आई हूँ वहां मैं हमेशा मेरे बुजुर्गों को देखे कि साहस के साथ कोई भी डिसीजन लिए या कोई सिद्धांत लिए तो वो बहुत आसानी से, लेकिन उसका जो एकदम फाउंडेशन है, उसके स्थिति जो है, वो हर टाइम बहुत ही साहस कर रहे। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ, कोई अधिक चीज नहीं कर रही हूँ। ये मुझे एक बार के लिए भी मेरे दिमाग में आई। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी उन दिनों मुझे एक मौका मिला, एक नहीं काफी मौका मिले, ऐसा एक जगह जाने के लिए जहाँ ये सब औरतें जो महिलाएं जो यौन कर्म में काम कर रहे थे उनसे मिलने की। और तब मेरा उम्र बहुत छोटा था और मैं मेरे मन में उतना अनुभव नहीं था, उतना काम करने के लिए जो साधन जरूरत है वो मेरे पास नहीं थे। तो काफी समय लगा, 1986 से लेके 86 में मैं मास्टर्स कंप्लीट करी। फिर जाके 2000 में मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया जब मैं इन लोगों के लिए काम करने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी। शांतनु भाई, कभी कभी आप मुझे ये वर्ड्स दिया करिए प्लीज।
1: ये आपने एक अपॉर्चुनिटी लिया जो कि हम समझते हैं कि आपको एक मौका मिला।
0: हाँ, एक मौका था और उन लोगों के लिए काम कर।
1: जी, तो ये 2000 में आपने न्यू लाइट्स की शुरुआत की, राइट?
0: हाँ
1: तो उस पे हम आएंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके माता-पिता जो थे, आई थिंक दोनों डॉक्टर्स थे, राइट? और जनरली ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स ही बनाना चाहते हैं, या मतलब ये इजी होता है ना, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुम ये कहाँ जा रही हो, या कैसे, क्या था ये?
0: मैंने ना कभी मेरे पिताजी को डॉक्टर के रूप में देखी नहीं, डॉक्टर से ज्यादा समाजकर्मी की समाज सेवक की कर्मी से देखा। मैं देखती थी कि कोई बच्चा आया जो बहुत ही बीमार और बहुत ही मतलब उसका बहुत जबरदस्त डिहाइड्रेशन हो रहा है डायरिया के कारण, और मैंने बाबा को देखा दवाई देने से पहले वो बच्चा को लेके उसको माँ को दिखाते थे कैसे उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना के ओआरएस,
1: पिलाना है।
0: कोई ब्रश नहीं सिर्फ नमक और शक्कर का पानी लेके उसको कैसे बूंद बूंद पिलाया जाएगा, और माँ को हेल्प करते हुए देखी मैंने। मेरे मन में पिताजी का जो इमेज था, जो पिक्चर तस्वीर मेरे मन में था, वो डॉक्टर कम और जनसेवक ज्यादा। तो इसलिए जब मैंने ये डिसीजन ली कि हाँ पिताजी तो दवाई देके सब लोगों को हील करते हैं, लेकिन उनका काम के बाहर भी बहुत एक बड़ा स्थान रहता है जहाँ पर काम करने का बहुत ही बड़ा
1: मार्जिन है,
0: अपॉर्चुनिटी।
1: मार्जिन है,
0: हाँ,
1: अपॉर्चुनिटी है।
0: और बाबा सब टाइम बोलते थे कि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं, डॉक्टर इंसान को बचाने के लिए, इंसान को सिखाने के लिए, इंसान का उपकार करने के लिए।
1: वाह, आप समझ सकते हैं साथियों, जिनके अभिभावक, जिनके परिवार में इस प्रकार के प्रिंसिपल्स, इस प्रकार के उसूल हैं कि डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। चिकित्सा ये पेशा होता ही इसलिए कि किसी के जीवन को बचाया जा सके, किसी को मदद पहुंचाया जा सके, किसी के दुख को कम किया जा सके। अगर कोई पिता अपने बच्चे को ऐसी परिभाषा सिखाता है तो वो पिता, वो माता कितने महान है, और डेफिनेटली उनकी जो संतान है वो कितना महान कार्य आगे चल करके करेगी, इसका तो आज हमारे सामने सबूत उर्मी जी हैं ही। लेकिन उर्मी जी, मैंने पढ़ा कहीं पर कि आपके पिताजी चूंकि इतना सेवा करते थे, वो हर एक की सेवा करते थे, आपकी माता भी उनका साथ देती थी, एक बार उनके ऊपर हमला भी हुआ था, शायद उनको चाकू मारा गया था या कुछ, उसके बाद क्या आपने देखा उनके सेवा भाव में कुछ?

0: परिवर्तन आते हुए क्या वो थोड़ा से ज्यादा सतर्क रहने लगे, या क्या मैसेज वो इवेंट ने, उस सिचुएशन ने जब आपके पिता पे एक जानलेवा हमला हुआ, स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथियों के साथ तो कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन क्या उसकी वजह से सेवा भाव में कुछ परिवर्तन देखा आपने? क्या वो सिर्फ जोश के साथ साथ अब होश से भी सेवा होती थी, या क्या रहा? मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना, तुम सिर्फ दिल से सेवा करते हो, दिमाग से सोचते ही नहीं हो। क्या सेवा में दिमाग से सोचना चाहिए? तो क्या है वो चीज अगर आप शेयर करेंगे?
1: उस घटना के बाद कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं, परंतु मेरे पिताजी को उनके दोस्त लोग और काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स उनको आके बोलने लगे कि उनका नाम था स्वराज, क्योंकि वो स्वराज आंदोलन के टाइम में पैदा हुए थे। तो बाबा को बोलने लगे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। तुम परिवार है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इन लोगों का सुरक्षा के लिए तुमको दूसरा कहीं जगह चले जाना होगा। तो बाबा ने बोला नहीं, यहीं पर मैंने अपना काम, लोगों का सहायता देने का काम शुरू किया, चिकित्सा के काम शुरू किया। यहाँ ये मेरा घर है, ये मेरा कर्म स्थान है, यहाँ से मैं कभी कहीं नहीं जा सकता। और उस घटना के 3 हफ्ता बाद जो लोग बाबा को छोरा भोंके थे और हमारा घर जलाए थे, और हमको एकदम एक दिन में, और डेट था 6 मार्च 1971, और अगर आप कभी, आपको आर्काइवल मटेरियल मिलेगा तो उसके 1-2 दिन बाद का न्यूज़पेपर में काफी इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो उसके 3 हफ्ता बाद जब ये लोग जो जो सब कम उम्र के थे, जो हमारा घर अटैक कर रहे थे, बाबा को छोड़ा भूखे थे और घर जलाए थे, वो लोग जब आए आए ये बोलने के लिए कि उन लोगों ने कुछ गलती की है, बाबा ने जिस तरीके से उनको समझाए और उनको संवेदनशील होके उनके साथ पेश आए, तो मुझे वैसा लगा कि अगर हम वो कंपैशन दूसरों को अंडरस्टैंड करने की जो हमारे में क्षमता है तो उसको इस्तेमाल करें, तब कहीं भी हिंसा आगे नहीं बढ़ सकती। अहिंस पथ से वो चले, क्योंकि मेरे दादाजी वो भी गांधी जी के फॉलोअर थे और फ्रीडम मूवमेंट में थे। वो मिलिट्री ऑफिसर थे, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, वहां का नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि वो बाबा आमटे के साथ या इनके साथ गांधी जी के पथ में चल सके। जाके वर्धा में गांधी आश्रम में काम शुरू किए। तो ऐसा ये रहा हमारा फैमिली का शिक्षा। तो
0: मतलब
1: मैं
0: शुरू से ही आप सेवा से जुड़े रहे हैं। मतलब आपका सेवा से जुड़ना तो नेचुरल लगता है, क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि आपके पूर्वज जो थे वो सदा से सेवा से जुड़े हुए थे।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये मेरे मन में नहीं आया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। अगर मैं ये पेशा में ना आती तो ऐसा पेशा में जाती जहां मेरा काम में भी लोगों का कुछ मदद मिलते, समझे। तो ये मेरे लिए आश्चर्य नहीं है। अगर मैं दूसरा कुछ करती, अगर मैं बैंकर होती, या अगर मैं पैसों के पीछे भागती, या अगर मैं कोई बड़ा सा एक कॉर्पोरेट जॉब ले लेती, उस धारणा, उस चिंता कभी मन में रहे नहीं। और आज मैं बहुत ही गर्वित हूँ कि मेरे जो मेरे भाई की लड़की, वो दिल्ली से मास्टर्स की, और वो अभी इस कोविड से पहले वो गाजा स्ट्रिप में रेफ्यूजियों के साथ काम कर रही है, करती थी तब, अभी वापस आई, फिर जाने की सोच रही है। तो उसके लिए भी वो तो चौथा पीढ़ी हो गया, मेरा दादाजी, बाबा, मैं और वो। तो हमारे ये एक परिवार का परंपरा रहा, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि उसने भी ऐसा ही काम चुना जहाँ वो, बहुत डिफिकल्ट जगह है गाजा जाके, उतना आसान नहीं है रेफ्यूजियों के साथ और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये काम करना मेरे काम से भी तो मुझे लगता है बहुत कठिन है।
0: ये आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि आपके काम से भी कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी यही सोचती होंगी कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत कठिन है। और मैं समझता हूँ आपके द्वारा कभी एक दिन हम उनके साथ भी चर्चा करने का हमें मौका मिलेगा, हमारे श्रोता साथियों को उनके अनुभव भी सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन
1: जी,
0: जो बात आपने कही कि अहिंसा के पथ पर रहते हुए आपके पिताजी ने संवेदनशीलता दिखाई, जो सहानुभूति और जो क्षमा भाव दिखाया उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें छुरा भोंका, जिन्होंने उनको मारने की कोशिश की, आपके घर को आग लगा दिया, ये कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत के रग रग में बसा हुआ है। ये कोई कई लोग इसे गांधी जी से जोड़ते हैं, लेकिन ये शुरू से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, ये सारी बातें जो है शुरू दिन से ही भारत का अभिन्न अंग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को हम भूलते गए। लेकिन आज आप जब हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे बैठे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कभी भी कमजोर नहीं होते, ये हमेशा बलवान का हथियार होते हैं, या जो चरित्रवान लोग होते हैं उनका ये साधन होता है, उनका ये ताकत होता है। कई लोग सोचते हैं अहिंसा जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो थोड़े से कमजोर होते होंगे, इसलिए वो शायद सामना नहीं कर सकते। बट मैं कहता हूँ, या उर्मी जी के अनुभव से उर्मी जी शेयर करेंगे, कि दोस्तों अगर आप सहन कर सकते हैं वास्तव में आप शक्तिशाली हैं। सहन वही कर सकता है जो ताकतवर होता है, टूट वो जाते हैं जिनमें ताकत की कमी होती है। तो इसलिए जो अहिंसक हैं, जो सहनशील हैं, उनके शील में, उनके चरित्र में वो ताकत तो आती ही है, और ये आज उर्मी जी को देख करके हम सब समझ सकते हैं। उर्मी जी, मैं यहाँ पर इस चर्चा को उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर सेवा भाव था ऑलरेडी। आप चाहते तो युवाओं के साथ भी काम कर सकते थे, क्योंकि आपने देखा आपके पिताजी ने युवाओं के बीच में रह करके युवाओं में एक परिवर्तन लाया। आपने ये इन बहनों के साथ काम करने का कैसे सोचा, जो हमारी अहिल्याएं हैं या कर्णिकाएं हैं, या जिनको हम वैश्यवृत्ति में युक्त देखते हैं, इन बहनों के साथ काम करने का ध्यान कैसे आया? Why did you choose that particular field?
1: Actually, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की, और उन दिनों मैं एक कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, उनके अंदर एक स्पेशल सेल फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस हुआ करता, दैट वाज द फर्स्ट सेल, और वो कमिश्नर जूलियो रिबेरो के टाइम में सेटल किया गया था, और एसडी सोमान थे तब कमिश्नर, जिनके अंडर मैं वो प्रशिक्षण ले रही थी। और वो करते ही उसी टाइम मुझे कामाटीपुरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाने का एक मौका मिला, और वहां जाके तो मैं एकदम हैरान हो गई। मैं सोच ही नहीं सकती थी इतने छोटे बच्चों को जैसे कि पिंजरे के पीछे बंद करके रखा है, और आजू बाजू सब लोग घूम रहे हैं, और माहौल बहुत ही एकदम मतलब बहुत ही पेनफुल, वेदनादायक, और उसमें बहुत ही कष्ट में वो सारी लड़कियां रह रहे थे। तो उस समय से 1985 से लेके सीधा 2000 साल आ जाती मैं, फास्ट फॉरवर्ड टू 2000, और इस टाइम में एक कई उसी इलाके की कई लड़के एक बार मेरे पास आई और मुझसे बोला कि आप थोड़ा हम लोग का मदद करिए, हम एक स्पोर्ट्स डे करेंगे। मैंने बोला कि देखो, ऐसे तो पैसा देके मदद करने की मेरी परिस्थिति है नहीं, लेकिन मैं जरूर कुछ कोशिश करूंगी। तो मैं अपने दोस्तों से रीच आउट करी कि देखो ये दिस बॉयज ये सब एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मदद अगर मिले तो अच्छा रहेगा, उनको लोग पैसा मत दो, लेकिन तुम्हारे कंपनीज में कभी कभी टी शर्ट तुम लोग बना लेते हो, कैप्स बना लेते हो, हेल्थ ड्रिंक्स है जो एक्सपायर होने वाले है, बिस्किट्स है, बड़े बड़े कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान लीवर में मेरे एक दोस्त था, कैडबरीज में था और नेस्ले में थे, तो इन सब को मैंने थोड़ा उन लोगों को गिल्टी भी फील कराई, हाँ कि तुम लोगों के पास इतना साधन है जो तुम ऐसे ही तुम्हारे वेयर हाउस में बैठे बैठे खराब हो जाते, वो क्यों ना दिया करो, वो दे दो और हम इस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इत्तेफाक से मैं उस स्पोर्ट्स डे प्रेजेंट नहीं हो पाई, लेकिन स्पोर्ट्स डे बहुत ही अच्छा गया और वो लड़के सब बहुत खुश थे, थोड़ा बहुत जो मैं उनको दे पाई। कई कई दोस्तों से मैं गिफ्ट्स भी मंगवाई कि अगर 10 कॉपीज के एक बंडल बना के उसके साथ 10 पेंसिल एज अ गुड सेट, तुम लोग कुछ खास नहीं था। और ये मैं सब टाइम बोलती हूँ, अगर मन में इच्छा है कुछ करने का, साधन की कमी नहीं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता। और ऐसे ऐसे आते हैं कि वो उसी वक्त आप महसूस करोगे कि हम सिर्फ निमित्त, काम कोई दूसरा कर। दिस ये बात मैं हजार बार कहूंगी कि मैं इस काम के सिर्फ निमित्त, मेरे मुझे ये मौका दिया जा रहा है इस कर्म करने के लिए, मुझे चुना गया है इस काम करने के लिए। बहुत इच्छा रहने के बावजूद हम कभी कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि शायद ईश्वर, हमारे बुजुर्ग एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, वो हमें रेडी नहीं समझे कोई काम करने के लिए हमको तैयार होना। अब तैयार हम नहीं होते, हमारा इवैल्यूएशन कहीं दूसरा जगह में होता। हम अगर बोले अरे हम तो तैयार है, अभी चलेंगे लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। कोई आपको समझते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हाँ अभी ये तुम्हारा कर्म है, ये जाके करो। तो मैं भी वैसे सोचे कि हाँ ठीक है। तो कई दिन बाद वो लड़के फिर दोबारा मुझसे मिलने आए, थैंक यू बोलने आए, और मुझे रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप एक बार अगर चल के देख लोगे हमारा मोहल्ला तो हम लोग बहुत खुश होंगे। तो ऐसे ही मैं कुछ सोची भी नहीं थी, मैं गई और मेरे लिए मेरे फर्स्ट विजिट टू अ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इन कोलकाता, जहाँ की मैं पैदाइशी कलकत्ता की हूँ, मुझे लगा मेरे अपने शहर में ऐसा एक जगह है जिसको हम देखते नहीं, देखना नहीं चाहते। लोग कैसे रह रहे, छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे, माँ उनके कोई ग्राहक के साथ एक चारपाई के ऊपर, छोटा 2 साल का 1.5 साल का बच्चा नीचे सोता हुआ देखा। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में उसकी इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई, मैं क्या बताऊं। मैं सिर्फ ये सोचता हुआ रह गया, क्या किया जाए। मुझे एक बार भी नहीं मेरे मन में आया ये मेरा काम नहीं है, ये इसमें बहुत खतरनाक परिस्थितियां आ सकते, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या प्लान कर रही हूँ ना, व्हाट कैन आई डू। कि वो उस लड़की महिलाओं को थोड़ा सा मदद देने की और उन बच्चों के लिए एक दूसरी जीवन, एक दूसरा परिस्थिति बनाने के लिए। तो मैं सोचती रहे फिर उन लड़कों के पास वापस गई, उनको बोला अगर मैं एक इवनिंग का कुछ क्रेश जैसा, जब माँ लोग काम करते हैं उस टाइम बच्चों को सही सलामत रखने के लिए, अगर मैं एक छोटा कमरा मुझे मिले तो अच्छा रहेगा, आप लोग अगर मुझे सहायता करोगे तो मैं कुछ करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो वो लोग बोले हाँ आइए, हम आपको हमारा क्लब रूम जो है उसका एक हिस्सा आपको देंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ काम करने कौन जाएगा, कोई टीचर अवेलेबल नहीं थे, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कोई लोग आके काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैंने किया वही का जो 11th क्लास पास, 12th क्लास पास जो यंग पीपल थे उन्हीं में से चुने मैं 3 लोगों को लिए और 2 मासी को लिए जो उम्र वाले थे, जो अभी यौन कर्म में नहीं थे, और लेकिन उनका कोई ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो उनको बुलाए मैं कि आप 3 बच्चों को देख के रख सकते हो, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो सिर्फ मैं 5,000 रुपया दिया और मेरी एक दोस्त, उन्होंने 5,000 रुपया दिया, 10,000 रुपये से हमने क्या खरीदा, मैट्स, प्लास्टिक मैट्स खरीदे, एक स्टील का वाटर फिल्टर खरीदे, 20 प्लेट्स खरीदे, 20 स्पून खरीदे, और एक बेबी बाथ टब खरीदे, एक वाटर कंटेनर खरीदे, और कुछ तवलिया जैसे चीज खरीदे। ऐसे ही हुआ, और जहां हम काम करते थे उसमें हम कभी ताला भी नहीं लगाए, क्योंकि हमसे लूट लेने वाला कुछ चीज था ही नहीं।
0: लूट के भी कोई ले जाएगा तो अच्छी चीजें ही लेके जाएगा, और उसमें भी उसका कुछ भला ही होगा।
1: अब मेरे दो तीन जो मेरे साथ काम करने वाले थे वो दीदी उसमें ताला नहीं है, हम क्या करते थे, हम नारियल का रस्सी रहता ना उसमें, उसे बांध के हम चले जाते काम के एंड ऑफ द इवनिंग। तो ये मुझे लगा न्यू लाइफ के सक्सेस की दो तीन चीजें हैं। एक है लोकेशन, क्योंकि जो जौनकर्मी माँ थे उनके लिए सड़क पार करके दूसरे जगह बच्चों को पहुंचाने का कोई ये नहीं था, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं था। सेकेंड थिंग, मैंने कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व किए, यंग पीपल को टीचर के जरिए और ओल्ड पीपल को केयर गिवर्स के जरिए। आज भी उसी मॉडल में चल रहा है शंतनु, 23 इयर्स हुआ। अब तो बड़े बच्चों ने विलायत से आके आंटी हम क्या करें बताइए। सो और तीसरी है टाइमिंग, क्योंकि मैंने देखा दो चार और संस्थाएं थे जो दिन में वहां काम करते थे, शाम के टाइम चले जाते थे। तो मैंने सोचा कि वो शाम का टाइम इस सबसे इम्पोर्टेंट है, जब ऑल द मदर्स आर वर्किंग, दे हैव टू। उन लोगों के लिए तो कल के लिए कमरे का किराया, कल के लिए खाना का पैसा, कल के लिए अनाज लाने का पैसा, कल दवाई के पैसे, आज अगर काम ना करे तो कल वो कैसे उसका दिन बिताएगी। इसीलिए हर महिलाएं उस टाइम रेडी होकर वो अपने कस्टमर्स के वेट करते हैं। तो ये टाइम था, हमने शुरू किया 5 से 9 बजे तक। शुरू की टाइमिंग, लोकेशन और पीपल, समय और स्थान और पात्र, स्थान काल और पात्र। शंतनु, इससे बढ़ के इससे आगे कोई कुछ नहीं। अगर स्थान सही हो, समय सही हो, और किन लोगों के, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो वो सही हो, तो ये तीन चीज अगर एक जगह आ जाए तो कुछ भी नामुमकिन।
0: तो साथियों, सुना आपने, समय, स्थान और पात्र। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, शुरुआत में ये चेक कीजिए क्या स्थान सही है, समय सही है, और जिन लोगों के साथ करना चाहते हैं, जिनके लिए करना चाहते हैं, क्या वो लोग सही में पात्र हैं। ये तीन चीजों के आधार पे उर्मी जी ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया न्यू लाइट्स के जरिए। न्यू लाइट्स इंग्लिश में, जिसका मतलब हिंदी में होता है नई रोशनी। तो न्यू लाइट्स के जरिए उन्होंने क्या किया, रेड लाइट एरिया में जो बच्चे हैं उनके जीवन में नई रोशनी लाई। ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है उर्मी जी की, न्यू लाइट्स का ये मतलब होता होगा, बट आपने न्यू लाइट्स नाम क्यों सोचा?
1: मैं जब वहां पहुंची वो बहुत एक अंधेरा सा और डरावना सा, जिसमें कहीं होप नहीं था, रोशनी, आशा की रोशनी नहीं थी। इसलिए मुझे लगा न्यू लाइट, अगर कुछ नई चीज का शुरुआत करें तो हम लाइट ढूंढते ना कोई जगह में जाके, कोई अंधेरा जगह में जाके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे इसमें लाइट चाहिए। क्या ढूंढते हैं हम? टॉर्च ढूंढते हैं हम, एक मोमबत्ती ढूंढते, दिया ढूंढते हैं, इसी ऐसी भावना से। और कुछ ऐसा बहुत सोच के बहुत करूंगी कुछ नहीं सोची, सिंपल सा एफर्ट, सिंपल इनिशिएटिव। सच्ची में कोई ब्लूप्रिंट नहीं था मेरे पास, मैंने कोई स्टैटिस्टिशियन के पास नहीं गई, मैं कोई डेटा एनालिसिस नहीं किया, मैंने कोई भी कंसल्टेंट से बातें नहीं की, डेवलपमेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं की। मेरा मन में ये लगा कि दुनिया के हर कोने में हर एक माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती, तो सिर्फ वो बच्चों को ठीक से रखने के लिए हर माँ चाहती। तो ये सिस्टम, ये अगर ये सपोर्ट हम दिए तभी चल के बाद में मां लोग ने सोचने लगा कि हाँ मेरा बच्चा भी स्कूल जा सकता है, मेरा बच्चे को भी हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, मेरे बच्चों को भी कोई अंग्रेजी किताब पढ़ सकते हैं, मेरा बच्चा कंप्यूटर में काम। मुझे याद है शुरू में एक बार मैं कंप्यूटर, उन दिनों लैपटॉप नहीं था लेकिन हमारा उतना किसी के पास उतना आसानी से नहीं था, तो एक मैं सेकेंड हैंड डेस्कटॉप की रिक्वेस्ट करी थी किसी पे ग्रुप से। उन्होंने बोला वो बच्चा डेस्कटॉप लेके क्या करेगा। तो मैं अंदर ही अंदर में, मुझे गुस्सा, मेरी जवाब शायद अभी इन रिट्रोस्पेक्ट में लगता है ठीक सही नहीं हुआ, लेकिन तब मैं भी 20 साल कम उम्र की थी, 23 इयर्स कम उम्र की थी। मैंने फटाक से उनको बोला जो आपके बच्चे करेंगे सीखेंगे। आई मीन यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो क्या बेवकूफी की क्वेश्चन है। तो ये है हमारे समाज के डिविजन, हम अलग है, हमारे बच्चे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता, वो लेके क्या करेगा, वो तो एक कोई मतलब सड़क पे चलने वाली रहने वाली औरत की लड़का है, उसको ये कैसे हो?
0: मैं समझता हूँ उर्मी जी, आज भी ये जवाब सही है, उस समय भी ये जवाब सही था, आज भी सही है। आप रेट्रोस्पेक्ट में ये नहीं सोचे कि वो रॉन्ग जवाब था, क्योंकि ये जवाब एकदम एकदम एकदम सत्य है। जो आपका बच्चा इस साधन के साथ करेगा, वो ये बच्चा भी करेगा, कोई भी बच्चा कर सकता है। साधन कभी भी ये नहीं डिसाइड करता कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये तो साधक के ऊपर होता है। तो इसीलिए ये जो आपने जवाब दिया था उनको, ये आपके अंतरात्मा की क्लैरिटी को दर्शाता है कि आप कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। और इसलिए जो आपने बात कही कि न्यू लाइट्स की शुरुआत बहुत साधारण सहज तरीके से हुई, सिंपल तरीके से हुई, क्योंकि आजकल चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है। सिंपल चीजें ढूंढ पाना, सिंपल लोगों को ढूंढ पाना शायद बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए सब चीजें मुश्किल हो गई हैं। और जहां पर सिंप्लिसिटी है, वहां पर सब चीजें आसान दिखती हैं, सहज दिखती हैं, शांति का एक अनुभव होता है। जब आप अपनी इस कहानी को हमारे साथ शेयर कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्देशक ने हाल ही में एक फिल्म बनाई थी कामेटीपुरा के ऊपर, जो कि बॉलीवुड में बहुत फेमस भी हुई, उसमें भी कई चीजें दिखाई गई। और वो चीजें जब फिल्म के रूप में आती हैं तो हम उसको बहुत रोचक तरीके से देखते हैं, लेकिन जब कोई वहां जाता है तो शायद वो चीजें उतने रोचक या उतने समेटे हुए ढंग से नहीं दिखती, वो चीजें वैसी दिखती जैसे होती हैं। फिल्मों में तो हम फिर भी चीजों को थोड़ा सुंदर तरीके से देखते हैं, लेकिन जब आप वहां खुद पहुंचते हैं, खुद जाते हैं, तो आप वहां पर जाकर के चीजों की एकदम आप पारदर्शिता देखते हैं कि जो चीज जैसी है वैसे आप देख पाते हैं। उसमें कोई लाइट्स कैमरा एंगल नहीं होता ताकि उसको आप सुंदर तरीके से देखें, आपके अभिव्यक्ति पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, उसकी वजह से आपको कोई अलग रूप से नहीं दिखाया जाता है, जो है जैसा आप वैसा देखते हैं। तो जब आपने वो चीजें देखी कामाटीपुरा में, बॉम्बे में, फिर जब आप वापस यहाँ आए कलकत्ता में, और कलकत्ता में जब आपने इन चीजों को देखा, तो आपने अपने जीवन का एक रास्ता चुना कि मुझे किसी भी प्रकार से वैश्यवृत्ति से जुड़ी हुई जो बहनें हैं उनके बच्चों के लिए एक अच्छी उम्मीद क्रिएट करनी है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। और 5,000 रुपए के दो डोनेशन से आपने 10,000 के शुरुआती कीमत से अपने इस बड़े यज्ञ की शुरुआत की। मैं इसे यज्ञ कहूंगा क्योंकि इसमें कईयों ने अपने सेवा का, समय का, साधन का, संपत्ति का आहुति दिया है, और कईयों ने इस यज्ञ से बहुत अच्छा अच्छा फल प्राप्त किया है। तो मैं चाहता हूँ उर्मी जी, अभी अगर आपके इस पूरे यज्ञ में कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसी माताएं हैं या बहनें हैं जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा या जीवन में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि परिवर्तन के रूप में प्राप्त की, कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो कौन सी वो सक्सेस स्टोरीज होंगी? जस्ट ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड सबसे पहले कौन सी स्टोरी याद आती है?
1: सारे स्टोरीज है। अभी फिलहाल मार्च के महीने में एक जर्नलिस्ट आए थे जो 2005 में न्यू लाइट में आए, और उस टाइम ये छोटा बच्चे का उम्र था 13 साल। अभी जब वो वापस आए तो वो फिर मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंटली ही वाज आल्सो देयर, ही इज 29 इयर्स ओल्ड नाउ, ओके, एंड ही इज वर्किंग ऑन कार्निवल क्रूज एज अ शेफ, इंडियन शेफ, और ही इज इन द डूइंग एलए टू अलास्का राउट, ओके। और उसकी माँ, वो चार भाइयों का परिवार है, वो सबको एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, अपना एक घर बनाने का उसने जमीन ले लिया है, पूरा लाइफ पूरा वो फैमिली का परिवर्तन हो रहा है। तो वो जर्नलिस्ट भी जब आए वो एकदम मतलब चौंक गए, और ये बड़ी बात नहीं कहना चाहती मैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये उसका स्टोरी पब्लिश हुआ। और एक लड़की,
0: मैं हमारे साथियों के लिए बता दूं, उर्मी जी जिस बच्चे की कहानी के बारे में बता रही हैं, उस बच्चे ने लॉस एंजलिस से अलास्का तक एक टूर है, उस टूर के दौरान एज अ शेफ, आप देखते होंगे मास्टर शेफ आदि दोस्तों टीवी पे, आजकल शेफ की कितनी डिमांड है, तो वो बच्चा कहाँ 13 वर्ष की आयु में जब उर्मी जी के संपर्क में आया, और न्यू लाइट्स के द्वारा का जब देखभाल होता रहा, आज वो 29 वर्ष की आयु में एक बहुत ही नामी ग्रामी शेफ के रूप में काम कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए एक घरौंदा बांधने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी उर्मी जी, नेक्स्ट आप कुछ एक और बहन की कहानी बता रही थी।
1: और एक लड़की जो जिसके परिवार में 5 सिस्टर्स है और वो है नंबर 2, उसने अभी 2 चीज एक साथ कर रही है। वो मास्टर्स भी कर रही है पढ़ाई में एंड उसके साथ बीएड का भी ये लिया, फिर उसके साथ काम भी कर रही है। और एक लड़की वो TCS में काम कर रही है, उसमें ऐसे बड़ा नामी दामी कंपनियों में ये लड़कियां सब काम कर रही है और माँ लोगों को सपोर्ट कर रही है। न्यू लाइट में हरदम वापस आती, बच्चों को ख्याल रखते हैं और बोलते हैं ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कई कई तो वापस आके हमारे साथ अभी टीचर्स हैं, सोशल वर्कर है टीचर।
0: तो इतनी सारी अच्छी अच्छी कहानियां आप छुपा के रखी हैं, आप हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे शिकायत करेंगे कि आपको अक्सर आना चाहिए रेडियो मधुबन पे और ऐसे अच्छे इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 कहानियों को सुनते हुए जितनी खुशी मुझे हुई, मैं समझता हूँ दोस्तों आपको भी हुई होगी। कैसा लगा सुनकर के ये कहानी जब उर्मी जी शेयर कर रहे थे कि उन बच्चों का जीवन आज कैसा है? आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने अनुभव में, अपने फीडबैक में। उर्मी जी, ये जो जीवन परिवर्तन हुआ इन लोगों का, इस जीवन परिवर्तन में बहुत मेहनत उनकी भी रही, आपकी भी रही और आपके साथ कई लोगों की भी रही, लेकिन इस दौरान कई कई अनुभव आपके ऐसे रहे होंगे मदद के जो कि अदृश्य रहे होंगे, जो कैसे हुए आपको भी नहीं पता। जैसे कि कई ऐसे होंगे अनुभव जहां पर आपको पता ही नहीं चले कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत मुश्किल था। तो ऐसे कुछ अनुभव है क्या आपके?
1: बहुत सारे हैं। कभी कभी तो बैंक अकाउंट में 5,000 ही रुपया रहता है और मैं सो जाती हूँ, ठीक है देखा जाए देखा जाए, कोई हैरान नहीं। मुझे मालूम है कि कल सुबह होते ही मेरे पास 2 लाख रुपए का पेमेंट का बिल सब आते रहेंगे, खाने का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, स्कूल का, कॉलेज का, मेडिकल बिल्स, ये सब आते रहेंगे ना, ठीक है 5,000 है देखा जाएगा, जिन्होंने काम दिया उन्होंने ही लेके देना है।
0: वाह, तो इससे पता चलता है उर्मी जी आपका निश्चय ऊपर वाले पे भी बहुत स्ट्रांग है और इसलिए ऊपर वाला भी आप पे बड़ा निश्चय रखता है, इसलिए आपको ही उसने निमित्त बनाया जो आपने पहले कही। और जब कोई बहुत अच्छा निमित्त होता है तो उसके द्वारा जब उसे सम्मानित किया जाता है तो उसके द्वारा उस निमित्त को चुनने वाले का भी सम्मान होता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ जब भारत सरकार ने आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया तो उसने, भारत सरकार ने ना केवल आपका सम्मान किया लेकिन उस चुनाव का भी सम्मान किया, उस डिसीजन का भी सम्मान किया जिसमें ऊपर वाले का सम्मान हुआ। जब ये सम्मान आपको दिया जा रहा था तब आपको क्या फील हुआ कि क्या आपने कोई मुकाम हासिल किया कि या अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, या क्या था, क्या लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गए, क्या लोगों ने सहायता ज्यादा शुरू की, या कैसा रहा?
1: नहीं ऐसे नहीं, लेकिन ये जो सम्मान है ये तो अमूल्य, ओके इसको मापा नहीं जाए। और मुझे लगा कि गर्वित होने के बदली में मुझे लगा मैं और हम्बल और मतलब मैं सबसे आभारी ज्यादा रही, क्योंकि एक काम तो नहीं, मैं अकेले तो नहीं किया कुछ, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ लेबर, समय का, ध्यान का। और जो लोग मुझे सपोर्ट किए, मुझे सपोर्ट किए, मैं मतलब कि कोई दोस्त फोन पे अगर बोला अरे तू अच्छी है ना, ख्याल रखना, ओके तू आजकल बहुत टायर्ड दिख रही है, इतना काम मत किया कर, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन।
0: तो दोस्तों आपने सुना, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है जरूरी नहीं कि आप भी जाकर के उसके साथ काम करने लग जाए, अगर आप कर सकते तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं कर सकते केवल उस व्यक्ति से प्यार से बात करना, कैसे हो, अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं, केवल इतना भर पूछने में भी उस व्यक्ति को बड़ा चैन, बड़ा सुकून, बड़ा राहत महसूस होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ इस रास्ते पर। और केवल इतना भर करने में भी आपकी सेवा छुपी हुई है। तो आज आज के आज आपके सामने अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे आप फोन करें और उससे बताएं कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। कभी भी कुछ आवश्यकता हो मेरे को जरूर बताना। भले मैं और आप शायद उनको डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अपना दिल खोल के रख सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है। तो उर्मी जी, जब कभी प्रॉब्लम आती थी और आपको दिल खोलने की आवश्यकता होती थी, तो आप किसके पास दिल खोलते थे?
1: कभी दोस्तों में, जब तक माँ थी तब तक माँ को ही बताती थी, अरे देखो ना ये हो गया वो हो गया। कभी पुलिस से के साथ कुछ झंझट हो गया, पुलिस में कंप्लेन लिखाने गए, वो लोग लिए नहीं, हजार तरीके का प्रश्न पूछने लगे, डिले हो रहा है, जितना जल्दी से मैं उस परेशानी का मतलब सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ उतना आसानी से नहीं हो रहा है। ऐसा तो हरदम होता है मेरे साथ बहुत सारे।
0: और दोस्तों के साथ भी आपने शेयर किया, तो अच्छे दोस्त अच्छे मित्र बहुत कीमती होते हैं। और आपने कई ऐसे मित्र इन बहनों में भी बना लिया होगा, जो जिन बहनों को आपने अपने साथ जोड़ा। क्या इन बहनों के भीतर भी आपको कोई ऐसी बात नजर आई जो कि हम सब सीख सकते हैं उनसे?
1: उनसे ये सीखना जरूरी है कि रेजिलियंस किसको कहते हैं, सहन से बचें। हर दिन वो काम करने के बाद भी वो एक साथ बैठ के हंसते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, रात के 2 बजे अगर कोई बीमार हो उसके साथ टैक्सी में, उन दिनों तो एम्बुलेंस भी नहीं हुआ करता था, उतना आसानी से मिलता नहीं था। और मैंने देखा बहुत बार अगर कोई उस कम्युनिटी में कोई डेथ होता, सारे लोग एक साथ चलते। लगता है हर एक इंसान अकेले में है और अकेला काम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
0: तो ये जो एकता है, ये जो पारिवारिकता है, ये जो परिवार की एक भावना है, और ये जो संवेदनशीलता है एक दूसरे के प्रति, ये सीखने लायक है। और जो बात आपने कही सहनशीलता, सहन करने की ताकत जो है, ये इन्हें बहुत खास बनाता है। दोस्तों, ये सवाल पूछने के पीछे मेरा भाव ये था कि जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा तैयार करते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, जब हम उनसे कुछ सीखने की बात करते हैं तो उनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ता है।
1: ग्रीन के नजर से देखते हैं ना, कि वो तो समाज के बाहर है, वो खराब है, उनके ऊपर हम बहुत आसानी से जजमेंट डाल देते हैं। और एक बात भी बताऊं, मेरे अब मैं जितना उम्र है और अगर 10 साल जीऊं, 20 ईयर्स जीऊं, कोई किसी को नहीं मालूम, 10 घंटा भी जी सकती हूँ, कोई बात नहीं। बात ये एक चीज मुझे मालूम है कि मैं, मेरे लिए कभी कोई चीज का कमी नहीं रही। मतलब क्या, रहने के लिए जगह उस मोहल्ला में मेरे, मुझे 100 रूम्स है, खाना 200 पीपल आके मुझे हाथ से खिला के जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है, मैं ये उनको बहुत बार कही हूँ कि अगर मेरा परिस्थिति तुम जैसे होता, मैं भी शायद यही काम करती। मेरे घर में अगर छोटे बच्चे होते और मेरा पति मुझे छोड़ दिया होता और मेरे पास कोई शिक्षा नहीं रहते, कोई स्किल्स नहीं रहते, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया होता, तो मैं कैसे इन बच्चों को पाल पोस कर। इसलिए तुम जो कर रही हो, तुम परिस्थिति के शिकार हो, उसमें कोई जजमेंट, उसके वो सब चीजों के बाहर है दैट तुम एक बच्चे का माँ हो और किसी की लड़की हो, बेटी हो।
0: तो जो उर्मी जी कहना चाह रहे हैं दोस्तों, वो ये कि इंसान को उसकी परिस्थितियों से नहीं परिचय करना चाहिए, इंसान को उसकी इंसानियत की वजह से मानना समझना चाहिए। अगर मैं किसी को उसकी परिस्थितियों की वजह से देखता हूँ, तो कल जब उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो उसका मेरे प्रति, मेरा उसके प्रति धारणा ही बदल जाएगी। परिस्थितियां क्षणभंगुर है, वो आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन व्यक्ति तो रहेगा, व्यक्ति के साथ वो संबंध रहेगा। इसलिए आज भी वो बच्चे बार बार वापस आते हैं, उर्मी जी के साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं, और न्यू लाइट इंडिया के जरिए कई लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू लाइट इंडिया के बारे में या उर्मी जी के काम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा वेबसाइट पे www.newlightindia.org। और मैं समझता हूँ आपको जरूर जाके एक बार देखना चाहिए, उसके जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपके चेहरे पे एक ऐसा मुस्कुराहट ले आएंगे जैसा मुस्कुराहट अभी उर्मी जी के शक्ल पे है, या मेरे शक्ल पे आपको दिख रहा होगा, या आप हमारी आवाज से सुन सकते होंगे। उर्मी जी, आपने इस सेवा के तहत भारत का बहुत भ्रमण किया है, लोगों ने आपको जगह जगह बुलाया है, एज अ मेंटर बुलाया है, एज अ गाइड बुलाया है, एज अ स्पीकर बुलाया है। आप कितने ही देश में भी और विदेश में भी गए हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, कौन सी वो एक चीज आपको भारत में नजर आती है जो कि भारत को भारत बनाती है?
1: प्रेम।
0: आपने तो बड़े फटाक से जवाब दे दिया। कई बार हमारे सभी स्पीकर सोचते हैं कि कौन सी एक चीज है, प्रेम ही क्यों चुना आपने एज एन आंसर?
1: Because it is that, you know, it is that. This is the only एक ही देश है जहाँ अगर मैं कल भिक्षु बन के सड़क में जाऊँ, लोग मुझे बिना पैसे में पानी पिलाएंगे, कहीं नहीं देते दुनिया में। अगर तुम एयरपोर्ट में पास कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और वो अगर डिस्पेंसर खराब है, कोई दुकान में जाके तुम पूछो जो मुझे एक बोतल पानी चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मुझे ऐसे दीजिए, कोशिश कर लेना कहीं भी। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में प्रेम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस धरती का सबसे बड़ा, इस इंडिया की मिट्टी में प्रेम।
0: तो भारत भूमि में वात्सल्य, प्रेम, वो ममता जो है प्रेम के रूप में भारत भूमि में और भारतीयों में कण कण में बसता है। दोस्तों, आज चेक करना है खुद को कि सच में मेरे जीवन से भी वो प्रेम झलकता है। क्या मैं एक दूसरे के साथ प्रेम से रहता हूँ? क्या मैं मेरे परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ, अपनी प्रकृति के साथ, जिस प्रकृति के बीच में हम रह रहे हैं, क्या उसके साथ हम प्रेम से रहते हैं? प्रेम मतलब ही सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान। तो उर्मी जी, अभी चूंकि घड़ी के कांटे हमें आपसे ज्यादा बात नहीं करने देना चाहते, लेकिन बातें तो बहुत करने का मन करता है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस थ्रू आउट जर्नी में, जो कि आपने 1980 से शुरू किया और आज भी चल रहा है, इस पूरे जर्नी में आपने कौन सी चीजें सीखी?
1: सबसे बड़ी बात सीखी पेशेंस, धीरज। कोई चीज आज बोलो कल नहीं हो सकती, उसके लिए वही समय, काल, वही घुमा फिरा के वही चीज, जो वो चीज जब होना है, इसलिए हम कहते हैं मुहूर्तम, जो चीज जब होना है वो उसी वक्त ही होगा, उसके आगे पीछे हम कितना भी लड़ ले नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी परिस्थितियां आए कि मुझे लगा बहुत कठिन परिस्थितियां है, किसी भी हालत में हल नहीं रहा, जिस क्षण में मैं ठान लेती हूँ इसके बारे में मेरा कुछ नहीं करने का है, जब ये सुलझना है उसी वक्त सुलझ जाए, ऐसा ही। एक तो धीरज और दूसरी ये है कि हिंसा बड़ा इजी है, बहुत सा किसी के साथ हिंसा से पेश आना बहुत आसान है। कोई तुमको एक मुक्का मारा, तुमने उसको मुक्का मार दिया, फाइन। लेकिन कोई तुमको मुक्का मारे और तुम अंदर ही अंदर में बोलो मैं इसके साथ हिंसा से पेश नहीं आऊंगा, उसके लिए बहुत इंटरनल डिसिप्लिन का बड़ा जरूरत है। ट्रेन में भी जाके देखोगे, कभी तुम अपना बैग रखा, तुम्हारे सीट पे कोई बैठा हुआ है या उसके चार पांच रिश्तेदार हैं, उनको छोड़ने के लिए, उनमें बुजुर्ग भी है और वो उनका सब सामान ठीक कर दे रहे हैं, वो लोग तो ट्रेन छूटने से पहले निकल ही जाएंगे। लेकिन मैं खास तौर से देखती हूँ जो बाकी पैसेंजर्स है, अरे ये तो नहीं है यार, थोड़ा हटाइए, आपका बैगेज हटाइए, ये करिए वो करिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आधा घंटे बाद तो ट्रेन चलने लगेगी, जो पैसेंजर है वही चलेंगे। दूसरे लोग, दिस अ प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग, और कोई कहीं गए लाइन पे खड़ा होने का धीरज हम लोग को कम हो गया, सब सोचते हैं मैं सबसे आगे चल के लाइन का हेड में जाऊं, किस लिए, तुम किस लिए चुने गए कि तुम सबसे पहले जाओगे, तुम्हारे सामने और 50 लोग खड़े हैं, हर एक का रियलिटी अपना अपना रियलिटी है, तो वो दिमाग में लिख के चलना चाहिए।
0: वाओ, उर्मी जी, आपने कितने सरल उदाहरणों के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी, मैं कहूंगा जीवन के बहुमूल्य शिक्षाओं को हमारे सामने रखा कि धीरज और अहिंसा ये जीवन को धरोहर बना देता है, किसी भी आम जीवन को खास बना देता है। साथियों, आपने सुना उर्मी जी को आज, उर्मी बासु जी जो कि फाउंडर है न्यू लाइट सेवा संस्थान की, जो कि वैश्यवृत्ति से जुड़ी जो बहनें हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पिछले कई दशकों से सेवा कर रही हैं और उनकी सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि भारत देश में किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, वो दिया। नारी शक्ति पुरस्कार उर्मी जी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उर्मी जी एक नारी है, इसलिए दिया क्योंकि उर्मी जी एक इंसान है और इंसान के पीड़ा को समझते हुए उसे मिटाने का, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी, एक उमंग, उत्साह और एक मौका देने का अनवरत प्रयास कर रही हैं, अथक प्रयास कर रही हैं। उर्मी जी, अगर जाते जाते आपको एक मैसेज देना है हमारे सभी साथियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: मैसेज में उतना देके लोग को मतलब बाइंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, ये सोच के बैठे नहीं रहना कि जब मेरा सब परिस्थितियां सही होंगे तब करेंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म अगर करना है तो आज ही कर सकते, उसके लिए सोचते हुए, सोचना कम एक्शन ज्यादा, कर्मयोगी बनने में बहुत बड़ा मजा है।
0: कर्मयोगी बनने में ही बहुत बड़ा मजा है और अगर कुछ करना है तो अभी करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि जो बात उर्मी जी ने अभी कही दोस्तों, कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं कुछ करूंगा, फिर तो उस काम में कुछ मजा ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं, कोई एडवेंचर ही नहीं। मजा तो तब है जब चीजें विपरीत परिस्थिति में खड़ी हैं और आप एक और बाकी परिस्थितियां दूसरी और आप सामना करके उसको निकलते हैं, उसमें मजा है, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो तैयार नहीं है, आप तैयार करते हैं उस मौके को। तो उर्मी जी के इस मैसेज के साथ अब उर्मी जी पे एक बहुत भारी प्रश्न, रैपिड फायर राउंड उर्मी जी आपके साथ खेलेंगे हम। आर यू रेडी?
1: ओके, लेकिन अगर मुझे कोई जवाब नहीं आएगा तो मैं बोलूंगी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप सारे जवाबों का सही जवाब देंगी, क्योंकि आपने उस समय भी उस व्यक्ति को सही जवाब दिया था कि अगर आपके बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखने के लिए करेंगे तो ये बच्चे भी यही करेंगे। मुझे लगता है आपकी हाजिर जवाबी आज भी आपको मदद जरूर करेगी। तो आपके लिए पहला सवाल, सेवा क्या है?
1: आत्मत्याग,
0: खुद का त्याग, सेवा, वेरी नाइस। इंसान क्या है?
1: बुद्धि।
0: इंसान की पूरी परिभाषा उसकी बुद्धि से झलकती है, वो क्या डिसीजंस बनाते हैं उस पे झलकता है, वेरी नाइस। शांति क्या है?
1: जो हम हर सांस से जो जीते हैं, और ये अपने अपने परिभाषा में शांति लिया।
0: सुख क्या है?
1: इल्यूजन।
0: कर्म क्या है?
1: जीवन।
0: जीवन क्या है?
1: कर्म।
0: वेरी नाइस। भारत क्या है?
1: प्रेम।
0: भारतीयता क्या है?
1: भारतीयता प्रेम, सद्भावना, सहनशीलता, सारा दुनिया को समेट लेना।
0: इसका मतलब हिंदी बोल पाना या कोई पर्टिकुलर भोजन पसंद करना या बस पासपोर्ट पे इंडियन लिखा होना, ये भारतीयता नहीं है। भारतीयता अर्थात प्रेम, सद्भावना, संवेदनशीलता, सहनशीलता, धीरज, इन गुणों का प्रदर्शन कर पाना अपने जीवन में, ये भारतीयता है। तो बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया आपने उर्मी जी। अगला सवाल, माँ कौन है?
1: माँ सबसे बड़ी माँ है धरती। अगर उसका सम्मान हम ना करें, उनका उनको कहीं भी किसी भी तरीके से उनका नुकसान पहुंचाए तो हम अपनी जो शारीरिक माँ है उनका भी नुकसान। माँ है ममता।
0: एक आदर्श नागरिक कौन है?
1: इस देश में आदर्श नागरिक है वो जो हम देश का जो परिचय बता रहे हैं, धीरजशील, सहनशील, जिसमें सद्भावना हो, जिसमें प्रेम की भाव हो, वो होगा आदर्श नागरिक, ऐसे वाले आदर्श नागरिक।
0: वेरी ट्रू। आखिरी सवाल, उर्मी कौन है?
1: नश्वर जीवन, 70 साल हो, 80 साल हो, लोगों में थोड़ा सा प्रेम बांटना और जो कर्म दिया जाएगा वो करने के लिए हिम्मत जुटा के चले।
0: तो हर वो व्यक्ति जो समझता है कि मैं चंद पल का मेहमान हूँ और इस चंद पलों में मुझे प्रेम बांटना है, मुझे जो कर्तव्य मिला है उसे निभाना है, वो व्यक्ति उर्मी है। तो उर्मी जी, आपकी परिभाषा में आपने अपने को परिभाषित किया, लेकिन आपने अपनी परिभाषा से देश को भी परिभाषित किया कि भारत भारत तब बनता है जब भारत में इस प्रकार के लोग रहते हैं जो भारत का परिचय अपने अंदर छिपे हुए गुणों के द्वारा, मूल्यों के द्वारा देते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े थे उर्मी बासु जी। उर्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी करें कम है। जो काम आज आप कर रहे हैं अपने पूरे संगठन के साथ, वो काम शायद कर पाना मेरे लिए या हम में से किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने आपको चुना और इसलिए हम सदा ही ये दुआ करेंगे कि आप ये सेवा और भी आगे करते रहें। अगर किसी भी तरीके से रेडियो मधुबन या हमारे श्रोता साथी आपके साथ जोड़ सके या आपको मदद कर सके, ये हमारा सौभाग्य होगा। और इसलिए फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, www.newlightindia.org में आप जाकर के बहुत कुछ जान सकते हैं किस प्रकार से आप इन्हें मदद कर सकते हैं। और जैसा कि उर्मी जी कह रहे थे कि जो भी अच्छा काम करना होता है उसके लिए मुहूर्त अब ही होता है। रुकिए नहीं, इंतजार नहीं कीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ भी अच्छा, जरूर आज कीजिए। बाकी मैं दोबारा आपके साथ आऊंगा आपके सामने एक और खास मेहमान को लेकर के, आपके इस बहुत खास कार्यक्रम में, यशस्वी भारत में। तब तक के लिए दोस्तों, 90.4 FM रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जैसा कि उर्मी जी ने कहा, प्रेम बांटते रहिए।
1: धन्यवाद शांतनु भाई,
0: थैंक यू सो मच।
1: के सारे श्रोताओं की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।
0: थैंक यू सो मच उर्मी जी।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो। चल,

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जिस रिश्ते में मैं हूँ, वो मैं खुद कर सकता हूँ। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जानी शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह कि अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट

0: सत्संग करते जाएंगे, उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सस्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सस्य शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता, साथ का भी रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहाँ हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देर इज़ नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहाँ ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करें तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज़ करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से लेट अस क्रिएट दैट पिक्चर इन आवर कॉन्शियस।
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने, जब तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग, बट इट मस्ट बी, मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: यू नो, कि मैं ठीक
1: हूं। दैट कुड बी द ओनली लॉजिक, अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर। और दूसरा, इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू। लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: So that's going to be a problem.
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। So that we will have to understand कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि somewhere it depends on which color specs I'm wearing. आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज़्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कंप्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत ईजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठ कर वर्क करके अपने परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive negative energy, and then I will stay in pain. And ये पूरा process मैंने create किया। अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा। Relationship means exchange of energy. तो हर step पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ। स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं, फिर भी एक विशेषता तो होगी। अच्छा, इफ यू आर फाइंडिंग समवन, होगा नहीं, लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है, तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माई कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: इनफैक्ट यस, मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: यस, एंड दैट्स व्हाई सेम दुनिया एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज अ बिग मेस.
0: एक्चुअली यस, यू नो अगर हम डीप में जाएं, जिसको बुराई देखने की आदत है, जो बुराई करता है वो सबकी ही बुराई कर रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता उन्हें.
1: तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे ही देखने का नजरिया. और इसीलिए परमात्मा ने आकर हमें कहा कि स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना, हम अपने एटीट्यूड को, अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग, वो वैसे के वैसे होते हैं, दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड, वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस, इट्स हियर. So it is very easy to look outside, little challenging to look inside, lekin solution yahi
0: is
1: par
0: inside hai. Yes,
1: to agar koi apne upar sachmuch mein kaam karke result pana chahta hai to usko fir kaam to wahi karna padega jahan kaam ho sakta hai. Aap opposite direction mein kaam kare, you work on the relationship there and fir aapko result nahi mile, fir aap aur frustrate hote jaye aur fir aap aur ek dusre se katte jaye. We are getting nowhere.
0: Actually, very true. You know, हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूँगी, और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ, मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलते भी हूँ सही, लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते अंदर. आप देखो, हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं,
0: ऊपर से मैं कुछ
1: उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं, क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या, कम्युनिकेशन. रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ, रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ, रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है, जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो, हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूँगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूँगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो डिफिकल्ट,
0: नो नो नो, यस एक्चुअली
1: सी,
0: हाँ,
1: जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस, एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफ कोर्स, अगर वेरी ट्रू, अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई देख के, मतलब इफ आई लुक लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू,
1: सो आई फील गुड. या आई फील गुड. नाउ इट इज पॉसिबल कि आई डोंट थिंक वेरी गुड अबाउट यू, इट इज पॉसिबल कि आई डोंट थिंक वेरी गुड अबाउट यू, या मेरा व्यवहार भी शायद आपके साथ उतना अच्छा नहीं है. फिर भी आपको कैसा फील करना है वो फिर भी आपके हाथ में है. So let's start just working on myself. Take the control back. I am going to keep the control in my hand. But अपने पर focus नहीं होगा तो ध्यान ज़्यादा क्या होगा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोलता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, and then I consume that energy. वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच,
0: और ये सब consume
1: करके वो अच्छे नहीं है. स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, वो अच्छे नहीं है. एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है,
0: मुझे, क्योंकि नहीं और होने लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट्स सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो उनके बारे में बुरा सोचूंगी.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन,
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते,
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स वाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ, फोकस अभी भी मैं ही था,
1: मैं ही था, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू. बट नाउ आई रियलाइज माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग appreciate करेंगे, दो लोग criticize भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे fluctuate होने वाली है, then मेरे हाथ में क्या है. लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि create हम करने वाले हैं, I can choose what to create and be very careful sara din. I am creating. Just that much awareness is needed sara din ki I am creating. To journey kaise ho jayegi? Very simple. The first point tha ki where does the relationship get created? Apni consciousness mein. Dusra point bahut jo important hai yaad rakhna, jo humne kai bar repeat kiya hai lekin wo fundamental hai, and that is who hurts who.
0: I hurt myself. ये तो एक पूरा एक स्टेटमेंट ऐसी है
1: ये, लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं,
0: आपने हर्ट किया,
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट्स हु, आई हर्ट माई सेल्फ. दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूँ, बिकॉज कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी.
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊँ कि नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दिस,
1: दैट्स ओके, दैट इज फाइन. लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है, फिजिकली कोई मुझे मार सकता है, लेकिन यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता. यहाँ ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. तो बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहाँ मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू, लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? आपको पता है, यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफ़ी लिस्ट होती है,
0: काफ़ी बड़ी होती है.
1: हाँ, और उस लिस्ट को हमने काफ़ी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टुडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, वॉट इज आई से, बट हु इज क्रिएटिंग द पेन? उन्होंने जो करना था सो किया. Right or wrong is not important right now. Important is dard phir bhi kaun create kar raha hai? Me. Kab tak? See, bahar aap jo kar rahe ho, aap kar rahe ho. But then you're not in my control. You know, you're not. Agar aaj aap mere saath property pe lad rahe ho, it's not in my control. Aaj aap mere business partner ban ke mera lakhon rupaye leke chale gaye, not in my control. Aaj aap ek husband and wife ke rishte mein aap rishta tod kar bahar kahin chale gaye, not in my control. Like in my pain,
0: it is in my control.
1: That's yeah. I am creating. So we are talking about self-management. Kyunki jahan self par manage kiya, to fir situation ko handle karna easy ho jayega. Abhi hum kehte hain situation itni badi thi, they caused me hurt. No, there is only one word there who causes pain to me. That's myself. They can do things jo unko karna hai. Wo mujhe chhod kar ja sakte hain, jo karna hai kar sakte hain. Lekin dard. फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मैनी पीपल विल से, लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया. किया, फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया?
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका ये हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया. यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया?
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. यस, वेरी ट्रू. यू नो,
1: इट्स ओके इफ आई एम इन पेन. Let me work एंड मैं उसको हील करूँगी, लेकिन मैं उसको हील तभी कर पाऊँगी जब आई रियलाइज कि ये दर्द मैं क्रिएट कर रही हूँ। हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते
0: कि
1: हैं,
0: मैंने उसी ने किया है,
1: उसने
0: हाँ।
1: किया तो वो आकर उसको ठीक
0: वो
1: करेगा
0: जिसने
1: ना।
0: दर्द दिया है वही दवा देगा कहते हैं ना हर बार।
1: सी,
0: यस
1: तो अब किसने दर्द दिया,
0: मैंने
1: हमें ही
0: किया।
1: दवा देनी है ना। दैट इज द पॉइंट। वी आर नॉट सेइंग कि हाँ दर्द होता है, कुछ
0: एंड यू
1: बात
0: नो
1: ऐसी होती
0: व्हाट हैपेंस, वी कीप ऑन वेटिंग दैट दैट पर्सन विल कम एंड अपोलोजाइज और थिंग्स लाइक दैट, एंड देन थिंग्स बट थिंग्स विल नेवर बिकम सेम इवन इफ दैट पर्सन कम्स और वो माफी मांग के मुझे हील करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या हील होंगे? मैंने वो जो वो पूरा टाइम गुजारा है, मैं उसको वो कह के मैं ना उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी।
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है, अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते
0: दर्द
1: में, दर्द ही है। तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए, हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माई लाइफ, एंड देन डिलीट डिलीट डिलीट
0: वाइप ऑफ कंप्लीटली एक्चुअली।
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ। वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे, मे बी नॉट इमीडिएटली,
0: बट आई थिंक दैट पर्सन
1: दैट
0: विल गो अवे।
1: पर्सन विल गो अवे, दैट इज फंडामेंटल। फर्स्ट लेट द पर्सन गो अवे, फिर तो पेन धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं क्रिएटर हूं तो मुझे फिनिश करना ईजी है, लेकिन आप क्रिएटर
0: तो
1: हैं।
0: फिर वो तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक, जब तक उसके साथ वैसा नहीं होगा तब तक नहीं। यू नो लाइक सो मेनी
1: दैट्स द
0: थिंग्स वी
1: थिंग।
0: हैव।
1: सो एक एक को लेते जाओ, सिचुएशन को रिवाइंड करना चाहते हो एक दिन के लिए कर लो, रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहाँ था। डिवोर्स बाहर था, दर्द यहाँ था। बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहाँ था। हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है। आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ,
0: बिकॉज
1: वी कैन
0: मैंने
1: क्राई राइट हियर।
0: यस या आई कैन ऑफ
1: सो
0: कोर्स
1: वेयर इज द पर्सन, वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, बट वी कैन क्राई राइट हियर।
0: बिकॉज यस यू नो समवेयर डीप विद इन आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट ही इज द ओनली वन हु कैन हील, शी इज द ओनली वन हु कैन कम चेंज द सिचुएशन और डू समथिंग।
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: कुछ
1: भी
0: भी नहीं और
1: नहीं
0: वो
1: है,
0: कभी भी नहीं आने वाला
1: या
0: वो।
1: एंड फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना
0: ओह यस,
1: बहुत ईजी हो
0: द
1: जाएगा।
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन, यू नो उसको
1: जस्ट
0: डिलीट
1: लेट
0: कर
1: गो,
0: दो।
1: बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर
0: अच्छा, और
1: रखा
0: वो
1: है,
0: सालों
1: क्यों?
0: पुराने होंगे, मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल
1: गेट ऑल द
0: रिमेम्बर
1: पीपल
0: लॉट
1: देयर।
0: ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच,
1: यस,
0: लेकिन वो उनकी इमेज है।
1: वो फिर भी
0: अच्छा
1: आपके घर में रहते हैं, लेकिन
0: हाँ,
1: यहाँ
0: घर पे रहते हैं और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे तब तक वो रहेंगे।
1: नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहे है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन, आई एम क्रिएटिंग द हर्ट, आई एम क्रिएटिंग द हर्ट। जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ़ आई गेट हील्ड, तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा,
0: हाँ बिल्कुल परफेक्ट।
1: एंड द
0: से
1: रिलेशनशिप
0: आपके
1: इज
0: साथ
1: एंडेड।
0: मुझे वो खत्म हो जाएगा ना, आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये
1: और
0: एक्सपेक्टेशन थी
1: आपके
0: कि
1: ऊपर जो ब्लेम था,
0: हाँ
1: पहली बात आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा, तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आई हैव टू ओनली फॉरगिव
0: माय
1: माई
0: सेल्फ
1: सेल्फ। एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन, मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ। सो सिमिलरली इफ आई सी यू इन पेन,
0: बिकॉज ऑफ मी।
1: या एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, तो मुझे स्टेबल रहना मेरे लिए आसान है, और उसके बाद अगर मैं स्टेबल रहूं तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा,
0: नॉर्मल स्टेबल।
1: नॉर्मल। सो एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू फॉल इन टू प्लेस, नॉट दैट इट विल गेट डन टूडे, बट इट बिकम्स ईजियर। ये करना संभव हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है, दूसरा जैसा है वैसा ही है, लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं, करने दो, लेकिन वो तो मुझे अब्यूज़ करते हैं, ये करते हैं, करने दो. व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगी दूसरी तरफ. लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता, फिर दूसरी साइड भी जाता, तो दर्द की फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ती जाती.
0: सो गुड. मैं बात करते करते ही आई कैन सी सो मेनी रिलेशनशिप्स बिकमिंग मच बेटर. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बाप बेटे का रिलेशनशिप, यू नो, कहीं एक जो एक कहा जाता था, एक चुप कर ले और दूसरा. It can
1: Absolutely.
0: happen. It happens.
1: And no one can hurt me. I met a brother and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी because कुछ हुआ था, past incident. And फिर वो प्रोग्राम के एंड पर आए और उन्होंने कहा कि my mother is in lot of pain and I am in lot of pain and अब मेरे फादर नहीं रहे and my mother is alone and you know whatever. I said आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते and you know everything will become okay. And he says नहीं, but आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया. ऐसे लेकिन उन्होंने जो किया सो किया, हम अब क्या कर रहे हैं. आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले आपको मिल रहा है, फिर आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा. वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द, वो दर्द औरों में भी जाता है. टू फिनिश दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम, गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड. ही डिड इट. After the program, he went there. Next day, he came for another program. See, it was very easy. Because it happens, it's very easy, but we take time. Lagta hai. That's okay. That is my journey. I can take my time.
0: Actually, jis din ye realize ho gaya ki wo karan hai hi nahi meri pain.
1: Main hu, aur wo mere haath mein hai. Ab mujhe kitni jaldi usko finish karna.
0: To theek hai. Fir main apni marzi se le raha hu. Mere ko 10 din chahiye. Mujhe 1 din chahiye. Mujhe 100 din chahiye. Mujhe 1 second chahiye.
1: Whatever. That's my choice. But at least the power
0: is in my hand now.
1: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूं तब ठीक कर सकती हूं. पहले आई वाज अ विक्टिम, तो मैं वेट कर रही थी और फिर मुझे सारे ही रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे. सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है.
0: मुझे
1: तो,
0: कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते
1: हैं. So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं. तो एक बार मैंने label लगा दिया, कनुप्रिया ऐसी है, लगा दिया अब आपके ऊपर label. अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस label के अंदर
0: एक-एक incident
1: baggage भरते जाती हूँ, भरते जाती. उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला,
0: देखा ये जस्टिफाई हुआ, yes. ये पुख्ता हो गई मेरी बात, ये लेबल ठीक हो गया.
1: हाँ, तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ. एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
0: भारी
1: होता जाएगा. एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेयर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज.
0: तो मुझे ले डूबेगा ना वो, भारी होगा कि मैं डूब जाऊँ.
1: यस एब्सोल्युटली. तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का, तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें. लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर. लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था. Is it possible कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूँ, उसको हल्का करूँ, क्योंकि वो निकालने से who is going to feel better?
0: I will feel better. Because
1: so this
0: me
1: is more about you know holding things about other people. तो if I keep holding those things, यहाँ बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा. तो बहुत ईजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे, यहाँ ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, स्टॉप, नो आई डोंट नीड दिस, दिस इज अननेसेसरी वेट, आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट. तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा?
0: लाइट.
1: आई विल फील वेरी वेरी लाइट. तो बैगेज जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो, इसको हल्का करो. एंड बैगेज इज ऑलवेज अबाउट अदर्स. जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहाँ तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है।
0: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है।
1: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा, 5 साल, 10 साल, 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया। वो तो वही है, तो वाई है, अब सफर किसको करना पड़ेगा? मी वाई जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
0: सो मच पैकेज। यस,
1: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है? हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट। नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है।
0: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो
1: सही है,
0: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
1: जजमेंटल।
0: हाँ वही, जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग, यू नो, कि जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज़ ही अच्छी नहीं है। यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस।
1: माई डिसलाइक एंड जजमेंट, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
0: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड।
1: इट्स बैड, या इट मे बी गुड फॉर देम।
0: इन फैक्ट इट्स अमेजिंग, यू नो, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाएं, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, 17 मई 1917, स्थान नासिक। गुलाम भारत को भीतर से जगाती हुई एक मजबूत आवाज जो कह रही थी, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है और वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीयों के मन में स्वराज के स्वप्न को बेहद स्पष्ट रूप से लिखने वाली ये प्रबल आवाज थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित रत्नागिरी के एक प्रबुद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे और माता तपस्विनी थीं। उनके बचपन का नाम केशव था, लेकिन प्यार से सब उन्हें बाल कहकर पुकारते। आगे चलकर उनका यही नाम प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही उनकी प्रखर बुद्धिमत्ता प्रकट हो चुकी थी। पिता ने संस्कृत पढ़ाई और गणित उनका प्रिय विषय था। कठिन से कठिन सवालों के उत्तर वे कागज पर न देकर जुबानी देते। इस तरह पढ़ाई आगे बढ़ती गई और आगे वकालत पढ़ते समय कॉलेज में गोपाल गणेश आगरकर नामक एक युवक से उनकी मित्रता हुई। केवल किताबी पढ़ाई ही नहीं, देश की स्थिति पर रात रात भर विचार करने में इन दोनों मित्रों का समय कटता था। देश की स्थिति में सुधारों के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर दोनों में घंटों वाद विवाद होता रहता। वे अनुभव करते थे कि देश की स्थिति में परिवर्तन लाना हो तो देश के लिए जीवन होम करने वाले लोग चाहिए। दोनों ने सरकारी नौकरी न कर देश सेवा की प्रतिज्ञा ली। आगरकर बहुत गरीब थे। उनकी माँ आस लगाए बैठी थी कि बेटे की शिक्षा पूरी होगी और वो नौकरी करने लगेगा। इधर तिलक जी के आत्मीय भी उन्हें वकील या न्यायाधीश के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन देश की दशा उनके भीतर एक बेचैनी लिखने लगी थी और दोनों ने आजीवन देश सेवा का संकल्प लिया।

युवा तिलक और आगरकर ने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज सुधार के लिए करने का निश्चय किया। पूना में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से उनकी पहचान हो गई। पूना में तिलक, चिपलूणकर और आगरकर तीनों ने पहले एक स्कूल और फिर एक कॉलेज शुरू किया। इससे शिक्षा को एक नई दिशा मिली। फिर उन्हें लगा कि लोक शिक्षण के लिए एक अखबार भी निकालना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा दो साप्ताहिक शुरू किए। इन दोनों पत्रों ने जनता की शिकायतें प्रकट करना शुरू की। इस तरह तिलक जी के सार्वजनिक जीवन का आरंभ हुआ। तिलक जी की कलम बहुत तेज थी। एक बार उन्होंने एक प्रकरण पर कड़ी आलोचना की, तब उन्हें और आगरकर को 101 दिन के कारावास की सजा मिली। कारावास के समय भी वो देश के संबंध में ही सोचा करते थे। तिलक जी केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि सारा राष्ट्र जाग उठे, ऐसा कुछ करना चाहिए। देश में हो रहे अत्याचारों को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इस बीच महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कुछ समय तक तिलक जी ने इस महान क्रांतिकारी की निगरानी में शस्त्राभ्यास किया, लेकिन वे समस्त देश को साथ लेकर चलने का मार्ग ढूंढ रहे थे। इसी समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। तिलक जी ने अपने पत्र में जनता की शिकायतों को स्थान दिया। कृषकों की ओर से आंदोलन शुरू कर लेख लिखे, अर्जियां भेजी। उन्होंने महाराष्ट्र के गांव-गांव में अपने युवा साथियों को भेजा और प्रचार करवाया कि ये कानून का राज है, डंडेशाही का नहीं। इस तरह इस आंदोलन से कृषक समाज तिलक जी के पीछे खड़ा हो गया। इस बीच महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल गई। अस्पतालों और शिविरों में व्याप्त अव्यवस्था और कुप्रबंध की तिलक जी ने कड़ी आलोचना की। गांव के गांव प्लेग के कारण उजड़ गए। प्लेग से ही उनके पुत्र की मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो गांव में ही डटे रहे, रोगियों की हालत देखा करते और केसरी में लेख लिखते। उनके तेवर और केसरी ने सरकार का ध्यान खींचा। असंतुष्ट जनता ने पूना में प्लेग के लिए नियुक्त रेंड नामक उन्मुक्त सरकारी अधिकारी की हत्या कर दी। तब पूना में पुलिस के अत्याचार प्रारंभ हुए। इन जुल्मों पर बहुत कड़ा लेख लिखते हुए तिलक जी ने पूछा कि सरकार का दिमाग ठिकाने तो है। इस प्रश्न उनके लेखों और पहले दिए भाषणों को आधार बनाकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने के निर्णय के साथ सन 1897 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2.5 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इस समय तक बहुत से युवक तिलक जी के अनुयायी बन चुके थे। भारत में तिलक जी की कीर्ति फैल चुकी थी। स्वराज के प्रति उनका आग्रह बहुत गहरा था, जिसने लोगों को भीतर तक छुआ। गांधी जी ने उन्हें याद करते हुए लिखा था कि स्वदेश के लिए वो जिस इच्छा शक्ति से काम लेते थे, वो बड़ी ही प्रबल थी। उनका जीवन वो ग्रंथ है जिसे खोलने की भी जरूरत नहीं, वो तो खुला हुआ ग्रंथ है। उनका खाना पीना, पहनावा बिल्कुल साधारण था। उनके कमरे में न तो किसी तरह का फर्नीचर होता था, न खास सजावट। अपरिचित व्यक्ति तो ख्याल भी नहीं कर सकता था कि वो किसी महान पुरुष का निवास स्थान है। तिलक जी की यही सादगी लोगों को बांध लेती। जब वो जेल से बाहर आए तो लोग बड़ी आशा से उनके नेतृत्व की ओर आंखें लगाए हुए थे। जेल से बाहर आते ही उन्होंने फिर से सरकारी नीति पर आलोचनात्मक लेख लिखे। इस तरह फिर से आंदोलन शुरू हुआ। वो जान चुके थे कि भीख मांगकर कुछ नहीं मिलेगा। ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना होगा। इस विचार से उन्होंने लोक संगठन का महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किया। देश धर्म के लिए प्रेम उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने सामूहिक गणेश उत्सव की संकल्पना की। इस तरह तिलक जी स्वदेश के स्वप्न को साकार करने का उद्देश्य लिए लोक सामर्थ्य की उपासना करने लगे।

इस समय लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे। 1905 में उन्होंने बंग भंग की घोषणा की। जनता उद्वेलित हो उठी। तिलक जी ने स्थिति पहचानी और जनता के असंतोष को स्वर देते हुए कहा कि बंगाल पर किया हुआ ये प्रहार सारे राष्ट्र पर प्रहार है। उनके तूफानी प्रचार से ब्रिटिश शासन हिल उठा और सन 1908 में दूसरी बार उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल काले पानी की सजा देते हुए बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की। 8 जून सन 1914 को वे रिहा हुए। सन 1916 में तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना कर एनी बेसेंट के साथ लोगों को आम भाषा में स्वराज के बारे में समझाया। होम रूल मूवमेंट ने देश भर में राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। स्वराज का प्रचार करने के लिए वो इंग्लैंड भी गए। इंग्लैंड से वापस आने पर भारत में स्वराज के वकील के तौर पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ये उनकी लोकप्रियता का सर्वोच्च शिखर था। लगातार यात्राओं से उनका शरीर थक चुका था, स्वास्थ्य गिर रहा था। 1 जुलाई को वे ज्वरग्रस्त हुए। उस समय भी उन पर मुकदमा चल रहा था, उसे उन्होंने जीता, लेकिन उनका स्वास्थ्य हारता जा रहा था और 1 अगस्त सन 1920 को उनका देहावसान हो गया। उन्होंने लोगों से प्रेम किया, उनके लिए त्याग किया, कारावास सहा, लोगों को एकत्र कर लड़ना सिखाया और दिलों में स्वराज का स्वप्न बोकर अपनी संपूर्ण बुद्धि शक्ति स्वदेश को अर्पित करते हुए दुनिया से विदा हुए। और एक अनुगूंज हर हृदय से टकराती रही, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने की कला हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं इस श्रृंखला में। आज बात करते हैं खाने की। आजकल एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं कि यू आर वॉट यू ईट, आप वो हैं जो आप खा रहे होते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप उस पर ध्यान दें जो आप खा रहे हैं, या ये देखें कि आपको क्या खा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। आज इस पर बात करेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात खाने की करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स लिए, लेकिन आजकल जो बहुत फोकस भी किया जाता है कि खा क्या रहे हैं और खाने को कैसा, और इस कारण काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या जो हम खा रहे हैं पूरे दिन में खाते हैं, उसका हमारी डाइट का, हमारे खाने का, हमारे थॉट्स पर, हमारी बॉडी पर तो पड़ता है सर, हमारे मन पर भी पड़ता है?
1: नहीं, डेफिनेटली मन पर उसकी इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि जो खाते हो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस भी है। दो प्रकार के वाइब्रेशन, एक तो खाने में जो उस चीज में वाइब्रेशंस है वह भी है, और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो भोजन बनाया है उसके भी वाइब्रेशन उसमें है। तो दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस आप ले रहे हो, अगर वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, जैसे खाने में लो एनर्जी है, तो आपको भी वह जो रियल एनर्जी है वह नहीं मिलेगी, बल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। और दूसरा जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसने अगर निराशा में खाना बनाया है ना, ईर्ष्या में खाना बनाया है, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस आपको भी मिलेगी और आप पर भी उसकी इफेक्ट होगी।
0: हम बनाने वाले को नहीं रोक पाते हैं कई बार। अब इस पर वाइब्रेशंस की जहाँ बात आती है, सर शिवानी, रियली नीड टू नो कि खाने पीने की चीज़ें जो मेरी बॉडी के साथ थी, यू नो, बॉडी को ताकत दे रही थी, या वो सारे विटामिन्स जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ तक सीमित थी, अब वो मेरे माइंड को कैसे हैंडल, मतलब कैसे अफेक्ट कर रही है?
2: हम सब के जीवन में ये अनुभव है और हम सब ने इस डिफरेंस को देखा है कि आप एक पर्टिकुलर मील को लें, वही दाल रोटी सब्जी आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाएं, वही पर्टिकुलर मील आप घर में लेकिन एक माँ के हाथ से बना हुआ खाएं, और वही पर्टिकुलर मील आप किसी बहन के हाथ से खाएं जिसको आपने हायर किया हुआ, जो आपके घर में आती है, खाना बनाती है, लेकिन काम के लिए, पैसे के लिए वो खाना बनाती है, और वही खाना आप मंदिर या गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में खाएं। चारों में जो आपको भावना है, जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो डिफरेंट महसूस होगी, क्योंकि चारों को बनाते समय जो भावना है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है, इट्स फॉर प्रॉफिट। आप जितना खाएंगे, जितनी बार लेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। दे आर सर्विंग यू विद दैट इंटेंशन। मदर जो खाना बना रही है, इट्स फुल ऑफ लव, अटैचमेंट। जो मेड जो आपके घर काम करती है, वो खाना बना रही है, आप उसको बोल दो एक चपाती और खानी है, तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलनी है, अभी एक और खानी है इन्होंने, क्योंकि उसको पैसे तो उतने ही मिलने हैं। सी, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है अगर आप और लोगे, लेकिन उसकी काम करना उसको ज़्यादा पड़ रहा है। शी डजंट लाइक दैट एनर्जी, हर एनर्जी इज डिफरेंट। और इसी को आप गुरुद्वारे मंदिर में खाएं तो भावना ही अलग है कि भगवान के कार्य के लिए ये भोग बन रहा है, भगवान के बच्चे आकर ये खाना खाएंगे। चारों में फीलिंग एकदम डिफरेंट आती है, ओनली बिकॉज कॉन्शियसनेस ऑफ द वन हु वाज कुकिंग इज डिफरेंट इन ऑल फोर केसेस।
0: व्हाट वी फेल्ट, मतलब अभी तक जो ये था कि शायद हमारी भी तो भावना,
2: वो तो है,
0: हम अगर मंदिर जाते हैं
2: भावना, लेकिन बनाने वाले की भी भावना। देखो, दो काम हो रहे हैं ना, बनाने वाले की भावना खाने के साथ, और फिर स्वीकार करने की भावना खाना खाते टाइम, बोथ आर वर्किंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, द वन हु इज कुकिंग एंड देन आफ्टर दैट द वन हु इज ईटिंग। ये भी नहीं कि सिर्फ जो खाना बना रहा है उसने ध्यान दिया, जब हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना। दोनों में बहुत अंतर, मतलब दोनों में वी विल फाइंड दैट द राइट कॉन्शियसनेस विल गिव द राइट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी।
1: कई बार आप देखेंगे कि खाने वाले को पता ही नहीं है कि कहाँ बनाया गया है, कि ये प्रसाद है या घर से आया है या होटल से आया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सही स्टेट ऑफ माइंड में होगा तो कैच कर लेगा। मैंने स्वयं देखा है कि जब हम बहुत जगह पर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, कईयों के घर में भी रहते हैं, कई बार सेंटर्स पर रहते हैं, तो बल बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां जाते लगता है कि यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है।
2: क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद कई बार खाना खाते खाते पता चल जाता है कि हैवीनेस है, नॉट द फूड इज हैवी बट द एनर्जी, द फील के जिसने ये खाना बनाया है, देयर सम हैवीनेस अबाउट द फूड। और किसी के हाथ का भोजन खाते हुए आपको लगेगा ये बहुत प्यार से बनाया हुआ भोजन है, बहुत इमिडिएटली पता चलता है भोजन स्वीकार। टेस्टी की बात नहीं है, कौन सा खाना ज्यादा टेस्टी ना, वो बातें नहीं है, इट्स द फील दैट यू विल गेट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फूड।
1: और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ये सभी नहीं कैच कर पाएंगे। आमतौर पर जो लगा जाता है टेंशन में जी रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट है,
0: हम खा भी किस थॉट में रहे हैं, सी हमारे पास मतलब कभी ड्राइव करते हुए खा रहे हैं, कभी गुस्से में खा रहे हैं, कभी पढ़ते हुए खा रहे हैं, कुछ लिखते हुए, मुझे याद टेलीविजन देखते हुए, मुझे याद ही नहीं पड़ता कि नॉर्मल खाने के ऊपर फोकस करके खाया गया हो। लेकिन ये कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है डॉक्टर साहब जो बताती है कि जिस भाव से खाना बनाया गया है या खाया जा रहा है उसका आपके थॉट्स पर या आपकी बॉडी पर जो खाने का अपना प्रभाव है उससे फर्क पड़ता है?
1: एक तो जो रिसर्च हुई, इस प्रकार की रिसर्च हुई है कि थॉट्स का प्रभाव खाने पर क्या होता है, प्लांट्स पर इसकी रिसर्च की गई कि एक प्रकार के सब प्लांट्स लिए गए, जो जमीन थी वह भी एक प्रकार की थी, पानी भी एक जैसा ही उनको दिया गया। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ जो पानी देने वाला है वो प्लांट्स पर, वह व्यक्ति डिफरेंट थे। कि कुछ तो क्रिमिनल्स को वह पानी वाटर करने के लिए दिया गया, दूसरा नॉर्मल लोगों को दिया गया, और तीसरा जो लोग बहुत भावुक थे ऐसे लोगों को वह प्लांट्स को वाटर करने के लिए पानी दिया गया। और फिर जब 4 मास के बाद उन्होंने देखा तो क्रिमिनल्स ने जिन प्लांट्स को पानी दिया था उनकी ग्रोथ सबसे कम थी। जो लोग भावुक थे, इमोशनल थे, उन्होंने जो वाटरिंग किया था उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, जो नॉर्मल थी वो बीच में थी। और उसका कंक्लूजन ये निकाला क्योंकि जो भावुक थे उन्होंने भावना से यहाँ तक पूछा भी कि ये क्या हमें करना है, क्यों कर आप प्रयोग कर रहे हैं, और बड़ी भावना से प्यार से पानी दिया, इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि भी सचमुच जो हम अगर प्लांट्स पर हमारे थॉट्स की इफेक्ट हो रही है तो खाने की इफेक्ट होगी होगी।
0: ओके, तो मतलब अननोइंगली हम जब खाना बना रहे, इवन आज मदर्स को भी अगर आप देखते हैं तो कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं वो मदर्स।
2: यस, दैट्स व्हाट कॉन्शियसनेस व्हाइल कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो ध्यान रखते कि अगर राइट कॉन्शियसनेस नहीं है तो अभी भोजन नहीं बना, बिकॉज मोर देन गुड यू विल डू डैमेज। हम सिर्फ फिजिकल पर आज दिन तक ध्यान दे रहे थे ना कि खाना
0: रोते हुए बना रहे होते हैं,
2: परेशान, कभी गुस्सा, कभी थके हुए, यू नो यू डोंट वांट टू कुक बट यू आर कुकिंग, तो इट्स अ वेरी यू नो अच्छी फीलिंग नहीं। और कई बार ये थॉट आती कब खत्म हो, जल्दी करूँ मैं जाऊँ उधर, दैट्स नॉट द राइट एनर्जी वी आर गिविंग टू द फूड। तो जो भोजन वो खाएगा उसको भी वांटेड नहीं फील होगा, बिकॉज जो दे रहा है उसने कैसी फीलिंग से दिया, जल्दी करो, खत्म करो, बस खाओ, मेरा हो जाए काम, नॉट द राइट कॉन्शियसनेस फॉर द फूड। इवन जैसे भाई साहब ने कहा गार्डन, कोई गार्डन में है जो उधर का मालिक है वो खुद उस गार्डन को पानी देता है, आप देखो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है अपने पौधों के साथ। एंड कोई है जिसने माली है, जो गार्डनर है, बस वो आ रहा है 15 मिनट पानी दे के चला जा रहा है, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द गार्डन। आप माउंट आबू आए जहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ बहुत मेडिटेशन होती है, ओवरऑल एनर्जी ही डिफरेंट है, और आप वहाँ के आकर गार्डन देखें, जो जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, न्यू पीपल कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी कहते हैं यहाँ के गार्डन में कुछ अलग बात है। बिल्कुल, वो लॉजिकली नहीं मालूम है कि वो अलग बात क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन नेचर। तो ये तो बहुत सारा, अगर आप सिर्फ अवेयर होकर चलोगे ना, आपको ये सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आप एक प्लांट को, लोग घर में कई लोग ये करते हैं कि अपने प्लांट्स को बहुत प्यार से वाटर करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कई बार, यू नो यू विल सी द ग्रोथ। एंड कोई है जो निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, you will see how the growth is. तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंट हो रही है ना दोनों की, अब इसी को हम कंज्यूम कर रहे, चाहे वो ग्रो करते टाइम, चाहे वो कुक करते टाइम, बात तो एक ही हो गई ना सारे।
1: ग्रोथ पर इफेक्ट हो रही है तो कुकिंग की भी इफेक्ट होगी।
0: और वो खाना बना और वो हमने खाया। ओके,
1: और ये जो बात शिवानी बहन ने बताई मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व की थी। आज तो माउंट आबू में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन पहले पांडव भवन बहुत छोटा सा होता था, वो ओम शांति भवन भी नहीं था, तो वहाँ पर हम बम्बई से कुछ भाई बहनों को ले जाते थे, वहाँ तब भी योग शिविर चलती थी छोटे छोटे रूप में 50-100 लोगों के लिए, और तब बम्बई से बस लेकर के जाते थे। और जब वहाँ जो जा रहे हैं लोग, साधक को तो पता था कि हम कोई आश्रम में जा रहे, लेकिन वो ड्राइवर को पता नहीं होता था, वो तो हमने बस हायर की है। लेकिन जैसे वो पांडव भवन में पहुंचते थे, ड्राइवर भी कहते अरे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो यही सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं, वह भी उसे कैच कर पाता है कि यहाँ के वाइब्रेशन कितने अच्छे हैं।
0: तो ये बात तो रही कि अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका हमारे मन पर, मन से फिर थॉट्स पर।
2: सी ऑलवेज वी बीन टॉकिंग कि थॉट्स एनर्जी है, वाइब्रेशन है, मैं जो थॉट क्रिएट करूँगी वो आपके लिए जाएगा। अब ऐसे ही मैं वो थॉट क्रिएट किया, आपको गया। अब मैं वो थॉट क्रिएट किया जब मैं खाना बना रही हूँ, एनर्जी तो है, फूड इज ऑल्सो एनर्जी, तो वो थॉट्स, वो एनर्जी खाने के साथ है। अब मैं आपको डायरेक्टली थॉट्स नहीं दे रही, लेकिन खाने, आई एम सर्विंग इट टू यू ऑन अ प्लेटर एक्चुअली। मैं अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को आपको प्लेट में बहुत सुंदर तरह से सजा कर दे रही हूँ। मैं अपनी ग्रीड को, इफ आई एम डूइंग इट फॉर अ कमर्शियल प्रोसेस, इसीलिए एक्चुअली कहा जाता है प्रॉफिट के लिए जहाँ खाना बन रहा हो तो कभी खाना नहीं खाना चाहिए, नेवर, बिकॉज उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो नेवर, इट शुड बी वेर इट्स बींग कुक्ड विद लव, एंड यू नो आपको खिलाना चाहते हैं, ना कि आपसे कुछ कमाना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट।
0: एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक जाएं, कि खाना जो है दैट इज मैटर,
2: नो, फूड इज एनर्जी ना, लिविंग लिविंग
0: लिविंग
2: लिविंग थिंग है ना, प्लांट इज अ लिविंग थिंग। मैटर पे भी तो माइंड का असर होता है।
1: इवन एनर्जी लेवल को मेजर भी किया गया है, और उसमें देखा गया कि भी फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, सेकेंड इज स्प्राउट्स, थर्ड इज वेजिटेबल्स, एंड फोर्थ इज रोटी चपाती दाल, उसमें काफी लो है।
2: कुक्ड में भी, अब इसमें वेजिटेबल्स में भी, आप फर्स्ट डे देखो जब वो फ्रेश है, फिर आप उनको देखो 2 दिन बाद, फिर आप उनको देखो 4 दिन बाद, उसमें भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है।
0: ओके, तो एनर्जी इन व्हाट सेंस, जो डिफरेंट विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब एनर्जी
1: है, इट्स अ सूक्ष्म एनर्जी जो वास्तव में ऑरा के रूप में है, वो फ्रूट्स में, स्प्राउट्स में मैक्सिमम है।
0: तो ये जो एस्पेक्ट पर हमने एक्चुअली, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हमने खाना कैसे खाना चाहिए, कैसा खाना हो, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हो, कितना प्रोटीन्स हो, उस पर तो पूरा फोकस किया है। अगर हम इस पर फोकस कर पाते हैं, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट।
2: नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट अवेयरनेस चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने माइंड पर अटेंशन रखना चाहती हूँ तो मुझे हर तरफ से अटेंशन रखना पड़ेगा ना। आई कान डू दिस कि मैं अपना ध्यान रखूँ, मेरे को शांत रहना है, पीसफुल रहना है, फिर मैं जाकर गुस्से को कंज्यूम कर लूँ। एक कुछ डिश खाई और गुस्से की वाइब्रेशन कंज्यूम कर ली, तो मैंने जितनी मेहनत की थी उस पर फिर ये डैमेज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अटेंशन रखूँ, वर्क करूँ, फिर कोई और एनर्जी कंज्यूम कर लूँ, फिर कहूँ पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अभी लंच में क्या खाया था, लंच में किसी का स्ट्रेस भी कंज्यूम किया था, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। पर मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही आज, लेकिन कंज्यूम क्या किया था, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम के चिंतन को मैंने अपने लंच के साथ कंज्यूम कर लिया था, इसीलिए नाउ दैट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई थिंकिंग ऑल्सो। I wouldn't know the exact thought, कि आपकी thought क्या चल रही है, वो मेरी thought हो जाएगी, वो नहीं, लेकिन the quality of the energy will be that. आजकल जैसे Kirlian photography करके एक technique है, जिसमें आप जब photo खींचते हैं तो आपको body की पूरी energy level दिखाई देती है, तो उसमें सिर्फ shape वही होती है, बाकी colors होते हैं depending on the energy. वही Kirlian photography आप food और fruit और cooked food के samples की भी कर सकते हैं, और उसमें clear नज़र क्या आता है, आप non-veg फूड है उसकी फोटोग्राफ लें, आप फ्रेश फ्रूट है उसकी फोटोग्राफ लें, आप उसी फ्रूट को 4 दिन बाद लें उसकी फोटोग्राफ लें, क्लियर के जो नॉन वेज फूड है उसकी जो एनर्जी फील्ड आएगी, इट विल बी वेरी डार्क इन कलर, डार्क ब्लू ग्रे, दैट साइड। फ्रेश फ्रूट है लाइटर, मतलब प्योरिटी है, वही फ्रूट स्टेल हो गया, डार्कर साइड, तो इससे क्लियर दिखाई देता है दिस इज एनर्जी जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, थोड़े साल पहले जब इट वाज अ डीप कोर बिलीफ सिस्टम कि जैसा अन्न वैसा मन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय सब कहते थे ये कि जैसा अन्न वैसा मन। आज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी से बात करो, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट के बाहर से खरीद कर खाना खाया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर, दिस इज ऑल इन द लास्ट 50-60 ईयर्स, क्योंकि उस पर बहुत ध्यान रखा जाता था कि खाना कौन बना रहा है और किस स्थिति में बना रहा है। सो दैट एनर्जी फील, अब वो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है जो हमारी संस्कृति में पहले बताया जा रहा था। टुडे वी आर साइंटिफिकली गेटिंग द प्रूफ ऑफ दैट।
1: इनफैक्ट पानी के लिए भी जैसे बताते हैं ना, भी पहले के जमाने मेरे दादा ये कहानी सुनाते थे कि भी एक व्यक्ति जा रहा था तो उसने कहीं से पानी पिया, तो नॉर्मल विचार है, आगे गए दूसरे कुएं से पिया तो चोरी करने के विचार है। उसको लगा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। तो किसको पूछा कि भी कुआ किसने बनाया, तो उसने सचमुच कहा कि एक चोर था, उसमें फिर चेंजेस भले आए लेकिन उसने ये कुआ बनाया है। तो कहते हैं उससे, हाँ मैंने इससे पानी पिया तो शायद मेरे मन में इस प्रकार के विचार आने लगे। और आज तो देखो ना, वो रिसर्च भी जो जापान के साइंटिस्ट की रिसर्च, कईयों को इसके बारे में पता है कि वाटर के क्रिस्टल्स बना दिए गए और बस उस पर फर्क इतना ही था कि सिर्फ नाम अलग लिखा था कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बॉटल पर लिखा कि मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ, एक बॉटल पर मदर टेरेसा लिखा, एक पर हिटलर लिखा, और फिर उसके क्रिस्टल बना करके जैसे MRI करते, इसे स्पेशल उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी MRI की गई, तो देखा कि भाई जिस पर लिखा था आई हेट यू, वहाँ वाइब्रेशंस दूर दूर जा रहे हैं, वो नजीक क्रिस्टल्स नजदीक में
2: क्रिस्टल बना ही नहीं ना, क्रिस्टल बनता ही नहीं है, एंड जो पीसफुल वाइब्रेशंस के एकदम क्लियर डिफाइंड शार्प क्रिस्टल्स बने हैं।
1: योनी भी बहुत अच्छा उसका एक इंटरप्रेट, हिटलर लिखा था उसमें वह अणु नजदीक आ नहीं, कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने यह कहा कि भले हिटलर बहुत खराब व्यक्ति था लेकिन कहते कोर जो उनका है ना अच्छा है, जो ब्रह्मा कुमारीज में मानते हैं कि भी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी वो अच्छी है, भले एक्वायर्ड कुछ भी हो, तो ओरिजिनली वो अच्छा व्यक्ति था पर उसने बहुत बुरे काम किए। तो इस प्रकार से वाइब्रेशंस की क्रिस्टल्स पर कितने इफेक्ट होते हैं।
0: तो मतलब सिर्फ ये कहने से, सिर्फ ये लिख देने से ही, या जो भी आपने वाइब्रेशंस दिए, पानी अगर ऐसा क्रिएट कर रहा है, तो हम जो खा रहे हैं, इनफैक्ट मैं बात नॉन वेजिटेरियन फूड की हुई, ये भी आजकल एक बहुत ज़्यादा इस पर बात करते हैं लोग। सी इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वेजिटेरियन बने, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का सबको पता चलता जा रहा है कि कितना भी अपने आप को हम समझाते हैं कि प्रोटीन लेवल चाहिए, बच्चों को देना चाहिए क्योंकि उससे जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो ठीक मिलती है ग्रोइंग एज में, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू नो, व्हाई वेजिटेरियन फूड इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियन फूड?
1: कई दृष्टि से अगर आप देखो, जैसे भी आपने बताया ना प्रोटीन की बात भी, इनफैक्ट दालों में जो प्रोटीन है वो एक से बहुत अच्छा है। सोयाबीन प्रोटीन इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। वास्तव में मिथ है कि भी नॉन वेज में ज़्यादा प्रोटीन है, तो एक तो ये बात बल प्रोटीन की। साथ साथ में अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स को देखें कि आज जो सबसे जो नंबर वन किलर इज व्हाट, क्या है नंबर वन, हार्ट डिजीज। और हार्ट डिजीज क्यों हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो आज नॉन वेज में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और भी सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है कि जो सीधा जाके हार्ट की धमनियों में चिपकता है। तो इसके कारण ये एक सिंगल रीजन से भी हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। और एक सूक्ष्म बात की जो आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं कि जब प्राणी को मारा जाता है ना, आपके पीछे कोई गन लेके भागे तो क्या होगा, एक्सट्रीम फियर निर्माण होगा और उससे फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स निर्माण होते।
0: अच्छा,
1: एड्रेनालिन,
0: क्योंकि वो सारा वो होगा ना, अब वो कौन सा सिंपैथेटिक,
1: हाँ सिंपैथेटिक
0: नर्वस सिस्टम जो है जी, तो वो जानवरों में भी वैसे ही होता है।
2: एंड लास्ट ना उस टाइम आपने मार दिया, सिर्फ गन लेके भी नहीं, हम तो खींच के वो स्लॉटर हाउस में लेकर जा रहे हैं,
1: उनको पता भी मारने वाले, बांध के रखा, केमिकल्स चल रहे हैं,
2: टॉक्सिक थॉट्स। और जो गिरीश भाई ने बताया वो सारे केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं,
1: कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन हाई लेवल में रिलीज होता है, और वह जब आप मांस को पकाते हो तब भी वह खत्म नहीं होता।
0: अच्छा, तो वो रिटेन,
1: इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ये जो केमिकल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो आप उसको खा रहे हो, नहीं सोचो
0: एक्सट्रीम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि ये खाते हैं तो उनका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है?
1: प्रोडक्शन उसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि ऐसे तो खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल इफेक्ट आपके बॉडी पर भी होगी.
0: लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स विल
1: इंक्रीज एंड नो देन दैट हार्मफुल इफेक्ट विल इंक्रीज
2: एंड एनर्जी भी कौन सी कंज्यूम की, फियर और एंजाइटी की. तो अब आप डिसाइड करो, आप बोल रहे हो ना छोड़ने में मुश्किल लगता, तो प्रोटीन्स है, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज प्रोटीन्स प्लस फियर एंड एंजाइटी.
0: And then so many harmful.
2: Now do I want to eat? This is that non-veg dish. It is proteins plus fear and anxiety. And yahan hamara dal, paneer, sprouts. This is proteins minus fear and anxiety. Now choose. It's open. You know, everyone has the right to choose. Lekin ek bar aapne choice ki hai ki main fear aur anxiety ko aur ye sab hormones ko consume karne wala hu. फिर नहीं अपने आप को कहें कि मैं क्यों परेशान रहता हूँ, मुझे क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, मैंने कंज्यूम किया है उसको और मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एवरी डे, तो क्यों नहीं आएगा. बचना चाहता हूँ कोई बात नहीं, फिर छोड़ू. ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट तो करके देखें ना. हर रोज वही कंज्यूम कर रहे हैं, फिजिकली भी डैमेज, यू नो, फियर कंज्यूम करना, हम किसी के फियर को कंज्यूम कर रहे हैं. व्हाट मस्ट बी द लेवल ऑफ फियर व्हेन समवन इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड. You just have to think कि मेरे अंदर किस तरह की thoughts चलेंगे if I was going to be slaughtered just now. That is what I'm consuming.
0: तो वो जो actually अगर हम देखें भी कि कोई डरा हुआ या गुस्से में होता है व्यक्ति या घबराहट में होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम उसकी घबराहट का हिस्सा बनते
1: हैं.
2: आपको फील नहीं होता क्या?
0: You know, एकदम से डर भाई, अगर आप फियर के माहौल में हैं, आपको खुद फियर हो, you start getting afraid, you know.
1: एग्जाम में होता है ना, एग्जाम सबने, एक बच्चा डरा हुआ है सारे डर जाते हैं. और देखो दो इम्पोर्टेंट रीजन है, एक तो कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, क्या उसमें डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई कहे भी सस्ता मिल जाए, खराब भी हो जाएगी. तो ऐसे ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी गाड़ी है वो किसके लिए बनी है, नॉन वेज के लिए बनी है या वेजिटेरियन डाइट के लिए बनी है. और अगर आप एनिमल किंगडम में देखो, ह्यूमन बींग तो सबसे एडॉप्ट हो गए, एनिमल किंगडम में वेजिटेरियन एनिमल भी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है. अगर आप देखेंगे कि जो वेजिटेरियन एनिमल है उनकी पूरी सिस्टम
0: हर्बीवोरस
1: और हमारी सिस्टम, हाँ हर्बीवोरस एनिमल, वो एग्जैक्टली सेम है.
0: अच्छा,
1: देखिए वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उनके कनाइंस जो है वो बहुत बड़े नहीं है, चीर फाड़ करने के बड़े दांत नहीं है, हमारे भी कनाइंस बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं. ऐसे जो मुंह में सलाइवा होता है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल का हाईली एसिडिक है, हमारा सलाइवा है वो अल्कलाइन है. हमारे स्टमक में भी जो एसिड है वो बहुत कम है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल के स्टमक में बहुत मात्रा में एसिड होता है. ऐसे एक मेन डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो कितने बड़े हैं पता है ना, अवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर 22 feet लॉन्ग, वो कॉइल के रूप में पेट में पड़े हैं. जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सिर्फ 6 feet लंबे. क्योंकि पहले से कुदरत को पता था कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल इसमें फाइबर नहीं होना है तो वह धीरे धीरे पास होगा, तो इसके लिए वो 6 feet के बनाए. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बनाए 22 feet के, क्योंकि पता था कि बहुत सारा फाइबर कंज्यूम करेगा, वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करेगा तो वह फिर स्लोली जाएगा और उसको 24 घंटे लगेंगे बाहर आने में. और भी कुछ अगर हम चीज़ें देखें कि बाइल का प्रोडक्शन, लीवर जो बाइल सिक्रिट करता है, हमारे में बाइल की मात्रा कम है क्योंकि हम फैट कम कंज्यूम करने वाले हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज़्यादा फैट है, तो इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है उनका बाइल का भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मात्रा में बाइल को चाहिए. तो ये सारी सिस्टम को ही देखो, हमारी सिस्टम वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह है. और दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है ना वो जीभ से पानी पीते हैं.
0: अच्छा.
1: हम जीभ से, हम तो मुंह से पीते हैं, वेजिटेरियन एनिमल ही मुंह से पानी पीते हैं. और भी एक डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, अब एक कुत्ते को देखना से करेगा जब उसको टेम्परेचर को डाउन लाना है, लेकिन हमारे में वो सिस्टम ही है कि ऑटोमेटिक हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है. दैट इज देयर ओनली इन वेजिटेरियन एनिमल्स. तो आवर होल सिस्टम इज सच, उसको भी कोई समझ ले तो चेंज हो जाए.
0: इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह की आज हमने वही बार बार हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस, कि पता चला है, क्योंकि अभी तक शायद सब बोलते थे कि वेजिटेरियन होना चाहिए या खाना जो है वो सही, और जैसा कि अन्न का मन पर असर है, सुनते आए थे, समझ नहीं पा रहे थे और ये सोचते थे कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। सी, हम खाना बना नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे इंक्लिनेशन नहीं है, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे को इतना फर्क डाल रहा है। अच्छा खाना खाने को, जो हेल्दी सपोजिटली खाना है, उसके ऊपर हमने फोकस शुरू किया अगेन, बिकॉज हमें लगा कि वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जब हम थॉट बार बार हम कह रहे हैं सोच समझ के सोचना है, अगर उस पर ये सारी चीज़ें इतना असर डाल रही हैं, थैंक यू सो मच। सल्यूशन हमारे सामने है, आज अवेयरनेस है, आज ज्ञान है, आज समझ में आ रहा है कि अभी तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हम खा क्या रहे हैं। हमने बहुत बार सोचा कि राइट डाइट, उतना विटामिन्स खाने हैं, उतने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, बच्चों के लिए भी हम फिक्स कर रहे थे, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर इस पर फोकस करना है तो खाना बनाते वक्त और खाते वक्त हम क्या सोच रहे हैं, उसका हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ रहा है। और ख़ासकर अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच की कश्मकश थी, आज समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और जैसा कि शुरू में कहा था कि हम क्या खा रहे हैं उससे हम बनते हैं, या हमें क्या खा रहा है हमें ये भी सोचना है। तो बॉल हमारे कोर्ट में है, हमने देखना है कि कैसे आगे खेलेंगे। कोई बात मन में है, कोई विचार है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आंतरिक दिव्यता का आह्वान, आंतरिक दिव्यता का आह्वान।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। वो संस्कारों की बात चल रही थी और कैसे कैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मैंने विजय भी पाई और फिर कहीं कहीं ये भी हुआ। संस्कार की जो आपने सॉल्यूशन की बात कही कि कैसे किसी को सोल पहले देखना है, मैंने ट्राई किया कि भाई ये भी सोल है और इस सोल के पास संस्कार हैं, प्रेजेंट संस्कार हैं, और ये अपने संस्कारों के थ्रू ये बोलेगा। तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी से जो मैं हूं और जिस रास्ते में पाथ से मैं क्यों हटूं। और इसको अभी थोड़ा सा ना जो वर्ड टॉलरेंट और टॉलरेंस वो थोड़ा मेरा कम हो गया, क्योंकि ये अभी इसमें टॉलरेंस क्या करना है।
2: See, पहले दिस इज द लाइन, इसमें टॉलरेट क्या करना है। वो जो सत्य है वो सत्य है, टॉलरेट क्या करना है। दिस सी द रियलाइजेशन।
1: अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मीनिंग ऑफ टॉलरेंस बदल गया है।
2: ब्यूटिफुल। अब मीनिंग ऑफ टॉलरेंस क्या है।
1: पहले टॉलरेंस एक बोझ था, एक मजबूरी थी, अब मेरे को टॉलरेट क्या करना है। जब एक कौवा का का कर रहे हो तो तुम टॉलरेट कर रहे हो।
2: दिस विल मेक लाइफ सो सिंपल। एंड दूसरा व्यक्ति ऐसा है उसमें भी फीलिंग जो है, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव फीलिंग।
1: यहाँ थोड़ी दुआ देने की प्रॉब्लम आ रही है।
2: कोई बात नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप।
1: हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करने का मन करता है।
2: स्टेप बाय स्टेप जब हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, दिस कैन बी विद अ नेगेटिव फ्लेवर ऑल्सो। ये व्यक्ति ऐसा है नहीं, फिर वाइब्रेशन कौन सी चली जाएगी,
1: नेगेटिव।
2: और यहाँ नेगेटिव थॉट वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी, वहां भी चली जाएगी। माई एवरी थॉट हैज टू बी प्योर। ये व्यक्ति ऐसा है मीनिंग इस आत्मा ने कभी न कभी किसी न किसी कारणवश ये संस्कार क्रिएट किया है, नॉट नेगेटिव। राइट नाउ मे बी वी आर नॉट इवन बींग एबल टू मेक इट वेरी प्योर। यू नो कि आपने कहा दुआ नहीं दे पा रहे अभी,
1: एम्पथी भी नहीं आ रही ना,
2: एम्पथी नहीं आ रही ना, मतलब हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं अभी पहुंचे। बट दैट डजेंट मैटर।
1: लेकिन सिंपथी करना इजी हो रहा है मुझे कि यह बेचारा देखो।
2: सिंपथी भी नहीं करनी है।
1: सिंपथी मींस मजबूर
2: नहीं, नहीं देन वी आर सेइंग कि हाँ ये तो बेकार
1: आदमी है, वो आ रही बात।
2: देन दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड। तो हम हर्ट नहीं हो रहे क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने एक नेगेटिव अंडरकरंट दे दिया उसको, हाँ ये तो है ही ऐसा। नो, दैट्स ऑल्सो ओके। फर्स्ट स्टेज है टॉलरेट नहीं कर रहे क्योंकि अंडरस्टैंड कर लिया ये ऐसा है, लेकिन अब उस अंडरस्टैंडिंग में नेगेटिव अंडरकरंट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को हमें प्योरिटी की तरफ लेकर जाना है, ये भी तो करना है ना। वी आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये ऐसा है। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग है वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कैन नॉट इवन थिंक कि कब क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये संस्कार बना होगा। वी डोंट नो, इट्स द जर्नी ऑफ दैट सोल। जैसे उस दिन आपके साथ शेयर किया, पानी में बच्चा नहीं जा रहा था तो कंपैशन नहीं हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं जा रहा। एक अगर अंडरस्टैंडिंग मिले कि उस आत्मा ने पानी की वजह से कहीं शरीर छोड़ा था, तो उसको पानी से कितना डर लगेगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग कंपैशन क्रिएट करता है। लेकिन अब हर बार तो हमें ये नहीं पता चल सकता, कि किसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो संस्कार क्रिएट हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन था। आज अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता, उसने पता नहीं कब कहां कितना धोखा खाया होगा।
1: यू सो राइट। और मैं सोचता हूँ कि यार तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, कमाल आदमी
2: है। सही,
1: देखो कितना डिफरेंस आ गया ये।
2: अब जैसे आपने कहा कि कोई अपनी पूरी बात नहीं बताता, है ना, उसको जो बताना चाहिए हमें कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो नहीं बताता। ये संस्कार उसका कोई अभी नहीं क्रिएट हुआ हुआ, पता नहीं कब कहां उसने किसी को अपनी पूरी बात बताई थी, और वो बात बताने से उसका बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ था, उसको बहुत दर्द एक्सपीरियंस हुआ था उस क्षण, उस आत्मा ने, इस कॉस्ट्यूम में नहीं, नॉट नेसेसरी, पता नहीं कब ये डिसाइड किया आगे से मैंने बात नहीं बतानी किसी को। वो संस्कार चलता आ रहा है। जैसे आपने उस दिन कहा कि आपका ग्रैंडसन ताली बजे तो डर लगता है। अब देखने में वो चीज लगती है कि ताली बजाने से तो सबको अच्छा लगता है, डर क्यों लग सकता है? क्योंकि उस आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग है, उस आत्मा का एक्सपीरियंस क्लैपिंग के साथ कुछ दर्द का है, तो वो दर्द अब फिर से आ रहा है। अब फिजिकल चीजों में तो ये दिख जाता है, तो वी आर एबल टू क्रिएट कंपैशन, यू आर क्रिएटिंग कंपैशन ना, कि कभी ना कभी कुछ हुआ है इसलिए उसको क्लैपिंग नहीं पसंद। ओके, इसी तरह अब सब आत्माओं पर ये लाइन करते जाते हैं, कभी ना कभी इस आत्मा के साथ कुछ हुआ था इसलिए ये आत्मा पूरी बात नहीं बताती, कभी ना कभी इस आत्मा के साथ कुछ हुआ था इसलिए ये बातें छुपाते हैं, ये एक्सेप्टेंस। फिर हम धीरे धीरे उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं।
1: ये भी थॉट आता है ना कि लेकिन ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा है।
2: अब जैसे
1: एक वो आदत पड़ गई है, यहाँ पुराना फोल्डर भरा पड़ा है जजमेंट का।
2: हाँ, तो देन वी आर वर्किंग ऑन आर फोल्डर्स ना। जब आपके बच्चे को ताली बजाने पर डर लगता है या अच्छा नहीं लगता, आप क्या कहते हैं? ये अच्छा नहीं है,
1: नहीं बोलता कुछ।
2: क्या बोलते हैं? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग द संस्कार ऑफ द सोल। आप क्या कहते
1: हैं? बोलते हैं हम कि बेटा क्लैपिंग तो तब करते जब कोई अच्छी चीज होती है, हैप्पीनेस की निशानी है। आपको क्लैप की साउंड अच्छी नहीं लगती तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे।
2: करेंगे
1: तो कभी कभी वो बोलता है अच्छा क्लैप करो, आजकल वो बोलने लगा है धीरे धीरे।
2: तो मतलब बोलने लगा है धीरे धीरे धीरे धीरे, पुराना ग्रूव और नया ग्रूव क्रिएट होना शुरू हो रहा है।

0: करते हैं ना, जोर से ताली बजाते हैं, देखो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है. हाउ कैन द सोल टेक इट इमिजिएटली, कैसे लेगा? जैसे मैंने आपको शेयर किया उस दिन, वो बहन ने उस बच्चे को पानी में डाल दिया स्विमिंग पूल में. हाउ कैन द सोल टेक दैट इमिजिएटली? तो ये हम क्या करते हैं, वूंड था, वूंड पे और वूंड क्रिएट करते हैं.
1: पार्टीशन के टाइम पे वहां ट्रेन्स में लोग ट्रेनों के ऊपर बैठ बैठ के जाते थे, ट्रेन्स की आवाजें, ट्रेन चलती जाती थी इंडिया आने के लिए बहुत से लोग, और ट्रेनों की आवाज, ट्रेनों में घुसना, ट्रेनों में भागना, ट्रेन बहुत प्लेटफॉर्म पे बहुत देर. बचपन में मैं बहुत छोटा था तब रुका था, तो बचपन से मुझे इंजन की आवाज से, ट्रेन के इंजन से डर लगता था.
0: yeah.
1: और ट्रेन के इंजन की आवाज सुनते रोने लगता था मैं.
0: अब ये तो प्रेजेंट बर्थ का संस्कार है ना. प्रेजेंट बर्थ का इफेक्ट कि ट्रेन की आवाज,
1: इंजन देख के रोना, आवाज सुन के रोना,
0: एसोसिएटेड विद पेन दैट डे विल क्रिएट पेन आफ्टर दैट ऑल्सो.
1: इतना केओस था ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे, लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, घुस रहे हैं.
0: एनर्जी भी हेवी थी ना उस टाइम, वो भी तो आत्मा ने अनुभव किया. तो आत्मा ने ट्रेन की आवाज को दर्द के साथ एसोसिएट करके यहाँ रिकॉर्ड कर दिया.
1: तो धीरे धीरे मेरी मदर गार्डन में ले जाती थी जहाँ नजदीक में रेलवे प्लेटफॉर्म था. धीरे धीरे धीरे
0: धीरे धीरे धीरे एक नया ग्रूव क्रिएट किया. एंड इस केस में क्या किया, आत्मा का इंजन के साथ पेन का जो कनेक्शन था, उस दिन हमने देखा ना, न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, विच मीन्स जब पहले दो न्यूरॉन्स कट्ठे फायर हो रहे थे, वो दो क्या थे, इमेज ऑफ द ट्रेन, सेकेंड पेन, इमेज ऑफ द ट्रेन, पेन. अब बाद में क्या होने लगा, जैसे एक न्यूरॉन इमेज ऑफ ट्रेन, नॉइज ऑफ ट्रेन, वायरिंग हो चुकी थी, दर्द होने लगा, क्योंकि न्यूरॉन्स फायर टुगेदर वायर टुगेदर, अब वो वायरिंग हो गई है. अब हमने धीरे धीरे क्या किया कि जब ये न्यूरॉन आया ब्रेन में, इमेज ऑफ ट्रेन, साउंड ऑफ ट्रेन, हमने एक नया एक्सपीरियंस, एक नया फीलिंग रिकॉर्ड करना शुरू किया. किसी ने हमें सहयोग दिया वो करने के लिए कि नहीं, ट्रेन है लेकिन कितनी खुशी है, एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट हुई. फिर दिखाया, देखो ट्रेन है, कितना अच्छा लग रहा है. फिर दिखाया, थोड़ी बार वो हो गया, अब इमेज ऑफ ट्रेन
1: बदल गया,
0: इमेज ऑफ ट्रेन के साथ का एक्सपीरियंस बदल गया.
1: हाँ, उसके बाद कहाँ पिकनिक्स पे, हॉलीडेज में.
0: अगर ये जो थोड़ी सी मेहनत की गई थी ये नहीं की जाती, देर आर पीपल हु कैन स्पेंड देयर एंटायर लाइफ अनकंफर्टेबल विद द ट्रेन जर्नी.
1: आज मेरी उम्र के लोग अभी भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं.
0: हाँ, क्योंकि वो कोई पास्ट का ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं. तो अब ये ट्रेन, प्लेन, ये सब चीजों में तो हमें इजी हो जाता है, वाटर, फायर, अंधेरा हम एसोसिएट कर सकते हैं. इसी को थोड़ा सा सूक्ष्म पे लेके जाते हैं ना, कि अगर कोई किसी की ऐसी नेचर है, कोई मैनिपुलेटिव है, कोई श्रूड है, कोई ऐसे बोलता है, कोई है, ये भी कहीं ना कहीं कोई न्यूरॉन दो फायर हुए थे और वायर हो चुके हैं. सपोज अगर किसी के साथ कभी किसी ने किस पर विश्वास किया और उसको धोखा मिला, किसी ने किसी को अपनी सारी कोई बात बता दी और उसको रिटर्न में बिट्रेयल मिला, तो दोनों न्यूरॉन कौन से फायर हो गए इकट्ठे, बताया और दर्द हुआ, बिट्रेयल मिला, वायर हो गए, वायर हो गए. अब ये आत्मा चल रही है, ये आत्मा उस बिट्रेयल और दर्द को अनुभव नहीं करना चाहती. तो वो न्यूरॉन को फायर ही नहीं करेगी कि वो अपनी पूरी बात बताएगी.
1: मेरे एक फ्रेंड को लिफ्ट से डर है, आज भी लिफ्ट में नहीं चढ़ता. वो बोलता है मैं सीढ़ी से आता हूँ, आप लिफ्ट से चलो. वहां आई डोंट माइंड, लेकिन कोई मुझे डाउट करे उसके नेचर में, अगर ये है कि बिट्रेयल हुआ है, तो यार यू डाउटिंग मी, वहाँ आसान है.
0: हाँ.
1: तू प्ले भाई, इसको प्रॉब्लम है.
0: हाँ.
1: जा रहा है ये.
0: हाँ.
1: सीढ़ी चढ़ के.
0: हाँ.
1: तू सीढ़ी से चढ़ भी, दस फ्लोर है, 15 फ्लोर है, तेरी मर्जी. हाँ. मैं आराम से जाता. वहाँ क्यों नहीं कर सकते,
0: क्योंकि वो फिजिकल है ना.
1: वो इजी हो गया ना,
0: क्योंकि वो फिजिकल है ना, एंड वो मेरे ऊपर नहीं है. वहाँ आप ये नहीं कह रहे, आप मेरे साथ लिफ्ट में नहीं जा रहे, यू आर नॉट सेइंग दैट.
1: बट वहाँ वो भी नहीं बोलता ना, मैं कितना डरपोक है का ये है वो.
0: क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग

0: गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कितना डरपोक है, लिफ्ट में नहीं जा रहा। आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं अनकंफर्टेबल है, क्यों तंग करना है किसी को, दर्द होएगा उस आत्मा को उस लिफ्ट में अगर हम जबरदस्ती भेजेंगे तो। लेकिन उसमें आप ये नहीं कह रहे मैं हूं ना लिफ्ट में इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा, कि मेरे साथ नहीं जाना, यू आर नॉट पर्सनलाइजिंग इट। दैट्स व्हाई पीपल से डोंट टेक इट सो पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। उनको लिफ्ट से डर लगता है, उनको आपके साथ लिफ्ट में आने में प्रॉब्लम नहीं है।
1: एलिगेशन के टाइम पे तो पर्सनल एलिगेशन दे रहे हैं ना।
0: पर्सनल एलिगेशन भी जब कोई कर रहा है वो एलिगेशन कर रहा है क्योंकि उसका उसके साथ कोई दर्द एसोसिएटेड है, उसकी कोई इनसिक्योरिटी है, वो कुछ छुपा रहा है, वो दर्द से अपने को बचा रहा है। ईगो ये भी तो करता है, हर्ट होने से अपने बचाने के लिए दूसरों पर अटैक कर देता है, दूसरों को हिट करता है ताकि वो मुझे कुछ ना कहें, पहले मैं हिट कर दूं। अब अगर हम लिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो धीरे धीरे हम ये भी कर सकेंगे। सिर्फ उसको उस नजरिए से देखना, समझना कि यहां कुछ दर्द एसोसिएटेड है, तो धीरे धीरे हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे।
1: ये लिफ्ट वाला एक्सेप्ट करना इतना इजी भी नहीं था। उससे पहले जब कुछ जमाने पहले मैं कोई अगर अल्कोहल नहीं लेता था, टी टोटलर पे हंसते थे हम लोग, क्या ये घास फूस वाला टी टोटलर आ गया।
0: Then,
1: तो आज लिफ्ट तक तो पहुंचे,
0: ये हमारी जर्नी है ना, अब हम इसको आगे भी लेके जाएंगे।
1: इतने साल लग गए इसको यहाँ तक पहुँचने में,
0: कितने साल विदाउट नॉलेज, विद नॉलेज फास्टर।
1: दैट्स अ गुड पॉइंट,
0: विद नॉलेज फास्टर,
1: वेरी इनकरेजिंग पॉइंट।
0: यस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। पहले आंसर ही नहीं पता था, पहले जो हम इतने साल लगे वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ, फिर हमने धीरे धीरे कहा नहीं ना इसके पास रीजन है, ये करता है, धीरे धीरे धीरे।
1: और अब
0: हमारे पास इंस्टेंट नॉलेज है
1: जो हमको किसी ने बोला होगा,
0: कंडीशनिंग, हमने वही सुना दी दूसरी जगह जाकर,
1: तो हमारे मुख से निकल गए क्योंकि हमने सुनी हुई थी।
0: अब जैसे आपने कहा कि कोई लिफ्ट में चलने से डरता है, राइट, एक्चुअली ये संस्कार पास्ट कैरी फॉरवर्ड है। अगर उस बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता कि लिफ्ट में जाने से कुछ नहीं होता है, उसका वो संस्कार बदल जाता। लेकिन किसी ने अगर वो थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं किया और उस बच्चे ने भी खुद नहीं किया, वो जीवन भर लिफ्ट से डरेगा, विच मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। कि जैसे आपने कहा लंबी बड़ी बिल्डिंग है, इतना ऊपर जाना है, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ने वाला है, इट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। इफ अभी अगर वो आत्मा वो संस्कार चेंज नहीं करती, वो फिर कैरी फॉरवर्ड करेगी
1: अगले जन्म में भी
0: नेचुरली। पिछले जन्म में उसके साथ लिफ्ट के साथ कुछ हुआ, ग्रूव बना, इस पूरे जन्म में वो लिफ्ट से डरा, तो लिफ्ट और डर एसोसिएटेड हो गया टुगेदर, तो अगले जन्म में बच्चा लिफ्ट में कैसे जाएगा। इसीलिए मेहनत करनी होती है संस्कार चेंज करने पे। अब अगर ये आत्मा है जो कोई अपनी बात नहीं बताती, अब लिफ्ट वगैरह इजी हो गया ना देखना, अब सूक्ष्म वाले पर कोई अपनी बात नहीं बता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बताने से डरता है, कोई हेसिटेट कर रहा है, जो भी ये सारे संस्कार हैं, इफ दे आर पीपल हु आर क्लोज टू अस एंड इफ वी कैन शेयर विद देम, वी कैन ऑल्सो हेल्प देम टू क्रिएट अनदर संस्कार। ये भी रोल है।
1: शेयर विद देम व्हाट?
0: एक, पहले हम उनके संस्कार के प्रति क्रिटिकल नहीं हो रहे, जैसे आपकी मम्मी ने आपने कहा धीरे धीरे ट्रेन के पास लेके गए ना, वो धीरे धीरे ट्रेन के पास लेके जाने के लिए आपका उनके साथ विश्वास था, बॉन्डिंग थी, नहीं होती आप नहीं जाएंगे ट्रेन के पास, ठीक है। वो तब हुआ, उन्होंने आपका ट्रेन को देखकर रोने की आदत को क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, रिस्पेक्ट किया विद अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये एसोसिएटेड विद पेन है, हम धीरे धीरे चेंज। तो पहले क्रिटिसिज्म नहीं मिली, एक्सेप्टेंस मिली। जब तक एक्सेप्टेंस ना मिलती यू वुड नॉट मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिलती उनसे।
1: उनकी अच्छी क्वालिटी थी हर चीज में एनकरेज करना, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बड़ा हो जाएगा आप पे, ठीक हो जाएगा।
0: सेम चीज हर एक के अलग अलग संस्कारों के साथ करना है, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा,
1: ठीक हो जाएगा,
0: दिस इज इट। ये एक लाइन क्या कर देती है, एक्सेप्टेंस देती है। ये एक्सेप्टेंस सामने वाली आत्मा को मिलती है, आत्मा का हमारे साथ का रिश्ता अच्छा होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो कर रही है। हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन क्रिटिसिज्म की एनर्जी फ्लो कर रही है, रिश्ता अच्छा कैसे होगा, बॉन्डिंग कैसे होगी, एनर्जी अच्छी नहीं है, विश्वास कैसे बनेगा, क्योंकि सारा दिन तो उनको हमारे से क्रिटिसिज्म की एनर्जी मिल रही है, थॉट्स में, वर्ड्स में भी नहीं।
1: नहीं, सोल तो बोल दिया, साथ में उसको फिर वो भी कर दिया, जजमेंट भी पास कर दिया।
0: तो अब सेकंड स्टेप है ना वो, कि जजमेंटल नहीं हो सकते, अब हम एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इस आत्मा के साथ ये वाली चीज हुई है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट। नो जजमेंटल एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी। ये एनर्जी काफी समय तक उनको भेजते रहे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। फिर अगर लगे कि कर सकते हैं तो हम धीरे धीरे उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं, कि ये आप जो ऐसे कर रहे हैं, बात नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, आधी बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्यों? लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स वर्क ऑन दिस। वो धीरे धीरे होगा, बट इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन।
1: मेंटली बोल सकते हैं ये बात?
0: मेंटली भी बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन वो टाइम पीरियड में हमें मेंटली क्या भेजना है?
1: लेकिन ऐसा भी तो कर सकते, मैं बोलना शुरू कर दूं, वो जोर से करवा,
0: तो
1: मैं करना शुरू कर दूं कि देखो मैं ऐसा यहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ।
0: वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो आप कर रहे हैं तो वो सामने वाला भी करे, क्योंकि सामने वाले का न्यूरॉन कौन सा कनेक्टेड है ब्रेन में?
1: मैंने कुछ बोला तो नुकसान,
0: बताने से नुकसान होगा। वो वायरिंग को तोड़ने के लिए फेथ एस्टैब्लिश होने की जरूरत है। फेथ एस्टैब्लिश होने के लिए वहां से बहुत प्योर वाइब्रेशन चाहिए, इसलिए जजमेंटल। अगर आपने सिर्फ ये किया कि आपने बताना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ उनके लिए फिर भी क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट किए, फिर साथ साथ सोचा मैं तो बता रहा हूं फिर भी नहीं बता रही है, तो दर्द ही जा रहा है ना सामने वाले को। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द संस्कार विद अंडरस्टैंडिंग विल देन क्रिएट कंपैशन, कि कोई बात नहीं, एज ऑफ नाउ इनके साथ ये चीज प्लेजेंट नहीं है इनके लिए ये बात।
1: बट एक सोल को लाइक करना पड़ता है ना ये सब करने के लिए, सोल टू सोल, सोल सोल बोलिए, बट यू डोंट लाइक एवरी सोल,
0: इट्स द अदर वे अराउंड। ये सब करने के लिए लाइक नहीं करना पड़ता, ये सब करेंगे तो लाइक करना शुरू करेंगे।
1: अगर मैं किसी को सोल सोल सोल बोलूं तो लाइकिंग आ जाएगी?
0: अगर आप सोल बोले फिर सोल के संस्कार देखें और समझें, फिर उसको एक्सेप्ट करें, तो आपको वो संस्कार बुरे नहीं लगेंगे। जब आपको किसी का संस्कार बुरा नहीं लगेगा तो आपको वो व्यक्ति बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगता है कोई? गलत क्यों लगता है? उसकी कोई बात गलत लगती है ना, उसका कोई संस्कार गलत लगता है। जब संस्कारों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, व्यक्ति क्यों बुरा लगेगा उसके बाद?
1: संस्कारों को जाना है, एक्सेप्ट कहाँ किया अभी तक?
0: एक्सेप्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना कि कभी ना कभी कुछ हुआ होगा।
1: अच्छा,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। इस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए,
1: एक्सेप्टेंस आ जाएगा क्या?
0: इस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लोग जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, दे विल गो एंड फाइंड आउट। एंड जैसे वो फाइंड आउट करते हैं,
1: पैटर्न रिपीट की बात बहुत अच्छी लगी आपकी, कि इस जन्म में जितने हो सकते हैं ना पैटर्न, जितने कट करते जाओ, तो जैसे आपने कहा अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ खत्म करते जाना है मैक्सिमम, तब जाके मेरा वो जो गोल है कि सबको एक ही नजरिए से देखना है, सोल
0: राइट। लेकिन पैटर्न करेंगे तो आत्मा देखेंगे नहीं, आत्मा को देखेंगे तो पैटर्न को चेंज करना इजियर हो जाएगा।
1: तो मेरे भी तो पैटर्न को काटता रहना पड़ेगा,
0: काटेंगे ना। एंड अब इसको एक और स्टेप ऊपर लेके जाते हैं
1: जी।
0: फर्स्ट आत्मा देखा, सेकंड उसके अक्वायर्ड संस्कार देखे, फिर अंडरस्टैंडिंग कि कभी ना कभी कुछ हुआ था इसलिए ये संस्कार है, कंपैशन कि इस समय इस आत्मा का इस संस्कार के साथ ये एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, सो लेट मी नॉट एक्सपेक्ट देम टू चेंज, इमेजे, ये सब अंडरस्टैंडिंग, लास्ट स्टेप। लेकिन ओरिजिनली तो ये आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है।
1: बाप रे, इतना कौन सोचेगा?
0: सच है ना?
1: ओरिजिनली थी तो मैं
0: थी
1: अपने
0: नहीं
1: आप...
0: थी नहीं है,
1: ओरिजिनली तो मैं भी प्योर हूं ना।
0: दिस इज इम्पोर्टेंट। ओरिजिनली तो मैं भी प्योर हूं ना, क्योंकि जो चार फोल्डर हमने देखे संस्कारों के, पास्ट बर्थ, फैमिली, एनवायरमेंट, विल पावर, ये चार फोल्डर अक्वायर्ड हैं इस जीवन की यात्रा में और अनेक जीवन की यात्रा में बने बने बने बने। हर जीवन में फैमिली मिली, संस्कार बने। हर जीवन में वातावरण मिला, संस्कार बने। ये नेक्स्ट जीवन में कैरी फॉरवर्ड किए तो पास्ट बर्थ का फोल्डर क्रिएट हुआ। ये सब संस्कार अक्वायर्ड हैं, लेकिन जिस फोल्डर के साथ आत्मा ने जर्नी शुरू की थी, इट्स ओरिजिनल फोल्डर, इट्स ओरिजिनल संस्कार, वो एक फोल्डर है जो हर आत्मा पर सेम है। दिख रहा है? पांच कंप्यूटर, पांच हार्ड डिस्क
1: जी,
0: पांच फोल्डर हर एक पर, चार फोल्डर हर एक के डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट। तो चारों फोल्डर्स में जो फाइल्स हैं वो हर एक की
1: डिफरेंट।
0: पांचवा फोल्डर हर एक का सेम।
1: एक सिंगल फोल्डर है जो
0: ओरिजिनल, एक सिंगल फोल्डर है जिसमें सेवन फाइल्स हैं और वो हर एक की सेम।
1: जैसे नया कंप्यूटर लो, ओरिजिनल, क्लीन, सब कुछ साफ,
0: परफेक्ट,
1: फोल्डर्स भी सारे खाली पड़े हैं। अब
0: हर एक कंप्यूटर पर हाँ, कुछ बेसिक फोल्डर्स आते हैं।
1: हाँ,
0: विंडोज है,
1: हाँ,
0: वर्ड है, बेसिक बेसिक पेंट ब्रश है, ये बेसिक है जो हर एक के कंप्यूटर पर आते हैं।
1: वाह, उनको यूज कर करके आपने क्या बनाया,
0: उसको यूज कर करके आगे आपने क्या क्रिएट किया और फाइल्स बनाई, वो फाइल्स हर एक की डिफरेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट पुरुषार्थ है वो है कि हर एक आत्मा की ओरिजिनल फाइल देखने का, अपनी भी ओरिजिनल फाइल देखने का, क्योंकि वेयर अटेंशन विल गो एनर्जी विल फ्लो। आप कौन से फोल्डर की तरफ अटेंशन दे रहे हैं वो फोल्डर खुल जाएगा, वो फोल्डर खुल जाएगा। हम जिस आत्मा के जिस संस्कार पर फोकस करेंगे तो हमारा अटेंशन जहां जाएगा तो हमारी एनर्जी उस संस्कार पर जाएगी।
1: और हम उसको फीड कर रहे हैं?
0: फीड नहीं कर रहे, एनर्जी देके उसको।
1: नहीं, हम अपने आप की दूसरे की भी?
0: अपनी तो कर ही रहे हैं, दूसरे को नहीं भेज रहे।
1: किसी को मैं बोल दूं तो वीक है, वीक है,
0: इतना बोलने की जरूरत नहीं है।
1: सोचो भी तो,
0: वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है, सपोज आपके अंदर दो संस्कार है। एक आपके अंदर संस्कार है ऑनेस्टी का, तो बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। एक आपके अंदर संस्कार है सपोज गुस्सा करने का, अच्छा संस्कार नहीं है। लेकिन एक आपका ओरिजिनल संस्कार है, सपोज प्योरिटी हम लेते, वो ओरिजिनल संस्कार है ना। आई एम अ फैमिली और अ फ्रेंड जिसको सारा दिन आपके साथ रहना है, काम करना है। अब सारा दिन में कई बार वो गुस्सा दिख जाता है सपोज। इफ माय अटेंशन इज ऑलवेज गोइंग टू दैट संस्कार,
1: तो यू विल नॉट सी द ऑनेस्टी पार्ट।
0: सी तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं दिखेगा।
1: hmm.
0: लेकिन जहां मेरा अटेंशन जाएगा,
1: हाँ,
0: वहां मेरी एनर्जी जा रही है, वाइब्रेशन जा रही है,
1: ओके,
0: तो वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा?
1: स्ट्रॉन्गर। थैंक यू सो मच सिस्टर, लेट अस सी द गुड संस्कार इन पीपल ऑल्सो।
0: ऑल्सो नहीं,
1: नहीं, अपार्ट फ्रॉम सीइंग अ सोल,
0: लेट अस सी ओनली द ब्यूटिफुल संस्कार ऑफ एवरीबडी,
1: ओनली द ब्यूटिफुल संस्कार ऑफ एवरीबडी।
0: थैंक यू सो मच,
1: ओम शांति।
2: When we are aware that the soul on its journey of many lives and varied experiences has created different sanskars, then we understand the reason for their behavior towards us. Then we accept it as a fact that exists, rather than a problem which we have to tolerate. Acceptance means no negative thought and vibration about the other's sanskars. When we are judgmental, we create a negative feeling and record a negative experience in our subconscious, and also radiate a negative vibration to them, and they also record a negative experience. Once we accept the sanskar, we are stable, and then shift to empathy and compassion. The soul has gone through a painful experience in some life because of which that sanskar was created. This empathy and compassion will radiate pure vibrations to them and help heal their pain. Gradually, help them record a pleasant experience. Once the soul starts recording a happy experience with the same stimulus where it had earlier experienced pain, it will help the soul to change the sanskar.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा,

0: शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जीवन विकास कार्यक्रम में, जहाँ पर हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर शिवा प्रसाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवा प्रसाद जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग जो हैं इंजीनियरिंग की कुछ विशेष बातें, आफ्टर इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। कई बार इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, ये भी थोड़ा सा हमारा प्रिपरेशन पहले से हो तो हम लोग कुछ अपना जो है अच्छा करियर को फ्रेम कर सकते हैं, एक अच्छी पोजिशन पा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी तैयारी जो है आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। तो आइए इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो शिवा प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि इस विषय को लेकर आप बात करना चाहते हैं, तो ये विषय कैसे आपके ध्यान में आया ये पहले बताइए।
1: मैं ऐसे कॉलेज में हूँ जहाँ मेरे पास 1112 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं।
0: जी जी जी।
1: और ना तो स्टूडेंट्स ये यूथ है, और काफी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में। तो मेरे को देख के उनको लगा कि ये बच्चे कल एंट्रांस के लिए IAS के लिए वो तैयारी करेंगे, कई बच्चे इंडियन नेवी के लिए वो लगेंगे कि नहीं मुझे तो डिफेंस में जाना है, मेरे को डिफेंस में NDA में रहना है, यानी तो नवल में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, और कईयों को रहता है कि नहीं एक खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, अपने पापा का बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा।
0: जी, जी जी।
1: और कईयों को लगता है कि कईयों को लगता है मैं MBA भी करूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ये ना उनकी जो मनोस्थिति और जो मानसिक विकल्पों को मैं थोड़ा सा गहराई से बटोर रहा था, तो मेरे को ध्यान में आया कि चलो आज रमेश भाई जी ये बोलो कि आज हम करें। कई बार कईयों तो इंजीनियरिंग तो एक है डिग्री, लेकिन उसके बाद भी इंसान इंजीनियर इंजीनियर बने ऐसा जरूरी नहीं रहेगी आज के जमाने में।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इंजीनियरिंग के बाद काफी लोग है ना, वो काफी लोग डिजाइनिंग में जाते हैं, फोटोग्राफी में भी जाते हैं। एक मेरे को एक लड़का वो TIFR नहीं वो था हमारा टेलीविजन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना वो पुणे में है, तो हमारे यज्ञ में वो वो सेवा दे रहे थे। मैंने बोला आप 2 साल क्या, बोला मैंने साउंड इंजीनियरिंग मैंने किया।
0: अच्छा।
1: साउंड इंजीनियरिंग लाइट, अरे मैंने बोला मैकेनिकल सुना था हमने तो सुना था ऑटोमोबाइल का सुना हमने तो इलेक्ट्रिकल का, साउंड इंजीनियरिंग 4 साल का एक कोर्स है, और उसमें भी कोई इतना उसमें इसमें बारीकी से वो समझ जाता है, तो फिर वो बॉलीवुड में कहीं प्रोफेशनल स्टूडियोज में वो वगैरह उसके ऊपर में काफी वो सेवा दे रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा वो पूरे साउंड इंजीनियरिंग लाइट इंजीनियरिंग एंड समझो ये छोटी छोटी बातों को, तो ऑप्शन ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियरिंग करे तो IT में जाएगा, IT इंजीनियर बने ऐसा कोई जरूरी बना ऐसा कोई मजबूरी।
0: जी जी।
1: कई लोग तो आजकल आपने भी सुना होगा कई लोग लौट के खेती भी करते है ना, तो उनको एग्रीकल्चर अभी देखो उनको समझ में आता है कि दूसरे के अंडर में हम नौकरी करें वो करें, उससे अच्छा कि हम थोड़ा सा गांव गाय वगैरह रखे और खेती वगैरह करे, एंड पीपल आर अर्निंग इन लाख्स एंड करोड़ ऑल्सो। भले वो इंजीनियरिंग छोड़ के अपनी IT जॉब US का छोड़ के वो इंडिया आ जा गया, लेकिन उसने जैसे ये गाय और ये दूध वगैरह के काम हुआ, गोबर का पर्याप्त मात्रा में मिला तो जमीनों में उसको खेती में लगा दिया, और आजकल आप समझते हो अगर ओरिजिनल ऑर्गेनिक 1 लीटर दूध का आजकल 100 से 120 में भी लोग ले रहे हैं। आजकल जैसे हो गया ना डुप्लीकेट हो दूध वगैरह,
0: बिल्कुल
1: डुप्लीकेट
0: बिल्कुल
1: तो नहीं बोलेंगे, दूध में जैसे आजकल पास्चराइजेशन
0: मिलावट आ गया।
1: करते हो, डुप्लीकेट तो नहीं बोल सकते, उसका जो प्रोसेस करके फिर जो दूध निकालते, तो लोग अगर वो 60-70 रुपया में लीटर मिले तो लोगों को 100 में, 100 रुपया में अगर ऑर्गेनिक ओरिजिनल और गिर गाय की दूध की तो बात नहीं, 120 लग जाता है, तो पीपल फील की नहीं गाय काम हो रही थी तो उसके कारण। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है एग्री
0: एग्री
1: टूरिज्म, मतलब
0: टूरिज्म
1: फॉरेन से है ना, उसमें काफी फॉरेन से बड़े बहुत अमीर लोग आते और वो इंडिया में और एक ऐसी जगह में रहना चाहते जहाँ खेती हो गाय हो दूध की और ये चारों तरफ ग्रीनरी हो, तो अगर आप उसको ठीक से डेवलप कर लो 10-15-20 एकड़ और एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट टेंट उन्ट डाल दो आप और थोड़े एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह लगा दो, आप अगर गए होंगे रमेश भाई पुणे के ना आसपास कहीं भी जाएंगे ना बहुत एडवेंचरस उसका है वो स्टे का, दो नाइट
0: बिल्कुल
1: का
0: बिल्कुल
1: था वो, हम हमारे सारे गए थे उसमें वो रहता है कि आप हिल ट्रैकिंग कर सकते हो, रोप राइडिंग हो सकता है, टाइंग
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और वो बोटिंग वगैरह, उसमें वो वाटर डांस लगा दिया और उसके अंदर चारों तरफ खेती है, तो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है बट एक नाइट के लिए हम 2-2-3-3 हजार दे के फिर आते थे हमारे बच्चों को, तो हमारे पास 60-70 बच्चे, डेढ़
0: बिल्कुल
1: दो लाख हो बस उनकी खाना पीना ही ना, तो बोलने का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग के बाद कोई इंजीनियरिंग में ही जाके ही पैसे अर्न करे, या नहीं तो थोड़ा क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा हटके सोच हो, तो आप एग्री इंजीनियरिंग, मेरे एक दोस्त, मेरे एक बड़े भाई थे,
0: जी जी जी
1: मैंने पूछा तो आपने कौन, मैंने बोल, उन्होंने बोला मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर, मैंने तो एग्री में फिशरी भी होता है, आपका हस्बेंड्री उसका होता है, वेटरनरी भी होता है और एग्री में एग्री इंजीनियरिंग का भी होता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं था,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: मैंने एग्रीकल्चर जो भी है ना इरिगेशन से उसकी सीडलिंग है उसकी बहुत सारे इक्विपमेंट है, तो स्प्रिंकलिंग आजकल बहुत एडवांस निकला है देश के और उसमें फिर मैंने बोला अच्छा, तो और इंजीनियर बाद में एग्री नहीं किए के बाद उन्होंने ना एमबीए आपने पावोई एलएनटी का जो कौन सा साकीना का बॉम्बे में
0: जी जी जी
1: उसके आगे जाएंगे ना तो हाँ एक कॉलेज है उसको कहते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लाइक समथिंग दैट इज ए नीटी बोल के, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग के बाद ये मेरे बड़े भाई ने गेट का एग्जाम उन्होंने दिया एमटेक का और उसमें अच्छा स्कोर किया, तो उस मैनेजमेंट कॉलेज में वो ज्वाइन किए, इंजीनियरिंग भले एग्री का किए पर इंडियन एक्सप्रेस को प्रोडक्शन मैनेजर बन के असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन किया, उससे फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर तक उनकी प्रमोशन भी हो गया, अभी था तो इंजीनियरिंग पर वो चले गए इंडियन एक्सप्रेस में आज ए प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि एमबीए उन्होंने किया ऑपरेशंस मैनेजमेंट में,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऐसे एरिया है जहाँ सप्लाई चेन के बारे में समझते हो, जैसे होता है ना ये अमेजन से तो हम मंगवा लेते सामान पर
0: बिल्कुल
1: उसकी जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ना, लोगों से प्रोडक्ट लाना और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, वो भी टाइमली ले आना, और उसमें आप देखे होंगे उसमें टाइम और डेट दिया जाता है कि नहीं, हम आपको 2 दिन में देंगे, हम आपको 4 दिन में देंगे, या हम आपको ये चीज नहीं दे पाएंगे, तो वो चीज उनकी सप्लाई चेन की जो डिटेल उनकी जो नेटवर्क है उसकी छोटाइज है, तो उन्होंने उसके ऊपर काफी उसके ऊपर एक स्पेशलाइज, ये एरिया ना आजकल काफी बढ़ रहा है मार्केट में
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: सप्लाई चेन, जैसे अमूल का है, अमूल को क्या है ना आप अगर 1-2 दिन में अगर डिलीवर नहीं करो तो ये पेरिसेबल आइटम है, ये खराब हो जाता है और आपको नेटवर्क के हिसाब से प्लांट कहाँ डालना है वो भी सोचना पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो फिर सप्लाई चेन ऑपरेशंस मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ते उसके बाद वो फिर ये अपन जैसे पूरी सप्लाई चेन नेटवर्क पूरी इंडिया में और मैं तो बोलूंगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसका आप देखो ना चॉकलेट से आइसक्रीम में कुछ कुछ चीजें से और कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो कि 2 दिन 4 दिन रह सकता है, और दूध का आइटम है तो आज तो कल जाना ही है उसको, फिर दही है बटर है, तो सारे सारी चीजों को एक सप्लाई चेन ठीक से कंडीशन में, उसकी ठीक से उसकी जो आइस की कंडीशन होता है प्रोडक्ट उसके, इसको पेरिस्टेबलाइज, तो ये जो पढ़ाई है उसको फिर ऑपरेशन में जाते हैं, या नहीं तो आपका जैसे एयरपोर्ट हो गया, आपके एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को संभालना, उसके पैसेंजर्स आना, उसके चेकिंग चेकआउट करवाना, उनको ठीक टाइम पे प्लेन को छोड़ना और प्लेन की लैंडिंग करना, और प्लेन की लैंडिंग भी हो तो उसमें भी सेफ्टी हो, प्लेन की लैंडिंग में सेफ्टी हो, सिग्नलिंग सिस्टम हो, और इस तरफ हम कस्टमर की सेवा है, जैसे आप जाओगे एयरपोर्ट में पानी भी रहता है, दुकानें भी रहती है, और आपकी सिक्योरिटी चेकिंग भी रहता है, ये सबको भी समझना, ये भी एक इंजीनियरिंग के बाद एमबीए जो करते हैं ऑपरेशन, इसको कहते हैं हम सर्विसेस ऑपरेशन, सर्विसेस ऑपरेशन, तो उसके ऊपर वो पढ़ाई पढ़ सकते हैं, और काफी, पर आजकल एक नया ट्रेंड निकला है एक रमेश भाई की, हमें आईएएस बनना है, आईएएस, और ये मुझे अच्छा लगा कि आजकल जैसे पहले जमाने में बहुत अच्छे स्टूडेंट होते थे, तो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के होते थे, आईआईटी के होते थे, वो ज्यादा इसके ऊपर उनकी सपना रहता था, तो होते थे, तो पहले जमाने में थोड़ा मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स होते थे जो जिनको आईएएस बनने का होता था, लेकिन अभी काफी गांव गांव में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ा है, और मैं देखता हूँ कि लोग बोलते ना आप क्या करोगे, ना मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में जाऊंगा, है ना, नहीं तो क्यों, रेड लाइट रहता है और उनकी दबदबाहट रहता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पावर
0: रहती है,
1: लोग है ना लाखों हजार करोड़ का उनके अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर रहता है, तो वो यूपीएससी होता है, एमपीएससी होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, काफी बच्चे अभी आ रहे हैं कि नहीं इंजीनियरिंग के बाद मैं एमपीएससी कर रहा हूँ, यूपीएससी कर रहा हूँ तैयारी, अच्छा लगा बहुत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना रमेश भाई,
0: जी जी,
1: जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद शुरू करते, लेकिन वो थोड़ा ना जिसमें क्या हो जाता है ना, बहुत लेट हो जाता है प्रिपरेशन, अभी जैसे आपको जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक जो गेम हो ना, जिम्नास्टिक गेम में आपको गोल्ड मेडल लेना है, अब रमेश भाई आप और मैं अगर इस उम्र में गोल्ड मेडल लेने के लिए अगर हम जिम्नास्टिक करें तो क्या हो जाता है, हड्डी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बचपन में होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो वो जो 2-3 साल के बच्चों को जिम्नास्टिक में आप डाल दो तो डर जाता है, तो गिरना,
0: जी जी,
1: उसके लचीले जो बदन बॉडी वगैरह होते हैं ना, तो उसे वो जंप मार सकता है, डांस कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, इस तरह से आईएएस की तैयारी करना है, मैं पूरी इंजीनियर बन जाऊँ, फिर मैं शुरू करूँ तैयारी तो मैं बन नहीं
0: पाऊंगा,
1: बहुत रेयर केस है इम्पॉसिबल जो, तो इसके लिए आप भी से अगर थोड़ा न्यूज पेपर थोड़ा सा पढ़े, बीइंग इंजीनियरिंग करते हुए थोड़ा सा टीवी के डिस्कशंस को देखे, थोड़ा सा ऐसे राइटिंग को बढ़ाए कि कोई नया सब्जेक्ट, जैसे अभी आपका है ना डेंगू के ऊपर क्या, उसके हमें अभी स्लम्स रिहैबिलिटेशन के ऊपर काफी काम हो रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरा अगर मैं पोजिशन में हूँ तो मैं क्या उसमें रोल, इसमें अभी आजकल देखो ना ट्रैफिक सिस्टम, हम मेट्रो आ गया, फिर बुलेट ट्रेन आ रहा है, फिर इंडिया का वो जो अभी वंदे मातरम ट्रेन आप देखो अहमदाबाद टू बॉम्बे पिक्चर 5-6 घंटे में पहुंचाना, तो ये जो चेंजेस हो रहा है उसको समझे और वो ट्रैफिक सिस्टम को समझे और उस पे हम कुछ लिखे चीजें, तो हो सकता है कि क्या हो जाएगा ना लोगों का, लोग उसमें काफी डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग बीइंग ए इंजीनियर आप आईएएस बन सकते हो, सब्जेक्ट आप चुन लो, आप सब्जेक्ट चुन लो, सब्जेक्ट में क्या होता है कि किसको लगता है मैं हिस्ट्री लू, किसको ज्योग्राफी लू, किसको या कोई भी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले से चुने, थोड़ा इंटरेस्ट ले, थोड़ा पढ़े उसमें, तो वो 100% में बोलता हूँ कि वो जैसे जैसे उनकी 3-4 साल हो जाएंगी और पहले की तैयारी हो जाएगी, समय पर जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर वो उसमें सक्सेस हो पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और हमारे सुरेश संतोष जी ने याद भेजा है, नीता जी ने भी याद भेजा है, और संतोष कुमार जी लिखते हैं कि आज का जो परिवर्तनशील समय चल रहा है, ऐसे में कौन सा ट्रेड है जिसमें बच्चों का अच्छा भविष्य फ्यूचर को देखा जा सकता है या अच्छा स्कोप हो। अब इसके लिए तो बातें हो रही हैं संतोष जी, काफ़ी चीज़ें बता दिया ऑलरेडी, फिर भी और भी चीज़ें आपको बताएंगे शिवा प्रसाद भाई जी।
1: इसमें मेन है कि ना रमेश भाई, आपको इंटरेस्ट किसमें है?
0: जी
1: भाई
0: जी जी जी
1: बच्चों को हम एमबीए में देखते ना, नहीं बोलते नहीं, मेरे को तो अपने रियल इस्टेट में जाना, उसको क्लियर ही है कि वो बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बेचना, जमीनों का कारोबार बढ़ाना, तो मुझे उस पे जाना है। कईयों को लगता है नहीं नहीं मेरे को तो ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन उसके, कईयों को लगता है नहीं मैं तो लॉजिस्टिक और ऑपरेशन में रहूंगा। आपको कई अभी एक नया एक काफी जैसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे, तो एक एक नया बहुत अच्छा करियर प्रॉस्पेक्ट है, उसको कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंस, डेटा
0: अच्छा अच्छा
1: एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस ना क्या है ना, आजकल डेटा बहुत है, चाहे
0: बिल्कुल
1: आप एयरपोर्ट के है ना, जो अभी जो प्लेन में जाने वाले, तो उसके एयरलाइन के पैसेंजर्स होते हैं ना, उनके बहुत डेटा है, उनकी उम्र है, वो कितने कहाँ जाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, मेल फीमेल है, इस तरह से। और तो उसे पता चल जाते हैं कि कौन आ रहा है बार बार प्लेन और कौन दुनिया के लोग आता जा रहा है, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ प्लेन्स को बढ़ा सकते हो। तो जैसे हम इंटरनेट के रिचार्ज करते जियो, तो आपने रिचार्ज किया, मैंने किया, फिर वर्क फ्रॉम होम का भी मैं थोड़ा एडिशनल रिचार्ज कर देता हूँ, जब हमारे कीमती खत्म ना हो जाए। तो ये जो रिचार्जिंग हम करते हैं, तो उनको भी वो ढूंढते हैं कि रिचार्ज कौन कर रहा है, कौन से एज वाले कर रहे हैं, कौन से नंबर वाले कर रहे हैं बहुत ज्यादा रिचार्ज, उसको ट्रैक करते, उन बारे को डिस्काउंट देते, ऑफर देते, बोलते ये नेटफ्लिक्स भी ले लो, प्राइम का ऑफर देता हूँ, दे दो, 3 महीने का फ्री दे देते। तो 3 महीने वो देखेगा तो एडिक्टेड हो जाएगा, तो उसको और कुछ देते। तो माना ऐसे ये जैसे टेलीकॉम वाले होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज है, वो भी उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं कि अपने कस्टमर कौन है, कहाँ से, कुछ कुछ एरिया है ना, स्टेट है, वो तो बस फोन करने के लिए वो रिचार्ज करते हैं, क्योंकि उनको मिनिमम चाहिए, थोड़े बहुत व्हाट्सएप ये करते हैं। कुछ कुछ एरिया है ना, देखा गया है कि वहां से लोग बहुत ज्यादा अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यानी तो एडिशनल जो भी है ना पैकेजेस, उसमें हो सकता है कि ये एरिया थोड़ा सा दरबान होगा, जो भी है, तो लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से तो थोड़ा उसपे एनालिसिस कर पाए डेटा। तो डेटा एनालिटिक्स आजकल दुनिया में काफी, आप जैसे आप गए होंगे रमेश भाई, आप
0: जी जी
1: शॉपिंग मॉल में, आप जैसे आप सामान लेके बिलिंग के लिए जाते हो ना, तो काउंटर वाला पूछता है कि अच्छा फोन नंबर दे दो, फोन नंबर क्या है, बोलते भाई फोन नंबर क्यों देने का, फोन नंबर में नहीं दूंगा, फोन नंबर की नहीं आपको, तो बोलते नहीं फोन नंबर तो आपको डिस्काउंट हो, बोलते नहीं आपको कूपन मिलेगा, नहीं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो फिर हम आपको, तो ये जो है फोन नंबर क्यों ना, फोन नंबर से पता चलेगा कि ये कस्टमर कब पहली बार आया था और बाद में उसने क्या क्या सामान दिया है और समय के साथ वो सामान लेने का उसकी क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है या थोड़ा घट गया है, थोड़ा कम ले रहा है सामान, तो ये सब समझते हो और उस हिसाब से आपके जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से डेटा एनालिटिक्स जो है फील्ड, अभी काफी इंजीनियरिंग के बच्चे उसमें आते हैं और उसके लिए इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो ये जो चीज है ना, तो अभी मैं देखा है तो इस पर थोड़ा काम कर
0: जी जी संतोष जी, आपको थोड़ी सी नई बातें बता दी हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं आप और भी अपना जो है विचार लगा सकते हैं। तो संतोष जी ने, थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी बात आपने जानकारी दी है, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए, नीता जी ने भी याद भेजा है और अब मैं आपको ले सकता हूँ। जी
1: नीता जी का मुझे याद है, एग्री इंजीनियरिंग का कुछ बता रहे थे एक समय में उनके प्रोफेशन, तो इसमें क्या है रमेश भाई, लोग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल है, मैकेनिकल है, पेट्रोलियम है, तो उसके साथ साथ और बहुत सारा है इंजीनियरिंग का, जैसे आपका आपका डेटा साइंस का भी, लेकिन उसमें एक चीज है कि बच्चे एक चीज कंप्यूटर के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज वो मिस करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है जो हमारा उसको कहते स्टैटिस्टिक्स, आंकलन निकालना, सारी भी वो सॉफ्टवेयर बना के, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में डेटा एनालिसिस, तो अगर स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले इंजीनियरिंग के बच्चे, तो करियर का है ना, तो कंप्यूटर बोले मैकेनिकल हो, थोड़ा कंप्यूटर साइंस सीखो, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स सीखो, क्योंकि क्या है ना आजकल युग परिवर्तनशील, जैसे बोले संतोष जी, ये थोड़ा ऑटोमेशन में जा रहा है। आजकल कहीं भी देखो ना तो लोग बोलते हैं रोबोटिक्स ऑटोमेशन, तो जैसे ऑटोमेशन या रोबोट से काम चल रहा है ना फैक्ट्रीज वगैरह, तो हमारे पास एक ही चीज रह जाता है कि डेटा हमारे पास बहुत आते हैं, वो डेटा को समझना बहुत जरूरी है। सपोज मैं ना सिविल इंजीनियर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना था, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड चल रहा है आजकल, ब्रिजेस बनते हैं आजकल, बिल्डिंग्स बनते हैं आजकल, बहुत सारे न्यू डिजाइन कमर्शियल सेंटर बनते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उन जैसे सेंटर के ना उसकी पूरी डेटा मेरे पास, मेरे को कैसे रोड के कितने लोग रोड से पार्सल होते हैं, उससे कितना मेरे को टोल लगाए तो कितने पैसे आ सकता है रोड से, और उसमें एक साथ कितने ट्रक्स जा सकते हैं, और कितने टन्स के मटेरियल। अभी देखो आप देखो ना वो सी लिंक बनाए ना अपना, अपना कौन सा अपना मुंबई का अभी नया सी लिंक बनाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ टोल चार्ज बहुत ज्यादा भी है, पर टोल चार्ज ज्यादा भी है पर रीजनेबल भी है, क्योंकि काफी समय बचा देता है वो, और काफी सहूलियत हो जाता है कि आप सी के थ्रू में। तो वो बनाने का सोचो जो इंजीनियर होंगे, उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, और उनके बहुत स्ट्रिंजेंट टाइम कंस्ट्रेंट भी रहते हैं कि इतने टाइम तक आपको डिलीवर करना है, अगर आप टाइम में नहीं बनाए तो फिर बाकी चीजें उनकी लेट हो जाती है। तो उसको वो जो चीजों को आप मैनेज करना, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक कंप्यूटर्स में निकला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसको आप कहते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो चीजें है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे अभी फैक्ट्री बनता है, तो फैक्ट्री बनने के बाद तो चल रहा है, लेकिन इतने भी मारुति सुजुकी का फैक्ट्री बनाना कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। अभी आपको देखेंगे दिल्ली में नोएडा में एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है।
0: जी जी जी,
1: अभी सोचो उसकी एयरपोर्ट 15-20-30 किलोमीटर एक
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल,
0: और एक बात आती है जहाँ

0: और उसमें जो भी चीज फील्ड आप उसमें डेडिकेटेड रहना जरूरी है, तो 3-4 साल का मेहनत रहता है तो फिर आप एंट्री इजी हो जाता है।
1: जी,
0: अभी मैंने हम आप जैसे बात कर रहे थे, कईयों को लगता है ना आजकल इंजीनियरिंग में ना पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को पढ़ाता है वहां के स्टूडेंट्स पाइनियर, तो वहां क्या करते नॉर्मली रमेश भाई, आजकल
1: जी,
0: यूएस जाने का बोल रहे हैं,
1: अच्छा,
0: हाँ यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया, हाँ यूके जाओ, तो वहां जाने के काफी ट्रेंड है। तो बच्चे क्या करते ना फाइनल ईयर के, तो फाइनेंस के मैनेज कुछ सब्जेक्ट है, तो फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के वो सब्जेक्ट सारा तैयारी करते, तो फाइनेंस के भी इंजीनियरिंग होते हैं रमेश
1: बिल्कुल
0: भाई, फाइनेंस
1: बिल्कुल,
0: एनालिटिक्स हम बोलते हैं, तो उसमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस, फंडिंग एनालिसिस, पैसे की वो सारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो बच्चे फिर यूएस जाते हैं, यूएस में एमएस करने जाते हैं, एमएस करने के लिए उनको जीमैट और जीआरई का एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, यानी तो
1: बिल्कुल
0: जीमैट है, वो टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट वगैरह दे के फिर वो फिर यूएस के अच्छे कॉलेजेस में उनके नंबर लग जाते हैं, और इंजीनियरिंग के साथ साथ फाइनेंस का उनको आइडिया रहता है, तो उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में काफी इजी हो जाता है, और वो बच्चे काफी अच्छे अच्छे कॉलेज जाते हैं। मैंने मैंने रिकमेंडेशन लेटर जब मुझसे मांगते हैं ना, कोई
1: बिल्कुल
0: यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में कोई जाना चाहता है, कोई न्यूयॉर्क, जहाँ जाना एक सपना है, और बच्चे जाते हैं वो, यही इंजीनियरिंग बच्चे, तो ये
1: बिल्कुल
0: बच्चे अगर 2-3 साल पहले से ही अवेयरनेस हो जाए और तैयारी शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग बच्चे कहीं भी, और लेकिन अंत जैसे आप क्या हो कह रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद ये तैयारी शुरू करो, तब तक आपके फ्रेंड जैसे निकल जाते हैं ना बड़े पोजिशन में, तो फिर अच्छे कॉलेजेस में आपकी पेशेंस खत्म हो जाती है, जब खत्म होता है तो आप फिर डिस्परेट होते हो कि कहीं भी कुछ भी मेरे में कर दो, तो फिर आप जो करियर की कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इसलिए
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: पूर्व चाहिए, थोड़ी बहुत तैयारी में थोड़ी सी कोचिंग होगा तो कोचिंग ले लेना चाहिए, या नहीं तो थोड़ी गाइडेंस ले लो, थोड़े बुक्स मंगा लो, लेकिन थोड़े से यूट्यूब से देख लो, बस शुरू करना बहुत जरूरी।
1: एक और बात पूछना चाहूंगा, करियर में जैसे कि कई बार हम लोग का थोड़ा सा मुश्किल होता है कि डिसीजन लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है प्रॉपर, तो इसमें क्या काउंसलर का हेल्प लेना चाहिए, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। कई बार डिसीशन ही नहीं ले पाते कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में जाना है, सिविल में जाना है, या फिर और जो एग्रो में जाना है, या जो ऐसे आपने बताया साउंड में जाना है, तो वो कई बार ये स्पेशलाइजेशन करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, तो उसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करें या समझें।
0: क्या होता है ना रमेश भाई, लोग ना इंजीनियरिंग कोचिंग में पैसे लगाते हैं, यानी तो इंजीनियरिंग ज्वाइन करने में उसको फी देने में पैसे लगाएंगे 10 लाख, लेकिन
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसको समझने के लिए जो 20-30 हजार चाहिए ना वो खर्चा चाहिए, हाँ उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के भी है, पेरेंट्स को भी थोड़े से बच्चों को दिखाना है, ऐसे लोगों से मिलवाना है, और उसमें इमोशनल नहीं होना है, 2-3 जगह समझाना है ये क्या होता है, माइनिंग इंजीनियरिंग क्या होता है, कहाँ काम करना होता है, किस इंजीनियरिंग का है, आईटी इंजीनियरिंग है तो वो क्या काम करता है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल क्या काम करता है, बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे फील्ड के लोगों से मिलवाना, उनसे थोड़ा सा करियर काउंसलिंग, मतलब उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है, ऐसे एक्टिविटी अभी जैसे फैक्ट्री भी है तो कॉलेजेस, हमने ना अपने अपने बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग का भी हमने एक सोचा है जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, और हमारा डेडिकेटेड करियर काउंसलिंग सेल है, सीडीसी उसको कहते हैं, करियर
1: अच्छा,
0: डेवलपमेंट सेल,
1: हाँ,
0: तो उनको गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम उनके एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं, तो ये जो है उसमें अगर बच्चों को थोड़ा सा पहले से, तो उसमें हम 1-2 साल जैसे मैंने बोला 2-3 साल पहले से ही अगर उसको डिफरेंट फील्ड का मेथोड घुमा दे, तो उसके बाद
1: जी
0: बहुत ज्यादा

0: बहुत ही अच्छी बातें शिवा प्रसाद जी ने हमें बताया। निश्चित तौर पे उनका इंटरनेट का शायद थोड़े सा कट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उनका इंतज़ार करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने नए काउंसलिंग की बात बता रहे थे, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा हमें जो है पूर्व तैयारी करने की अति आवश्यकता है। जी शिवा भाई,
1: और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है कि पेशेंस नहीं रखते और मन में आ गया कि मेरे दोस्त ये कर रहे तो मैं करूंगा या मुझे टीचर ने बोला है। मुझे कई बार ना लोगों को वो ड्रोन के बारे में बोलते, रोबोटिक्स बोलते ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो फील्ड जाके करियर नहीं देता है कई बार,
0: जी जी
1: आगे जाके वो एक्साइटमेंट देता है। थोड़े बहुत आप कर लिया तो ठीक है, थोड़ा समझ नॉलेज होना जरूरी है, बट वो आपको केरी, अभी जैसे ना खाने में आप चटपटी खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट चटपटी खा के आप अपनी तबीयत नहीं बना सकते। आपको रोटी दाल चावल खाएंगे जो है ना, उसके साथ अगर थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा अच्छे फूड हो, आइसक्रीम हो जाए तो मजा आता है। तो एक रोबोटिक ऑटोमेशन तो ठीक है, वो फील्ड भी अच्छा है, तो लेकिन वो फील्ड आपको केरियर दे, उसमें कितनी प्रॉफिट है वो समझना जरूरी है। नहीं तो मैंने तो मेरी पूरी लाइफ लगा दिया कोडिंग में, रोबोटिक्स में, उसमें, बट एट द एंड में वो एंड टू एंड में निकल नहीं पाया। तो थोड़ा सा चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप अपनी कोर सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसकी मेहनत आप कहीं भी देखो ना रमेश भाई,
0: जी जी,
1: अगर आप बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं या मैनेजमेंट के कॉलेज में एंट्री करना चाहते, आपको दो ही चीज चाहिए। एक तो मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपके अच्छे मैथ्स, ऐसे नहीं कि बहुत बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आपको टेंथ के मैथमेटिक्स भी अगर ना आप थोड़ा सा उसमें स्पीड करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए समझदारी से, तो वो भी काफी है इंटेलिजेंस। नहीं तो आप थोड़ा उसके साथ साथ इंग्लिश, इंग्लिश में आप थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज पर कमांड हो, पैराग्राफ जल्दी पढ़ के उस पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, बातें वो
0: बिल्कुल,
1: तो
0: मेरे ख्याल से स्टूडेंट। जी जी चलिए शिवा भाई, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम आफ्टर इंजीनियरिंग या फिर अपने करियर को लेकर किस तरह से हमारी मानसिकता है वो आपने बताया। और निश्चित तौर पे ये बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं, और आपने अपना अनुभव के साथ इन बातों को शेयर किया इसलिए अच्छा लग रहा है। और हमारे संतोष जी ने भी थैंक यू बोला है, और नीता जी ने भी थैंक यू बोला है, कविता जी ने भी याद भेजा है, और आप सभी जो भी देख रहे हैं हमें आगे भी देखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के एपिसोड्स आप एक दो बार ज़रूर सुनिए ताकि आप अपने माइंड को सेट कर सकें। और ख़ास करके आपको जब अपना करियर के बारे में थोड़ा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह का भी प्रावधान कॉलेजेस वगैरह में है, जहाँ पर है वहाँ पर आप उसका उपयोग करें, ताकि आपको 90% जो है आपके अंदर का जो मन, आपके विचार जो है उस करियर के साथ मैच हो, तो फिर आगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप उसमें सर्वाइव अच्छा करेंगे, और ज़िंदगी भर, क्योंकि ये एक करियर माना लाइफ टाइम वाली बात आती है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपका एटीट्यूड क्या कहता है, आपका विचार कहाँ है, आपकी भावनाएं कहाँ जुड़ रही हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आराम से इसके लिए टाइम दें, क्योंकि इसके लिए अभी टाइम देंगे तो बाद में फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि हम लोग जैसे शिवा भाई ने बताया, करने के बाद फिर वापस हमको लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, इसके बाद हमें ये करना है, तो दो तीन चीज़ें आप फिर करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि नहीं इस तरफ अच्छा है, तो वो उसमें टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा आपका चला जाएगा बाद में। लेकिन उससे है कि आप डिग्री करते हुए थोड़ा टाइम दे अपने आप को, और इसमें अगर आप टाइम देते हैं तो आप अपने लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से और अच्छा बना सकते हैं। हमारी कोशिश यही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से जीवन विकास आपका अच्छा हो, आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छा करियर आप इस्टेब्लिश करें, एक नाम करें, और फिर आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग आपको देखकर आपकी बातें मानेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार शिवा भाई, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप छोटा सा?
1: मैसेज तो मैं यही दूंगा कि जैसे आप सेकंड ईयर होता है तो आप दो तीन डिफरेंट ऑप्शंस आप चूज करो
0: हम्म,
1: और अपनी एक तब से निष्कर्ष लेके और अपनी बड़ों से या मन की अपनी स्थिति और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है इनसाइड के उसको समझ के
0: जी
1: एक बार
0: जी
1: आप सेकेंड ईयर के फाइनल एंड तक फाइनल कर लो और आप थर्ड ईयर की फोर्थ ईयर में डेडिकेटेडली रात दिन उस एक एरिया में लग जाओ। 2 साल काफी है, जीवन के भगवान कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां
0: वाह
1: राह है ना। विल पावर में तो आप विन कर लेते हो, तो विल पावर के साथ और खाली विल पावर में आपने थोड़ा सा वेल्थ भी लगाओ कि आपने जो फालतू खर्चे है उसको आप थोड़ा किताबों में
0: बिल्कुल
1: उसमें
0: बिल्कुल
1: लगाए और तो मेरे ख्याल से असंभव इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा
0: जी,
1: रमेश।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शीजा आपने दिया। मित्रों आज के इस एपिसोड में इंजीनियरिंग के बारे में, करियर आयाम के बारे में हमने सुना। आशा करूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नई नई बातें आपको सुनने को मिला है, और जो विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन्हें विचार मिला होगा कि अरे हाँ ये भी चीज़ तो कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा अपने आप से भी बातें कीजिए, कर तो सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको लिए, आपके लिए क्या सुटेबल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात है। तो अपने करियर के लिए थोड़ा टाइम दें, इसके लिए फोकस करें, सोचें, 10 लोगों से बात करें, कंसल्टिंग करें कुछ लोगों से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर आप जो है इस चीज़ को समझें, साइकोलॉजिस्ट से भी बात करें, ताकि आपका फोकस बन जाए और आप अपने करियर को बहुत सुचारू रूप से फ्रेम आउट करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भूलती हो ना सॉरी, तूने मेरा दिल चुराया।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हाँ, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एन्जॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूँ।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफ़ी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उसकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, तो खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं, बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बाल मन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मेच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूँ और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है। तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया। लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में। तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूँ। तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूँ, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूँ तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप। तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी, तो वो हार की फीलिंग करेगा। तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो। जी,
0: तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझें तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है, मासूमियत की ज़रूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे, हो सकता है कि बच्चा कर भी ले लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी, वो शायद मर ना जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएं क्या हैं, ये कैसे संभव है और उन चीज़ों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज़ में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारीपूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में हैं तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे सर में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएँ छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं कि नहीं प्रश्नों के माध्यम से। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो जब ये बात मैं उनके सामने रखता हूँ तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेकर जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज़ से आपके माता पिता को कष्ट होता है और जब उनको रियलाइज जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें ये समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट में भी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेल कूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट रह जाता है और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या हैं और विकल्प क्या क्या हैं। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेके हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुँचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिलके और बड़े आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
1: बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
0: अजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज़ में हम लोग सुनेंगे जहां पर बच्चों का पूरा संसार पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद जय भारत। तुम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो खुशियां बांटो।
3: हम सभी के जीवन में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति है तो वो है हमारी निर्णय शक्ति, क्योंकि हमारे निर्णयों पर ही तो हमारा जीवन निर्भर करता है और ये निर्णय हमारे एक्यूरेट होते हैं तब जब हम किसी परिस्थिति समस्या या व्यक्ति विशेष के प्रभाव से मुक्त हो डिटैच होकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक प्रभाव मुक्त डिटैच्ड आत्मा ही एक्यूरेट डिसीजंस ले सकती है। प्रभावित आत्मा अर्थात जो आत्मा अटैच्ड है उसका कोई भी डिसीजन एक्यूरेट हो ही नहीं सकता।
4: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

रोज थर मेरी जान गई, धीरे धीरे होले होले नशा ये पिलाया किसने

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी

के फूल हैं खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी,

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

0: है तो
1: हाँ
0: नार नवेली है तो
1: कुछ कहा?
0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए
1: सच?